0: शरणार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आगे से हम टीना के साथ हैं। नमस्कार आपको टीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन SAP के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। SAP का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। SAP की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मींस टेस्ट लागू किया जाएगा। और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान BRP लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से SAP लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। बजट 2026-2027 के बाद कॉन्फेडरेशन डी ट्रावायर डू सेक्टर प्रीवे CTSP ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक ज़रूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्टिंग पर आपत्ति जताई है। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरियाना वोमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डेप्यूटी प्रधानमंत्री और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। और ऊर्जा मंत्री ने भी ऊर्जा ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने किया। और आसिम के अध्यक्ष जयंत चेलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। विदेश में शुक्रवार 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए शांति समझौते पर आखिरी मुहर लग गई। इसी के साथ इसराइल और हिजबुल्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। प्राप्त खबरों के अनुसार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है। और अंत में मौसम का हाल। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे। रह रहकर वर्षा भी होगी और अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। और रात के समय भी देश के दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर

0: भोरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जो जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दूर समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है क्योंकि लहरें और भी ऊंची हो सकती है। सूर्योदय आज 6:44 पर और सूर्यास्त शाम के 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे आ लीजिए। नमस्कार।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सभी सुनने वाले श्रोताओं को आज प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इस समय मॉरिशस में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। ये है AM2 MBC रेडियो मॉरिशस चैनल मीडियम 719 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज है शनिवार, शनिवार 20 जून 2026। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी लोगों के लिए अच्छी तरह से बीते। आज आप जहाँ भी रहें खुश रहे, मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं। चलिए देर न करते हुए इस प्रातकालीन सभा की शुरुआत करते हैं गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ, और प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
0: आनंद मंगल करूं वैदिक नाथ
1: जय

सन्तु शंख सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाच शमुरातिशाच शन्नो दिव्यः पार्थिवा शन्नो अप्याः शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमुस्सन्तु गावः शन्नः रीभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। ओम शं। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडिता गजवंती पियति आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वैदिक नाद कार्यक्रम में। श्रोतागण, जिस प्रकार ऋतु अनुसार फल सब्जी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है, इसी प्रकार इस सत्यार्थ प्रकाश मास के वैदिक नाद कार्यक्रम में सत्यार्थ प्रकाश पर ही विचार प्रस्तुत करना उचित होता है। अतः सत्यार्थ प्रकाश पर ही प्रकाश डालेंगे। सत्यार्थ प्रकाश कोई मामूली पुस्तक या साधारण पुस्तक नहीं है, इसीलिए इसे ग्रंथ कहा गया है। अर्थात ऋषि मुनि द्वारा लिखित कोई पुस्तक साधारण नहीं हो सकता। सच माने तो ऋषि मुनि लोग मानव योनि में ऊंच कोटि के होते हैं। उनके विचार आचरण ये सब कुछ साधारण मानव से परे होते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा लिखित लेख या कोई प्रस्तुत मानव समाज में असाधारण ही होता है। कोई प्रस्तुति मानव समाज में असाधारण ही होता है। मानव समाज के निर्माण में या मानव समाज के सुधार में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ की रचना करके सबका उद्धार किया है। इस ग्रंथ में

समस्त मानव जाति का नव जागरण किया है। इसमें पूर्ण विश्व मंडल के हर मानव के कल्याण की बातें हैं। स्वामी दयानंद जी ने इसे लिखकर समाज को देकर मानव समाज में सबसे पहले मानवता, जिसे कहते हैं, लोगों में मानवता को उत्पन्न किया है। उस समय इस ग्रंथ से पहले मनुष्य तो थे, परंतु लोगों में मनुष्यत्व नहीं था। इसी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के सत्य ज्ञान से लोगों में धर्म, संस्कार, सद्विचार, सद्व्यवहार, सत्याचरण, एकता और मानवता के ज्ञान, गुण, भाव, सत्कर्म और सत्य विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। 14 समुलासों में विभाजित यह ग्रंथ प्रस्तुत है। जीवात्मा के उत्थान के लिए यह ग्रंथ प्रस्तुत है। मानव समाज के उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए इस ग्रंथ में विषयों को क्रमवत प्रस्तुत किया गया है। मानव समाज में सबके उत्थान, उद्धार, कल्याण एवं आत्मोन्नति के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने क्रम से समुलासों में विचार प्रस्तुत किए हैं। श्रोतागण किसी भी पुस्तक या ग्रंथ के पढ़ने से पहले उसमें सबसे पहले भूमिका पढ़ना अनिवार्य होता है। भूमिका में उस ग्रंथ या पुस्तक के पढ़ने से प्रत्येक अध्याय या समुलास पर प्रकाश डाला गया होता है, जिससे कि उस पुस्तक या ग्रंथ प्रस्तुत विषयों को पढ़ने में, समझने में या उसे प्रयोग करने में हर प्रकार से सुविधाजनक स्थिति हो। 14 समुलासों का यह ग्रंथ लिखकर महर्षि दयानंद जी ने पहले विषयों का नाम लिखा है। प्रथम समुलास में ईश्वर विषय पर प्रकाश है। दूसरे समुलास में संतानों की शिक्षा विषय है। तीसरे समुलास में पठन पाठन संबंधित विषय पर प्रकाश है। चौथे समुलास में गृहस्थ संबंधित विचारों पर प्रकाश दिया गया है। चौथे समुलास पंचम समुलास में है, वानप्रस्थ विषय पर विचार है। छठे समुलास में राजधर्म विषय पर बताया गया है। सप्तम समुलास में मुक्ति विषय है। अष्टम समुलास में विद्या अविद्या विषय है। अष्टम समुलास में सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन है। नवम समुलास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या है। दसवें समुलास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय है। एकादश समुलास में आर्यावर्तीय मतमतांतर का खंडन मंडन विषय है। द्वादश समुलास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय है। और अंत में आर्यों के सनातन वेद विदित मत की विशेषताओं पर व्याख्या लिखी है, जिसको ऋषि भी मानते हैं। पुस्तक रचना का उद्देश्य उनका यह है कि लेखक ने अपने शब्दों में यह कहा है कि मेरे इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यासत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य बताना और जो असत्य है उसको असत्य ही बताना चाहिए। जो सत्य के स्थान पर असत्य हो और असत्य के स्थान पर सत्य हो उसको प्रकाश नहीं कहते हैं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना चाहिए। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए विद्वान आपतों का यही मुख्य काम है कि उपदेश या लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर

सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हेतु हठ दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झोंक जाता है।

0: ऐसी बात नहीं रखी है और न ही किसी का मन दुखाना है, न किसी के हानि का तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। ऋषि जी सदैव पक्षपात रहित थे। इस ग्रंथ की रचना में उन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया। आर्यावर्त देश में ऋषि दयानंद भूमिका मैं लिखते हैं कि बसता हूँ यहाँ पर, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतर की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथा तथ्य करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसा ही विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जन को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि स्वामी जी अपना मत प्रकट करते हुए आगे लिखते हैं कि जो किसी एक का पक्षपाती होता है तो वैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता तो, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से पहले स्वामी जी ने अनेक प्रकार से समझाए हैं कि भूमिका आदि पर प्रकाश जो डाला गया है उस पर अवश्य हम अवलोकन करें। और ऋषि दयानंद का स्वाध्याय कितना विस्तृत था इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि वे तो 3000 ग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं। इसके अतिरिक्त न जाने उन्होंने अपनी छोटी आयु में कितने सहस्र ग्रंथ पढ़े होंगे। श्रोतागण, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सो अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रोग्राम वैदिक नाथ। सुबह के 6:17 हो रहे हैं। आप लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। सैयद हुसैन रोड फिनिक्स इंपीरियल गार्डन कांडस, फिर से सुन लीजिए, सैयद हुसैन रोड फिनिक्स इंपीरियल गार्डन कांडस लेजर पार्क एवेन्यू फिनिक्स हाइट्स अपार्टमेंट्स हिलक्रेस्ट अपार्टमेंट्स फिनिक्स रेजिडेंस अपार्टमेंट्स मॉसेल मोसोसिटी पार्कलैंड जीएनजी ऑडिटोरियम पेट कंसर्न गिब्स ऑटो सिटी कार शोरूम प्रीमियम केयर क्लिनिक जयसन नेटवर्क लिमिटेड सकोटा फिनिशिया कैबेंडिश इंस्टीट्यूट और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 21 जून को सुबह के 11:30 से शाम के 4 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर जी हाँ, वैक्वा हॉलीरूड नंबर 1, रूट कैंस कौंटर नंबर 2, रूट देवेग, रूट लामारी, रूट बेगे, रूट बनफिन, शेमें रिजर्वा, दूदी लेन, शेमें लासूस, मुतू लेन और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार की आगामी, जी हाँ आगामी रविवार 28 जून को सुबह 11:00 से शाम के 7:00। फिर से सुनिए अभिव्यक्ति, हॉलीवुड नंबर 1, रूट कैंस कौंटर नंबर 2, रूट देवेग, पार्टी दे ला रूट दे ला मारी, रूट बेगे, रूट बनफिन, शेमें रिजर्वा, दूदी लेन, शेमें लासूस, मुतू लेन और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी रविवार 28 जून को सुबह 11:00 से शाम के 5 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बेलते अभिलाज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 20 जून को सुबह के 11:30 से दिन के 12 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Or grande retraite, bon accueil, périmètre de la poste, SSS, gymnase, ISKCON, or Sachu Golden Road, qui a passé mais rené valé, le bon coup sous titre qui a jata hai, qui kalivari 21 juin ko subah ke 11:00 se sham ke 4:00 ke beech बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और फ्रांसिस आन रोड और संगल

0: Princesse Anne, singer Wallingham Road, और सच्चे मिल थ्रियोली के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 20 जून को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सभी सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। कुछ क्षणों में सुबह के 6:20 होने वाले हैं, तब आप सुनेंगे सत्यार्थ प्रकाश मांग के संदर्भ में एक वार्ता, और यह वार्ता जो है आर्य सभा द्वारा पंडिता सुरिक जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, और ये वार्ता लेकर जाएगा सुबह के ठीक साढ़े छः बजे का पूरा समाचार बुलेटिन। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी 7 बजे मस्त मॉर्निंग शो में सुबह का नजाना। तो सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मॉरिशस। Stay tuned, stay connected.
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुलास में महर्षि दयानंद जी ने आचार अनाचार और भक्ष्य अभक्ष्य विषय को हम सबके हित के लिए प्रस्तुत किया है। हम सभी जानते हैं कि अन्न हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। शुद्ध शाकाहारी भोजन, फल, दूध, सब्जी, साग आदि मनुष्य के शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। इसलिए तो जब एक दंपति विवाह के बंधन में बंधता है, तब वैदिक विवाह की जो सबसे महत्वपूर्ण सप्तपदी विधि है, इसमें जो पहला पद अर्थात कदम पुरोहित बढ़ाने के लिए कहता है, वह इस प्रकार है। ओम ईशे एक पदिम भव सामा मनुव्रता भव विष्णुता नयन्तु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु जरस्तयः। अर्थात वर वधु प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पहला कदम अन्न के लिए एक साथ रखते हैं, हम दोनों का मन अनुकूल हो, हम दोनों मिलकर पुत्रों को प्राप्त करें और वे वृद्धावस्था तक जीने वाले हों। श्रोताओं, अब तक आपने समझ लिया होगा कि मेरा जो विषय है वह भक्ष्य और अभक्ष्य पर है, अर्थात क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। श्रोताओं, अन्न जो है वह सबसे आवश्यक वस्तु है जो एक परिवार के निर्माण में सहायक होता है। सोचिए, अगर वही अन्न हमें स्वस्थ रखने के बदले रोगी बना दे तो फिर सारा परिवार ही नष्ट हो जाए। अन्न ही परिवार की नींव है जो शुद्ध और पुष्टिकारक होनी चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने शुद्धता से उत्पन्न किए हुए अन्न, साग, फल, मूल आदि को खाने को ही कहा है। जहाँ भोजन पकावे वहाँ का स्थान पहले अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें। पहले के समय में चौका को गोबर और मिट्टी से लेप कर साफ सुथरा किया जाता था, परंतु अभी विज्ञान के इस युग में रसोई घर आदि में आधुनिकता आ गई है, परंतु भोजन आदि में असंतुलन आ गया है। पाश्चात्य सभ्यता ने इतना जोर पकड़ लिया है कि हम भक्ष्य और अभक्ष्य का सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जगह जगह पर चौका लगा हुआ है, इससे घर के बदले लोग आनंद लेकर बाहर का खाना अधिक खाते हैं। जिस भोजन को करने से पहले वेद ने हमें इतना सुंदर मंत्र दिया है, उस मंत्र को लोग अपने परोसी हुई थाली के सामने खाने से पहले नहीं बोल पाते, क्योंकि उस मंत्र के अनुसार वह भोजन नहीं है। श्रोताओं, चलें इस मंत्र और उसके अर्थ को सुन लें। ओम अन्नपतिनस्य नो देह्यनमिवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिषौर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हे अन्न के स्वामी परमात्मन, हमको रोग रहित और बलदायक अन्न दीजिए। अन्न का दान करने वाले को सुखी कीजिए। हम दो पैर वाले और चार पैर वालों को यह अन्न शक्ति प्रदान करें। श्रोताओं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब केवल अपने लिए नहीं अपितु संसार के सभी जीवों के स्वास्थ्य और बल के लिए, क्योंकि परमात्मा ने यह सृष्टि केवल

मनुष्यों के लिए नहीं अपितु सभी जीवों के लिए बनाया है। इसलिए महर्षि जी ने कहा है कि उपकारी प्राणियों की हिंसा न करें, जैसे गाय, बैल, घोड़े, हाथी, ऊंट, भेड़, गधे आदि। जो इन प्राणियों का हिंसा करता है मानो वह मनुष्यों को जीते जी मारने वाला होता है। एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से 4,75,600 मनुष्यों को लाभ पहुंचता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने दूध देती है। प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,907 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उनके अगर 5 बछड़ियाँ हुई तो जन्म भर के दूध से मिलकर 1,24,000 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। यदि 5 बैल हो तो वे कम से कम 5,000 मन अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न से 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। इस प्रकार दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्य मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैलगाड़ी सवारी का भार उठाने आदि कर्मों से बैल और गाय के दूध से मनुष्यों के बहुत उपकार होते हैं। जैसे उपकारक बैल होते हैं, भैंस भी होते हैं। बकरी के दूध से भी 25,920 आदमियों का पालन होता है। हे श्रोताओ, इसलिए महर्षि दयानंद जी अपने इस समुलास में लिखते हैं कि जब आर्यों का राज्य था तब इन महाउपकारक जीवों की खूब सेवा और पालन होता था, क्योंकि दूध, घी, बैल, गाय आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न और रस बहुत प्राप्त होते थे। जब से मनुष्यों को अभक्ष्य खाने की आदत हो गई तब से मनुष्यों के स्वास्थ्य और सुख पर दुख और रोग का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि नस्ति मूले नैवम फलम न पुष्पम। जब वृक्ष का मूल हो काट दिया जाए तब फल फूल कहाँ से होवे। महर्षि जी का कथन है कि हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल, कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त करके भोग करना अभक्ष्य, और अहिंसा धर्म आदि कर्मों से प्राप्त करके भोजन करना भक्ष्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग नाश, बुद्धि बल, पराक्रम और आयु में वृद्धि हो, उस अन्न, फल, मूल, कण, दूध, घी, मिष्ट आदि पदार्थों का सेवन करना और उचित समय पर भोजन करना भक्ष्य कहता है। जितने पदार्थ प्रकृति के विरुद्ध शरीर में विकार पैदा करने वाले हैं और वैदिक शास्त्र में वर्जित है, उनको ग्रहण करना अभक्ष्य कहता है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है जिसको महर्षि जी ने इस समुलास में प्रतिपादित किया है। नौचिच्छस्तकस्य चिदध्यानाना ज्ञाचैव तथान्तरा न चैवात्यशनम कुर्या न चोचिष्ठ क्वचित व्रजेत। अर्थात न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे, न किसी के भोजन के बीच आप खावें, न अधिक भोजन करें और न भोजन किए पश्चात बिना हाथ मुंह धोए कहीं इधर उधर जाए। गुरु रुचिस्त भोजनम। कुछ लोग इस वाक्य का गलत अर्थ निकालते हैं कि शिष्य गुरु का जूठा भोजन खाए, परंतु इसका यह अर्थ है कि पहले गुरु को भोजन कराएं, फिर जो शुद्ध भोजन बच गया है उसको शिष्य खावे। इसी प्रकार लोग गाय के दूध और मधुमक्खी के शहद को भी जूठा मानने लगते हैं। तब महर्षि जी कहते हैं कि शहद बहुत से औषधियों का सार है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है, और गाय का बछड़ा बाहर से दूध पीता है, इसलिए शुद्ध जल से स्तन को धोकर दूध दुहने से जूठा नहीं होता। महर्षि जी ने यह भी कहा है कि किसी भी मनुष्य के हाथ का पका भोजन आप खा सकते हैं, परंतु वह शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही साफ सुथरा होकर शुद्ध भोजन तैयार करने वाला हो, क्योंकि बहुत से स्थानों पर भोजन सेवकों द्वारा तैयार किया जाता है। यदि वर्णों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भोजन तैयार करने और घर के कामों में अधिक समय बिताने लगे तो घर या देश में प्रगति नहीं होगी। इसलिए वर्ण अनुसार और शुद्धता से सभी अपना काम करने लगे तो सभी सुखी और स्वस्थ रहेंगे। श्रोताओं, महर्षि दयानंद जी का कथन है, परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो। इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब

0: ने मिलके आनंद को बढ़ावे। श्रोताओं, यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मनुष्य अभक्ष्य अर्थात न खाने योग्य पदार्थों को छोड़कर भक्ष्य अर्थात खाने योग्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे। तभी हमारा तन मन शुद्ध होकर और आचार विचार भी शुद्ध होंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुबह के 6:30 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये मुख्य समाचार। 2026-2027 बजट में सरकार ने आर्थिक सुधार और सामाजिक मदद के बीच संतुलन रखने की बात की है, साथ ही गरीब और कमजोर लोगों की मदद पर जोर दिया गया है। बीओपी की जगह एसएपी लागू होगी और जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं वे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इसमें आय की जांच यानी मींस टेस्ट लागू होगी। सिटी एसपी ने बजट की आलोचना की है, जबकि आसिम ने कुछ कदमों का स्वागत किया है लेकिन और अध्ययन की बात कही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। और अब समाचार विस्तार से। 2026-2027 बजट की मूल भावना आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। सरकार फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए देश की सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत और स्थिर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही ये बजट कमजोर वर्गों की सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर देता है। सरकार का उद्देश्य जिम्मेदारी, एकजुटता और सतत विकास के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और प्रगति को आगे बढ़ाना है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
4: मैडम स्पीकर, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। दिस डज नॉट कम फ्रॉम मी मैडम स्पीकर, बट फ्रॉम क्लाइव लुईस, ए फेमस ब्रिटिश ऑथर एंड लिटरेरी स्कॉलर।
5: पीछे जाकर शुरुआत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जहां पर हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और एंडिंग यानी कि समापन को बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इन्हीं शब्दों का हवाला देकर शुरुआत की। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि मूलभूत और कठिन चयन किए गए हैं देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और समाज तथा भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चुनौतीपूर्ण मार्ग चुना गया। इसके परिणाम स्वरूप 2025 से प्रत्यक्ष प्रगति देखी गई। बेरोजगारी की दर 6% से 5.7% तक घट गई। इन्फ्लेशन जो 2022 से 2024 की अवधि के लिए सालाना 7% थी और जो उच्चतम 11.3% रही, 3.7% तक घट गई। हमारी मूल विदेशी मुद्रा कोष 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जो कि कई दशकों में सबसे ऊंचा है। जीडीपी में 3.2% का विस्तार देखा गया।
4: जीडीपी एक्सपांडेड बाय 3.2% विद मोस्ट मेजर सेक्टर्स रिकॉर्डिंग पॉजिटिव ग्रोथ एंड पर कैपिटा जीडीपी रोज बाय 3.3%। फर्दरमोर मैडम स्पीकर, व्हेन वी टुक ऑफिस, democracy as well as freedom of expression has been restored. Municipal elections have resumed after 10 years of tyranny.
5: प्रधानमंत्री ने कहा, जब से शासन संभाला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार से विरासत में प्राप्त कैटास्ट्रोफिक यानी कि बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आर्थिक स्थिति के बावजूद सुधार का प्रयास जारी है। ऊपर से बाहरी अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसा कि युद्ध और क्लाइमेट चेंज की भी चुनौती है जिसका सामना किया जा रहा है। सरकार अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए 4 सिद्धांतों पर बल दे रही है, जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय। मॉरिशस को भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। सरकार का सिद्धांत सुप्रशासन और उत्तरदायित्व

0: पर टिका हुआ है।
1: मॉरिशस हैज रिगेन्ड इट्स राइटफुल प्लेस इन द इंटरनेशनल अरेना। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज वंस अगेन एट द कोर ऑफ आवर नेशनल स्ट्रेटजी। द इंडिपेंडेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक द ऑफिस ऑफ द डीपीपी, द बैंक ऑफ मॉरिशस एंड स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस हैव बीन रिस्टोर्ड।
2: बजट 2026-2027 में पेरेंटल लीव में बड़ा विस्तार किया गया है। मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है, जिसमें पहले 6 महीने फुल सैलरी के साथ और अगले 6 महीने ऑप्शनल होकर हाफ सैलरी पर दिए जाएंगे। वहीं पैटरनिटी लीव को 4 हफ्तों से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य परिवारों को अधिक सहयोग देना और काम तथा निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना है। ये रिपोर्ट पेश है।
3: 2,63,200 पेंशन प्राप्त लोगों का 90% हिस्सा अभी भी स्टेज एज पेंशन से लाभ उठा पाएगा। इनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। कैरियर्स अलाउंस को 3,500 रुपये से 4,250 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पंजीकृत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में विकलांगता की अवस्था वाले बच्चों के लिए टैक्सी शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स के बजट को 562 मिलियन से 619 मिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। अस्पतालों में डिस्लेक्सिया और ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 15 साइकोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। 90 साल से ज्यादा उम्र वालों को घर पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन का लाभ दिया जाता था, अब इस उम्र को 85 साल का किया गया है। मैटरनिटी लीव 12 महीनों तक बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने तक पूरा पगार यानी फुल पेड लीव और बाकी 6 महीने हाफ पे होगा। मैटरनिटी लीव 4 से 6 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है। वोकेशनल स्ट्रीम के नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अतिरिक्त स्कॉलरशिप्स जोड़े जा रहे हैं और यदि कोई पब्लिक हॉलीडे किसी रविवार को पड़ रहा हो तो उसके अगले दिन सोमवार का दिन पब्लिक हॉलीडे करार दिया जाएगा।
2: शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: शिक्षा को और ज्यादा कारगर बनाने और सबका एक्सेस बढ़ाने के लिए क्षेत्र के बजट को 2.6 बिलियन रुपए से बढ़ाया जा रहा है। एक भी बच्चा पीछे न रहे, इसके लिए किताबों और शैक्षिक सामानों में 133 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। 3 नए MITD सेंटर्स को कायम किया जाएगा ताकि ग्रेड 7 से ग्रेड 9 के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एक बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रधान एवं वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सेंट स्कूलों के लिए एक खास इंटरवेंशन इकाई को कायम किया जाएगा। सरकार ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के बच्चों के वास्ते एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत करने का मकसद रखती है और स्कूलों में बुलिंग के मसले से निपटने के लिए सरकार एंटी बुलिंग अभियानों में 10 मिलियन रुपए निवेश करेगी। उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह वाली तालीम का दर्जा देने के लिए एक नए ढांचे को विकसित किया जाएगा। बजट 2026-2027 में एक स्टडी इन मॉरिशस पोर्टल को लॉन्च करने का भी प्रावधान है, जिसके जरिए मकामी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिले की प्रक्रिया कर सकें। पूर्व प्राथमिक से तृतीय शिक्षा संस्थाओं के मूल ढांचों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा 824 मिलियन रुपए निवेश करने का प्रावधान है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य एक स्वस्थ जनता पर निर्भर करता है। इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश बढ़ाएगी ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। साथ ही सेक्टर में कार्य शर्तें बेहतर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी।
4: हर साल टैक्स से प्राप्त बिलियन रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। मरीजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,220 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इनमें नर्सों की भर्ती भी शामिल होगी। 40 मिलियन रुपए निवेश करके सरकार विजिटिंग डॉक्टर स्कीम को लागू करने का मकसद रखती है। अब से हॉस्पिटल मैनेजर्स अस्पतालों की कार्यकुशलता का आश्वासन रखेंगे। मधुमेह की रोकथाम और इलाज के लिए बजट 2026-2027 में 40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मूल ढांचों को आधुनिक बनाने के वास्ते 1.5 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।

0: नए SSRN अस्पताल का निर्माण, आयुष केंद्र, एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ENT अस्पताल में एक डायलिसिस केंद्र आदि का निर्माण शामिल है। मोटापे से निपटने के लिए एक कार्डियो मेटाबॉलिक केयर एंड रिसर्च केंद्र की तामीर भी की जाएगी।
1: देश के छोटे खेतीहरों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आने वाले 3 सालों के लिए 100 मिलियन रुपये सालाना तौर पर उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि सेक्टर के विकास के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: 2030 तक 2,50,000 टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और मध्यम किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वास के लिए अगले 3 वर्षों में सालाना 100 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति औपौ की अधिकतम सीमा तक पुनर्रोपण लागत का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय के उत्पादन में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। हमारे जंगलों के लिए जलवायु लचीलापन बनाते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फॉरेस्ट बिल पेश किया जाएगा। एक कृषि वानिकी परियोजना लागू की जाएगी। ये शोधकर्ताओं और किसानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही स्थानीय बाजार के लिए सुरक्षित भोजन का उत्पादन करेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर रही है, जैसे कि फार्म भवनों, बकरी प्रजनन फार्मों के उन्नयन के लिए 45 मिलियन रुपए और प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मवेशी और भेड़ प्रजनन फार्मों को स्केल अप किया जाएगा। प्रजनकों द्वारा पशु आहार की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए 75 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुओं की खरीद, उपकरणों और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायता हेतु प्रोत्साहन के लिए पशुधन विकास योजना के तहत 27 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और एक आधुनिक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए 50 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।
1: बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन SAP के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। SAP का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। SAP की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में मीन्स टेस्ट लागू किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान BRP लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से SAP लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: पेंशन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि पेंशन प्राप्त करने वाले 2,63,200 लोगों में से 90% लोगों को स्टेट एज पेंशन SAP से लाभ होगा, जिनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ने कई कदमों का ऐलान किया ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर रूप से सुरक्षित रखा जा सके। बेसिक रिटायरमेंट पेंशन को स्टेट एज पेंशन SAP का नाम दिया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से ये 60 वर्ष की उम्र के सभी लोगों के लिए होगा। पेंशन की रकम को आय के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह जिन लोगों को मासिक तौर पर 0 से 14,000 रुपये प्राप्त होते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा। जिन लोगों को 0 से 50,000 रुपए मिलते हैं मासिक रूप से उन्हें आंशिक रूप से पेंशन प्राप्त होगा। राज्यसभा के सदस्यों को 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त होगा, न कि 2 मैंडेट के बाद जिस तरह वर्तमान में है। 1 जुलाई 2026 से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पेंशन पर टैक्स लागू होगा।
1: Budget 2026-2027 के बाद कॉन्फ़ेडरेशन डी ट्रैवलर्स डू सेक्टर प्राइवेट CTSP ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक ज़रूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मीन्स टेस्टिंग पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी, जो उनके अनुसार सही नहीं है। CTSP ने इसके बजाय यूनिवर्सल पेंशन को जारी रखने और उच्च आय वालों पर थोड़ा अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। CTSP के प्रवक्ता रियाज चट्टू को सुनते हैं।
4: CTSP qui propose, ça veut dire ben dimoun, ils ont revenu faux, ils ont pas mérite bien sa pension là. Mais si on garde une pension universelle et ça dimoun qui ne bénéficie pension là, ou augmente son income tax par 0.5%, tout subside qui l'ingé, pas cette pension, il gagne l'eau d'iril, l'eau la farine, l'eau tout.

0: il rend nous lit à travers une contact. Mais là, je ne préférais amener un système qui risquait de faire mal à nos sociétés. Finalement, on fin dire qu'il pension au Péretoun 60 ans, bien qu'il faisait des détails là, mais de l'autre côté, il a annoncé qu'il va ben, député, faut déjà arriver à 65 ans pour que toujours de pension. Donc là, le mandat à venir nous trouve tableau là.
1: इसके अलावा सीटीएसपी मंगलवार को बजट पर और विस्तार से अपनी राय देगी। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अरियान नवामारी, ऊर्जा मंत्री पैट्रिक कासियावादेन और शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद मौजूद थे। अरियान नवामारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही अडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया। उनको सुनते हैं।
2: Vous bien content qu'il permette un monitoring committee lors du domestic abuse bill. Nous pouvons aller très très vite avec la présentation de ce projet de loi là dans le Parlement. Et il y a aussi également le adoption bill qui pouvine devant le Conseil des ministres très bientôt, qui nous finit demander depuis bien longtemps, et nous pouvine avec l'autorité qui pour moniteur l'adoption bans enfants dans Maurice et l'adoption au niveau international.
1: शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल्स को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं।
3: Nous bons enfants du sein secteur et special needs, zote besoin, zote demande, zote attente, fin prend en considération et créer un specialized early intervention unit dans pré-primaire pour bons enfants 3 à 5 ans. Et augmente sein regional development centers aussi qui permettent bons enfants plus près de bonne famille.
1: ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मंत्री पैट्रिक कासियावादेन को सुनते हैं। मौजूद मंत्रियों के अनुसार ये बजट सामाजिक समावेश और भविष्य की ओर केंद्रित है। अब चुनौती ये है कि घोषित कदमों को लागू किया जाए ताकि उनका सीधा लाभ जनता तक पहुंच सके। वैसे आसीम के अध्यक्ष जयंत चिलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है। हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार बजट दस्तावेज और विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है ताकि सभी घोषित कदमों और उनके उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रभाव को ठीक से समझा जा सके। उनको सुनते हैं।
4: रेलिया बजट ला गेट aussi par les autres documents qui accompagnaient pour le cas comprendre mieux mais a pour bien vu le côté consommateur puis annonce cette baisse il y a annonce qui 2 milliards rupies bâti d'accord pour donner ça l'année là
1: GWF के अध्यक्ष ग्लेन सीवी का कहना है कि बजट 2026-2027 में कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण कदम शामिल है। उनके अनुसार इन क्षेत्रों में की गई घोषणाएं काफी सीमित है और उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए था।
5: Il n'y a pas grand-chose dans le budget. On n'avait pas proposé pour développer plus l'agriculture et aussi les énergies renouvelables. Il y a eu des annonces mais timides. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'on va donner jusqu'à foyer 275 000 roupies pour avoir panneau solaire à une petite banque de 25%. Okay? Mais vous savez, panneau solaire avec batterie. Seulement la batterie coûte autour de 200 000 à 300 000 roupies avec toute l'installation. Donc, c'est pas là pour... On avait fait comprendre au ministère, au ministre, que c'était pas à la portée de tout un chacun.

0: Donc, ce n'est pas assez osé si on veut développer l'énergie solaire.
1: Or FPSO ge atiak sho ge MTUC ge atiak ge u patiak sho. FPSO yu ge atiak sho ge MTUC ge u patiak sho vijayi bandan ka ge na hai ki ye budget pichle saal ke budget jaisa pratit hota hai. Unhone ye bhi kaha ki sarkar ne artificial intelligence se jure badlavon aur unke kamkaji duniya par prabhav ko paryapt roop se sambodhit nahi kiya hai. Unke anusar aane wale badlavon ke liye shramikon ko taiyar karne ke liye aur adhik thos kadmon ki aavashyakta thi. Unko sunte hain.
2: L'année dernière, à répétition, j'ai pas fait un grand chose dans le projet que je viens de trouver. Beaucoup de projets qui me disent, mais c'est moi qui ai besoin d'un projet. Nous avons besoin d'un qualifié, qu'un implément. Qu'est-ce qu'AI, qu'on a besoin d'AI. Mais AI, vous avez connu, est-ce que AI n'est pas un thread aussi? Comment il y a une opportunité, il y a un thread aussi. Est-ce que nous avons tous ces affaires-là? Une affaire positive, c'est bon, VAT, pas finalement. C'est une grande chose.
1: बजट 2026-2027 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी है. एफएमपी की सदस्य ज्वाना बिहांशी ने घोषित कदमों पर निराशा जताई है. उन्होंने इसे बीजे बदबाती कहा है और कहा कि इसमें विजन की कमी है तथा ये बढ़ती जीवन यापन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जूझ रही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता. उनके अनुसार कई घोषणाएं इस बजट अभ्यास से जुड़ी अपेक्षाओं से कम है.
3: Budget bad bâté. Beaucoup god sa expression là parce qu'il y en a beaucoup de déceptions, il y en a beaucoup d'affaires réchauffées aussi. Première affaire là qui vient dans mon tête, c'est qu'on faisait parentalité, il disparaît. Il y a un an qu'on faisait maternité et 46 semaines qu'on faisait paternité. Mais moi, depuis longtemps, je milite pour un congé de parentalité parce que ça pour un game changer. L'accessibilité à l'emploi pour les femmes. Parce que si les femmes et les hommes gagnent même congé, c'est-à-dire un congé de parentalité, ils sont capables de décider en eux qu'ils en ont pour prendre combien. Les là, pas pour une discrimination à l'emploi.
1: पानी की कटौती, टंकियों में दबाव और कई क्षेत्रों में आपूर्ति की समस्या को देखते हुए बजट 2026-2027 में पानी को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है. देश की पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए अगले 3 वर्षों में 6.4 बिलियन रुपये रखे गए हैं, जिसकी सराहना CWA के डायरेक्टर श्याम तानू ने की है. मुख्य कदमों में 11,000 परिवारों के लिए वाटर टैंक स्कीम है, जिसके तहत 175 मिलियन रुपये से पानी की टंकियां और कनेक्शंस लगाए जाएंगे. पानी की बर्बादी रोकने के लिए नदियों पर 15 फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए 20 नए बोरहोल्स बनाए जाएंगे. इसके अलावा रिवर्सों की डैम का काम इस साल के अंत से पहले शुरू किया जाएगा. हालांकि पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है. उनको सुनते हैं.
4: La situation économique de l'île Maurice qui est très difficile. Donc là, le gouvernement fait un effort considérable pour améliorer la vie des citoyens. Par exemple, là, je vois 11 000 foyers pour le Water Tanker Scheme, qui est extrêmement intéressant. Et au niveau de la CWA, à chaque fois, nous demandons à la population d'économiser de l'eau. Puis l'autre élément, je vois, il y a 24 nouveaux puits, c'est-à-dire des boreholes. Donc ça va aider considérablement pour le besoin d'eau potable. Comme vous savez, l'eau souterraine, aujourd'hui, c'est plus de 50% de la consommation. Et puis l'autre projet fort, éventuellement, c'est le barrage de Rivière des Anguilles qui va soulager considérablement le réservoir de Marovakwa.
1: विदेश में शुक्रवार 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए शांति समझौते पर आखिरी मुहर लग गई. इसी के साथ इसराइल और हिजबुल्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है. प्राप्त खबरों के अनुसार एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने बताया कि कल शाम 4 बजे इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है. और विश्व कप के बीते मुकाबले में कल रात मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया. ब्राजील ने अभी हैटी को 3-0 से पराजित किया. और आज के अन्य निर्धारित मैचों में तुर्की वर्सेस पैराग्वे सुबह 7 बजे तथा नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन रात 9 बजे खेला जाएगा. और आज रात 12 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा. देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुन

0: जानते हैं मस्कारियंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे सक्रिय बादलों के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर बाद के समय देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय भी रह रहकर वर्षा होगी, खासकर दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर। कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी और जिसकी झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं, खासकर रात्रि के समय। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाद में खासकर रात्रि के समय लहरें और ऊंची हो सकती है। सूर्योदय 6:44 पर हुआ और अब सूर्यास्त 5:38 पर होगा। मौसम संबंधी जानकारियों के बाद आई आज की प्रमुख खबरों को दोहराते हैं। 2026-2027 बजट में सरकार ने आर्थिक सुधार और सामाजिक मदद के बीच संतुलन रखने की बात की है, साथ ही गरीब और कमजोर लोगों की मदद पर जोर दिया गया है। बीओपी की जगह एसईपी लागू होगी और जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं वे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इसमें आय की जांच यानी मीन्स टेस्ट लागू होगी। सिटी एसपी ने बजट की आलोचना की है, जबकि यासीम ने कुछ कदमों का स्वागत किया है, लेकिन और अध्ययन की बात कही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है और इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भी युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रायरोड मोसलमान सेंट एंड्रे में अड़तालीस साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री सुधीर कुमार जगदाऊ जो चंदा तुल्य नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर रायरोड मोसलमान सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमान सेंट एंड्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स में 64 साल के 64 के श्री धनानंद सिंह सुनातन जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। मामबहार रोड बुआशेरी में 56 साल के 56 ओल्ड के श्री ननकी सुन मांगा जो अनिल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी माँ श्रीमती रेवती मांगा के घर मामबहार रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआशेरी की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। रॉय रोड प्लान मान्यों में 45 साल के 45 ओल्ड के श्री राजा राम जापन जो बिग स्वाविन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी माँ श्रीमती नुएले रामजापन के घर रॉय रोड प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। नंबर चार अवेन्यू ला पेरोज में 78 साल के 78 ओल्ड के श्री विद्यानंद प्रभु जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के कृषि विभाग के पूर्व कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी

आज दिन के 1:30 बजे आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गीता प्रभु के घर नंबर 4 एवेन्यू ला पेरोस बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडगांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड मोंटाइलोंग में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री तारा चंद गोपल जो बीनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी मोलू गोपल के घर रॉयल रोड मोंटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामाओशांग की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमेशन रोड बेलमोर में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री सतीश मुहाबल जो मन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती गौमती मुहाबल के घर सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमेशन रोड बेलमोर से उठाकर दफनाने के लिए थोड़ा दूर से की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। मिक्वालेन शमैकोनिये में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वंता देव तान्या जो ईश्वन मालोरोम पैंट नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उनके घर मिक्वालेन शमैकोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपा शामुनी की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री धनानंद सिंह सनातन जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर कम्युनिटी सेंटर लेन एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमशन चुड़िया 2 PM। रेमियोलिये माइबो में 96 साल के 96 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपाया अमुगम जो नादेस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर रेमियोलिये माइबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोकस रिवेरे क्रेयोल की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल में मंदिरम के पास 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री वुशंत कादारू जो प्रवीण कंट्रोलर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड पावे लावेंटियर की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रिजर्वोयर रोड सोटीज़ क्रांबे में 42 साल की श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाशी नाम बंधु और जो स्वेता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके पति श्री रेशल रामचंद के घर रिजर्वोयर रोड सोटीज़ क्रांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रांबे की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। सवान रोड नोवेल फ्रांस में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गौकरण मंघा जो कास्टेलो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके घर सवान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दाऊमत ओरी जो कुमारी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके बेटे श्री विशाल ओरी के घर ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोपियो की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर तेईस वेंकटासामी शिबेल बोबासामी 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद रामसामी जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी

0: आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चिंताराम सामी के घर नंबर 30 वेंकाता सामी शिबैल बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबो पोर्टवी में, नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबो पोर्टवी में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री रामगीत हरिमन सिंह जगदेव, श्री रामगीत हरिमन सिंह जगदेव जो रामगीत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर नंबर 5 जॉन कैनेडी स्ट्रीट थोंगबो पोर्टवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कानपुर लेन नोवेल फ्रांस में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री दीनदयाल राम बंजू जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी बेटी श्रीमती बाबीता मंदप के घर कानपुर लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खौंबा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे आज 11:30 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 20 जून को मौलाशो आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
3: 819 KHz, ये है रेडियो मॉरिशस।
4: सुबह के 7:07 हुए हैं। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। मॉरिशस में आर्थिक बजट है, किंतु वर्ल्ड कप में गोलों का कोई बजट नहीं, गोल तड़ातर बरस रहे हैं। आज सुबह ही ब्राजील ने हेती को 3-0 से हराया। इसी समय पराग्वे 1-0 से लीड कर रहा है, और जबकि कल रात यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, और मोरक्को की भी जीत हुई 1-0 से स्कॉटलैंड के विरुद्ध। इसी समय टर्की और पराग्वे के बीच जंग शुरू हो चुकी है। खेल के 5वें मिनट पर ही मातियास गलाजा ने एक स्टनिंग गोल बनाकर पराग्वे को आगे किया है, किंतु सबसे पहले यूएसए 2-0। कल का ये पहला मैच था, रात 11 बजे मैच शुरू हुआ और 2-0 से यूएसए की जीत हुई। एक पहला ओन गोल खेल के 11वें मिनट पर, फिर प्रथम भाग में ही फ्रीमान ने एकदम फ्री होकर दूसरा गोल स्कोर किया और यूएसए को क्वालिफाइड कर दिया। दूसरा मैच, दूसरी जीत, 2-2 बार 2-0 से यूएसए की जीत। कमाल की टीम है और अच्छा खेल, खेलों का सुंदर प्रदर्शन यूएसए की ओर से। कल दबाव पर दबाव, हर बार यूएसए प्रहार पर प्रहार करता गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद उसकी ये समिट थी, उसकी वो अब चोटी पर आ गई है और यूएसए उसके सामने ज़्यादा मजबूत टीम साबित हुई। यूएसए 2-0। सो यूएसए ने 2-2 मैचों में ये जीत हासिल की है, और इस प्रकार यूएसए जो मेज़बानी कर रहा है, सह मेज़बानी, एकदम कमाल की टीम साबित हो रही है। और कल मोरक्को ने 1-0 से जीत हासिल की। इस्माइली ने खुद, उसी ने एक और गोल स्कोर किया। कल पहले मैच में भी उसी ने गोल स्कोर किया था। कल भी खेल के 2वें मिनट पर ही कल इस्माइली सैबारी ने खेल के 2वें मिनट पर ही ये गोल स्कोर करके स्कॉटलैंड को 1-0 से परास्त किया। यानी कि मोरक्को ने अपने दूसरे मैच में जीत हासिल की। पहले मैच में उसने ब्राज़ील के साथ मैच ड्रॉ किया था। सो कमाल की टीम है ये। अफ्रीकन जो देश है वो अब फुटबॉल में किसी भी रूप में, किसी भी हालत में पीछे नहीं है। सो कल मोरक्को की जीत हुई 1-0 से स्कॉटलैंड के विरुद्ध। डोमिनेशन तो था, अत्याचार तो हुआ, लेकिन

स्कॉटलैंड की टीम भी काफ़ी मजबूत टीम है। इस एक गोल के बाद पूरे मैच में उन्हें भी कई मौके हासिल हुए लेकिन वे जीत नहीं पाए और गोल बना नहीं पाए। कम से कम 5 मौके मिले। सो स्कॉटलैंड की टीम अभी भी क्वालिफाइड हो सकती है, बेस्ट ऑफ 3 में आ सकती है। इसलिए गोल केवल एक ही कंसीड किया कल और ये एकदम महत्वपूर्ण साबित होगा स्कॉटलैंड के लिए। स्कॉटलैंड 0 मोरक्को 1। और कल आज सुबह ही ब्राज़ील ने 3-0 से हराया, कल उसकी जीत हुई। सो ब्राज़ील भी अब आगे बढ़ रही हैं। ब्राज़ील 3 हेइती 0, तीनों ही गोल फर्स्ट हाफ में ही स्कोर किए गए। मैथियोस कुन्या का एक डबल 23वें और 36वें मिनट पर, फिर विनिशियस जूनियर ने प्रथम भाग के आखिर में एक और गोल स्कोर किया। फर्स्ट हाफ में ही 3-0, सेकंड हाफ में कोई भी गोल न बन पाया। ब्राज़ील ये मैच 3-0 से जीत गया। सो ब्राज़ील 3 हेइती 0। और इसी समय पराग्वे और तुर्की के बीच जो तीसरा मैच शुरू हुआ है, खेल का ये 11वां मिनट है और खेल के 5वें मिनट पर ही पराग्वे 1-0 से आगे। मातियास एनसिस गलाउजा का ये मात्र गोल और 1-0 से इस समय पराग्वे आगे हैं। आज रात 9 बजे नेदरलैंड्स का मुकाबला स्वीडन से होगा और आज रात 12 बजे किसके 12 बजेंगे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच। दोनों ही टीम 3-3 अंकों के साथ अभी आगे है और आज असली मुकाबला है इस ग्रुप में जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट रात 12 बजे। इससे पहले 9 बजे नेदरलैंड्स टक्कर लेंगे स्वीडन से। और वर्ल्ड कप के इन समस्त झमेलों के बीच फुटबॉल का एक नया मेला सामने खड़ा हो पड़ा, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 के फिक्स्चर्स आम किए गए, कल ही आम किए गए। इसकी शुरुआत शुक्रवार 21 अगस्त को हो रही है, जब चैंपियन टीम आर्सेनल न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी का स्वागत करेगा। फिर शनिवार 22 अगस्त की शाम हल सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बोर्नमाउथ से बिना पेप गार्दियोला के 10 साल बाद, जबकि एंटोनी इराउला का लिवरपूल रविवार 23 अगस्त की रात एवे जाएगा न्यूकासल यूनाइटेड के सेंट जेम्सेस पार्क में। अक्टूबर का महीना लिवरपूल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 10 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 31 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, किंतु इंग्लिश प्रीमियर लीग का सबसे प्यारा, सबसे होंखार और सबसे धमाकेदार मुकाबला शनिवार 21 नवंबर को खेला जाएगा, यानी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 21 नवंबर की शाम, जिसका रिटर्न मैच ओल्ड ट्राफोर्ड में खेला जाएगा शनिवार 23 जनवरी की शाम 6 बजे। सो सेव द डेट एंड द टाइम, सीजन समाप्त होगा रविवार 30 मई 2027 की रात। लिवरपूल की बात हुई तो द रेड्स एक जबरदस्त डबल ट्रांसफर पूरा करने की कगार पे है। ओसासुना के 22 वर्षीय स्पैनिश विंग विक्टर मुनोज को लगभग 40 मिलियन यूरो में साइन करने के बाद द रेड्स अब आरबी लाइप्ज़िग के इन डिमांड 19 वर्षीय आइवरी कोस्ट विंग यान जोमांडे को साइन करने के बहुत ही करीब है। किंतु ऐसी भी खबर है कि लिवरपूल के 100 मिलियन यूरो प्रस्ताव के बावजूद आरबी लाइप्ज़िग उसे बेचना नहीं चाहता। वैसे भी पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सेनल भी जोमांडे को साइन करना चाहते हैं, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। विंगर विक्टर मुनोज आ गया है, सब के सब अभी वर्ल्ड कप में शामिल है। उधर इब्राहिमा कोनाते और रियल मैड्रिड के बीच 4 साल के कंट्रैक्ट पर सहमति मिल गई है। कोनाते एक फ्री ट्रांसफर डील पर जा रहा है वहाँ जहाँ उसका साथी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्रैश कर चुका है। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप का अगला ग्रां प्री रेस 26 जून से ऑस्ट्रिया के रेडबुल रेस सर्किट में लगने वाली है। मर्सिडीज का किमी एंटोनेली अभी भी जनरल रैंकिंग में पहले स्थान पे है, 156 अंक लिए, किंतु फेरारी में सवारी करते हुए ब्रिटेन का लेविस हैमिल्टन उससे अब केवल 41 अंक दूर है, इसलिए सावधान। क्रिकेट में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में यदि भारत की महिला टीम कल रविवार की शाम दक्षिण अफ्रीकी लेडीज का सामना करेंगी तो भारत की पुरुष टीम

आज ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी वनडे मैच खेलेगी। उल्लेखनीय है कि एक टेस्ट मैच और एक वनडे में भारतीय टीम अफगानिस्तान को हरा चुकी है। सो एक बार फिर वर्ल्ड कप के फिक्स्चर सुनिए। इसी समय टर्की और पराग्वे के बीच मैच जारी है। अभी तक पराग्वे एक

0 से हराया। कल रात मोरक्को की जीत हुई स्कॉटलैंड के विरुद्ध 1-0 से। सो इतना सब कुछ, यूएसए 2 ऑस्ट्रेलिया 0। सुनते रहिए और मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

Nous travaillons l'avenir de Harkatir Ministry of Labour and Industrial Relations sat me MBC ki miljul sahyog se pesh karal jatpa Sector Agriculture Nidhi Agricultural Marketing Cooperative Society Limited Jun Royal Road Motaba me ha khojatavanja chargo mail grade 2 field crop worker एप्लीकेशन खातिर फोन करिए सेकंड दू सेकंड का 4066 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026 सेक्टर एग्रीकल्चर तरशीश हाइड्रोफार्म कंपनी लिमिटेड जोन कुमलन रोड पोंकुलविल में है खोजता चार गो मेल ग्रेड टू फील्ड क्रॉप वर्कर एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5973 2436 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 सेक्टर पोल्ट्री BZM Marketing Limited, Jun Shenfield Road, Rivière du Rempart, Meha, Khojata, Dugo Mail, Grade 2 Poultry Farm Worker, Jengar Bara Mahina Kil Experience Ba, Application Khatin Phone Karia, 52 55 83 75 Par, Or Arzi Bheji Ki Akhri Tarikh, 23 Jan 2026. Sector Manufacturing, Kishvij Spices Limited, Jun Royal Road, Lavancho में है खोजा तो वंजा तीन गो मेल पैकिंग ऑपरेटर्स जिनका कम से कम एक बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 52 51 77 42 पर या तो फिर जाइए Kishvij Spices Limited, Royal Road, Lavancho अर्जी भेजिए की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ANT एंटरप्राइज लिमिटेड जुन रॉयल रोड कहोलिन में है खोजा तो वंजा Dugo Taylor, Jingar 5 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5707 2075 पर या 5972 1732 पर या कभी भी आप सक बजा जाए ANT एंटरप्राइज लिमिटेड रॉयल रोड कहोलिन अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग AHP हमिद कंपनी लिमिटेड जन बसगीत रोड पुजेवेजा में है खोजता एगो मेल ग्रेड 2 वेल्डर जे फोम थाली पहड़ लेबा और साथ में चाहना एगो मेल हेल्पर जे फोम थाली पहड़ लेबा एक बरिस के एक्सपीरियंस बा इन फर्नीचर पेंटिंग एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 5884 1760 पर या 5910 43 92 पर या कभी भी आप लोग सकब जाए AHP हमिद कंपनी लिमिटेड बसगीत रोड पुजेवेजा अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जेनुइन कंपनी लिमिटेड जोन खोबियो न्यू खोव में है खोजाता दुगो मेल क्राफ्ट्समैन जे एसी रे पहले बाद दू बरिस के एक्सपीरियंस बा और चाहेला कैंडल मेकर एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन जेनुइन कंपनी लिमिटेड एट gmail.com या फोन करिए 5907 7413 पर या 5999 0739 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 23 जून 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग अलसीदो लिमिटेड जोन मो मास्काल पिछी काफरी में है खोजाता एगो टेक्नीशियन और तोहरा टेक्नीशियन के सकबा ई काम खातिर एप्लीकेशन करे और तोहरा जोन ट्रेनिंग बा वो प्रोवाइड करल जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फॉर फिशिंग पर्पोज और एप्लीकेशन खातिर आप कभी भी सकबा जाए अलसीदो लिमिटेड मो मास्काल पिछी काफरी अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 9 दिसंबर 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग KKD ज्वेलरी एंड कंपनी लिमिटेड जोन कालीमाई रोड होशनवा में है खोजत वंजा दुगो मेल ज्वेलरी प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर जिनकर कम से कम 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5907 9 63 15 पर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 23 जून 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रिटी मेटल वर्क्स लिमिटेड जोन ओल्ड केदे रोड पोर्टलिस में है खोजता 5 गो मेल टर्नर जिनका 5 या 10 बरिस के एक्सपीरियंस बा 5 गो मेल फिटर जिनका 5 या 10 बरिस के एक्सपीरियंस बा 5 गो मेल CNC ऑपरेटर जिनका 5 या 10 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 206 33 33 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 27 जून 2026 सेक्टर कंस्ट्रक्शन सत्यम देव इमांडी जोन क्रिमेशन रोड होशवा में है खोजत हवंजा एगो मेल हैंडी वर्कर जिनकर कम से कम 6 महीना के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5254 0405 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून 2026 सेक्टर कंस्ट्रक्शन एस स्कफोल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड जोन क्रिमेशन रोड बुआ रूज में है खोजत हवंजा

30 को मेल हेल्पर जिनकर कम से कम दो बरिस के लिए एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर फोन करिए दे विथ दो थान थान काट पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 23 जून 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड टी सिंह कंपनी लिमिटेड जो आवेदी एक लाख छे मौसल मकों इच्छे भ्रम स्थान फ्लाक में है खोजत वंजा 15 गो फीमेल हैंड पाक जे एस सी ले पहड़ लेबा और एक बार इसके लिए एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन कभी भी आप लोग सक बजा जाए टी सिंह कंपनी लिमिटेड अवनी एक लाभ छे मौसल मकों इच्छे भ्रम स्थान फ्लाक कर्ज भेजे के आखिरी तारीख 27 जून 2026। सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सिंपली प्लस कंपनी लिमिटेड जिन लोलजी लेन मोताबा में है खुजाते 4 गो मेल बस ड्राइवर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा एगो मेल हैंडी वर्कर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 52 51 89 69 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 23 जून 2026। सेक्टर होटल हॉलीडे एंड लेजर रिजोर्ट्स लिमिटेड लुक्स घोंगोब जिन पॉइंट रिजान घोंगोब में है खुजाते 4 गो फीमेल वाले जिनकर 3 या 4 बरिस के एक्सपीरियंस बा 2 गो फीमेल वेट्रेस जिनकर 3 या 4 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कभी भी सक बजाए हॉलीडे एंड लेजर रिजोर्ट्स लिमिटेड लुक्स घोंगोब पॉइंट रिजान घोंगोब अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 26 जून 2026। सेक्टर हेल्थ एंड वेलनेस किसविच स्पा एंड सलून लिमिटेड जोन रॉयल रोड लावोंचा में है खोजाता 2 गो ब्यूटिशियंस और एक खातिर द्वारा चाहना कम से कम 2 बरिस के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 52 51 77 42 पर या कभी भी आप लोग सकबर जाए किसविच स्पा एंड सलून लिमिटेड रॉयल रोड लावोंचा अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 27 जून 2026। सेक्टर ऑटोमोटिव गराज ऑटो रिपेयर लिमिटेड जोन शिवाला रोड मोगू में है खोजाता 2 गो मेल मोटर व्हीकल मैकेनिक जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 77 87 29 पर या कभी भी आप सक बजा अपन मेल विदा करे अपन सीवी विदा करे मेल द्वारा krishnaramphal@gmail.com अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 30 जून 2026। सेक्टर क्लीनिंग सर्विसेज ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जनरल रोड काशी पोर्ट लुइस में खोजता 24 गो फैक्ट्री ऑपरेटर जिसे पे ओले पहाड़ लेबा 10 गो गुड्स व्हीकल ड्राइवर जिनकर पास गुड्स व्हीकल लाइसेंस भी बा और साथ में 10 गो प्रोडक्शन सुपरवाइजर आप लोग सकबज एप्लीकेशन खातिर फोन करे 207-2000 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे के बीच या अपन सीवी विदा करिए ई मेल एड्रेस पर humancapital@dcs.mu पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून 2026। सेक्टर क्लीनिंग सर्विसेज एन के 7 कार वॉश लिमिटेड जुन तुमी दारिफात कौन रीता स्ट्रीट क्यूपिप में है खोजत वंजा 3 गो मेल का वालेट और तोहरा चाला कम से कम एक बरिस के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57 51 39 61 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 23 जून 2026। सेक्टर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सदक सेक्रेटारिया खोजत वंजा सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर आईसीटी और ऑफिसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स खातिन एप्लीकेशन खातिन तोहर से मांग करल जाता है कि एगो सॉफ्ट कॉपी खाली वर्ड फॉर्मेट में विदा करिया शुक्रवार 26 जून तक दिन के 2 बजे से पहले और पता हज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड या तो फिर ईमेल एड्रेस है mofarc@govibu.org। तो जितना भी लोग एप्लीकेशन भेजत वजह याद रखिया तोहर साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जोन बा तोहरा चाहना साइन करके गो कवरिंग लेटर डिस्क्राइब चाहना करके तोहर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सब कुछ और तोहर जोन करिकुलम विताए बा वो 5 पेज से ज्यादा नहीं चाहना रहे के जेकर में तोहर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्रीज डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स रही और अनसर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एकर में एक्सेप्टेड नहीं हो जाए और तोहर एज लिमिट 52 यानी सेकंडरीजों से ज़्यादा नहीं चाहेला रहेगी और एप्लीकेशन याद रखिए सीधे सादिक सेक्रेटारिया के नहीं सकेला विदा करे चाहेला जिकर क्वालिफिकाइड कैंडिडेट्स वंसर ओलोगे के सकियन जा यहाँ पर स्वाजगी करे ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट चलिए चेक करिए http://foreign.govibu.org या तो फिर https://www.sadik.int और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 26 जून 2026। और वैकेंसीज जो पब्लिक सेक्टर में है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता ईईजी टेक्नीशियन
और एक खातिन एप्लीकेशन सकब विदा करे या चाह के चेक करिए वेबसाइट https://pse.gov.org अर्ज भेजे के आखिरी तारीख 29 जून 2000

0: 2026 और यही वेबसाइट पर बाकी जो काम बा यहाँ सक बजा जाके चेके करे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता बायोमेडिकल इंजीनियर या सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खोजता कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खातिन मैनेजर XBRL और तोहर खातिन अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 30 जून 2026 जबकि पुलिस डिपार्टमेंट खातिन केटरिंग सुपरवाइजर के जो एप्लीकेशन व काम खातिर उ सकबा विदा करे बाय लेटेस्ट 6 जुलाई 2026 लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन ब्रह्मस्थान विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ फ्लाक खोजता विलेज हॉल एंड टीवी अटेंडेंट पार्ट टाइम और मिडलैंड्स विलेज काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ घोंपो खोजता विलेज हॉल एंड टीवी अटेंडेंट पार्ट टाइम एक खातिन जइया http://lgsc.gov.org अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 जून 2026 जबकि प्राइवेट हाउस होल्ड खातिन यहाँ पर हाउस मेड चाहे ला प्रोविडेंस रिजो खातिन एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए EIC कॉची मिलते 435-55-30 या 435-33-52 पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस जुनबा म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ काटरबोन के साथ कोलैबोरेशन करके जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज करता जुन गुरुवार 25 जून के होए के बाद सुबह 9:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच जहां पर प्राइवेट कंपनीज पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस अकेडमी ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन करियर्स गाइडेंस सर्विस मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग यानी MITD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल HRDC सबको शामिल रही या तो फिर हेल्प डेस्क पर सकबा जा विथ C003 पर कॉल करे और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर अप्लाई सकबा करे इनटेक फॉर एकेडमिक ईयर वैवेंसेड डेडलाइन है सोमवार 22 जून 2026 एप्लीकेशन ऑनलाइन सकबा करे https://mgiportal.ac.mu/ पर ज्यादा जानकारी के लिए 403-20-38 पर आप लोग सकबजा कॉल करे त ई रहल नु थावाई नु लावेनी जन तौर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल
1: ये है रेडियो मॉरिशस
2: सुबह के 7:28 हो रहे रेडियो मॉरिशस पर आपका स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ ग्रैंड रिट्रीट बोन अक्यूय SSS जिमनाज इस्कॉन और साचू कुलेन रोड के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 21 जून को सुबह के 8:15 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और यस लवेनी मोसेलमो फ्रांगीपान मोसेलमो ब्लूप्रिंट मोसेलमो अजाली स्कूल लेन सिमेट्री रोड और VOS लवेनी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 21 जून को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और कैटरबोन Yes, Catrebon, Avenue Boundary, Comte de Lille, Robert Edward Hart, Dr. Ross, Dr. Ferrier और Hitchcock के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 21 जून को दिन के 9 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी फिर यस Beaubassin, Dr. Lesure, Codabacas, Avenue Philippe Raoul Avenue, Maudaï Avenue, Dream Price, Beaubassin, Résidence, Villemain, NHDC Villemain, Dr. Red, Mahadeo Beltou, Duperré, Châteauneuf, Foraspas, Medjugalia, et Wahan, qui est le concours de Kia Jata, qui, quand le rivière qui se joue, qui dit que सुबह के 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच और दोपहर बाद के 2 से 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी फिर यस Beaubassin सिरिल लेकनिंग्स बिसावन बिल्टू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 20 जून को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी

0: कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एक नई सुबह है आज। इस नई सुबह का आगाज कीजिए हमारे साथ MBC रेडियो मॉर्चर्स के साथ, और आशा करते हैं कि आज जो भी हो आपके लिए मंगल ही मंगलमय हो, कल्याण ही कल्याण हो, जहां से भी आप सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ नमस्कार आप सबको। शनिवार का दिन है आज, 20 जून 2026। आशा करते हैं कि आज की सुबह और आज का दिन आपके लिए अच्छी तरह से बीते। वेलकम टू मस्त मॉर्निंग शो। सुबह का नजाना दिन के 9 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे गाने, मीठी मीठी बातें आपकी मॉर्निंग को गुडी गुड बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस मॉर्निंग को, मस्त मॉर्निंग शो को, सुबह का नजाना को, आज के चिंतन के साथ डॉक्टर शांति महावीर जी द्वारा।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: अगर कोई हमारे साथ छल कपट या फिर बुरा व्यवहार कर रहा हो, तो भी हमें अच्छे और सच्चे बने रहना चाहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर खुद को बीमार कर लेना समझदारी नहीं होती है।

हर इंसान ढूंढता है थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार जिंदगी में। अगर रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंसान को थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा अपनापन मिल जाए तो क्या बात है, जीवन सफल हो जाए। पर खुशियाँ उन्हीं मिलती है जो दूसरों को खुशी देती है। सो दूसरों को खुशी और प्यार देने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम दूसरे इंसान को प्यार खुशी देते हैं तो हमें बदले में भी प्यार, खुशियाँ और आशीर्वाद मिलता है।

जी हाँ, सच्चा इंसान वो है जो कभी किसी को दुखी नहीं करता। और इंसान का कर्तव्य है कि वो हर एक इंसान की मदद करे, सहायता करे। सुबह के 7:40 हो रहे, बहुत ही अच्छा लग रहे हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो मोशन के लहरों पे, साथ में आप हमें देख भी पा रहे हैं। यस, यू कैन वॉच अस ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑफ MBC रेडियो मोशन। थैंक यू फॉर ऑल दोज लवली पीपल वॉचिंग मी राइट नाउ। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। एक खास दोस्त अभी बीमार है, उसे फीवर हुआ है, तो दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। उसके बेस्ट फ्रेंड ने मैसेज भेजा है, ए दोस्त तुम ठीक हो जाओ, यही मेरी दिल की दुआ है। और यह प्यारा सा गाना आप सभी रेडियो मोशस के सुनने वाले दोस्तों के नाम, हम जानते हैं आप लोग काफ़ी व्यस्त है इस मॉर्निंग को, पर हमें सुन रही है। थैंक यू जी हमें सुनने के लिए और थोड़ा सा समय देने के लिए। एंड कल 21 जून को, कल संडे को, हम मनाएंगे दो पर्व। एक है म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस, और दूसरा है योगा डे, विश्व योगा दिवस। सो अभी से ही हैप्पी म्यूजिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना, अगर तुम ना होते, फिल्म से लिया गया। वाह क्या म्यूजिक है, आई जस्ट लव इट। आप भी इस गीत को पसंद करते हैं ना, हो जाएगी गाना आपके नाम भी।

हमारी ज़िंदगी में किसी के होने से बहुत कुछ होता है। एक दोस्त, एक हमसफ़र, एक हमनवा, कोई ना कोई साथ अगर दे तो ज़िंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। ज़िंदगी में बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे दुख हैं, अगर किसी का सहारा मिल जाए किसी मोड़ पर तो क्या बात है। और अगर वो हमसफ़र आपके पास हो और आपसे प्यार करे, आपका केयर करे तो क्या बात है। ऐसे हम सफ़र को हमेशा अपने दिल में बसा के रखिएगा।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, इसी गीत के साथ ही मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना पॉटवान यहीं पर समाप्त होता है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ज्ञान सर्वर प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। 8 बजे भोजपुरी में समाचार, शोक समाचार पर ही जाएंगे। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर विजय मस्त मॉर्निंग शो पार्ट 2 सुबह का नजराना। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर जान सरोवर नामक साप्ताहिक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज अतिथि के रूप में श्रीमान मोहरलाल चमन ओएसके हमारे मध्य में उपस्थित हैं। चमन जी, इस कार्यक्रम में आपका हृदय से अभिवादन करते हैं।
1: नमस्ते।
0: श्रोताओं, आप मेरी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है। भारतीय परंपरा में तो संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, भावों की अभिव्यक्ति तथा ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना गया है। कहा भी गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के समन्वय को संगीत कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस अर्थात वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगीत का महत्व होता है और संगीत पर ही आधारित हमारी यह चर्चा परिचर्चा सत्र होगा और इसके लिए श्रीमान मोहनलाल चमन जी मध्य में उपस्थित हैं, एमबीसी के मंच पर आमंत्रित हैं। श्रोताओं, चमन जी 15 वर्षों तक हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की 1982 से। अब तक वे एमजीआई में संगीत शिक्षक के रूप में तथा माध्यमिक स्कूलों में गायन विषय से संबंधित अपनी सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि सन 2025 में शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार कार्य हेतु उन्हें मॉरिशसीय सरकार द्वारा ओएसके की उपाधि से सम्मानित किया गया। चमन जी, आप बधाई के पात्र हैं।
1: धन्यवाद।
0: चमन जी, सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि विश्व संगीत दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: हाँ, पहले विश्व जो संगीत दिवस को बोलते हैं या फेट डे ला म्यूजिक से ज़्यादा जाना जाता है, जो 21 जून को मनाते हैं
0: जी,
1: वो 1982 से शुरू हुआ है। लेकिन इससे पहले 1948 में
0: जी
1: जो बहुत बड़े वायलिन वादक थे यहूदी मेनोहिन, उन्होंने अमेरिका में विश्व ये संगीत दिवस, विश्व संगीत या बोलेंगे समारोह उन्होंने शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: और तब से अनेक एंग्लोफोन देशों में जहाँ पर अंग्रेजी चलती है वहाँ पर अंग्रेजी भाषा, तो वहाँ पर यही मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और ये जो 21 जून को है ये फ्रांसीसी उपनिवेशों में मनाई जाती है।
0: अच्छा। हाँ। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसको?
1: इसका मुख्य उद्देश्य है एक मंच प्रदान करना उन लोगों के लिए जिनको मंच नहीं मिलता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आप जानेंगे कि इस कला में कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी परिपूर्ण हैं और वो व्यवसाय है उनका, संगीत
0: विशेषज्ञ
1: है, तो उनको तो मंच मिलता रहता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संगीत से प्रेम रखते हैं, अच्छे गायन है, शौकीन है, उनको मंच नहीं मिलता है। तो उनको ये मंच प्रदान करने के लिए ये त्योहार शुरू हुआ था।
0: बहुत

0: गुरुजी, संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा अर्थात यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, सृष्टि के आदि में हम जानते हैं कि सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो नाद से हुई है, इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मनाद।
0: जी हाँ,
1: संगीत का जो जड़ है वो नाद है। हम लोगों के संगीत में जब तक हम नाद से परिचित नहीं होंगे
0: जी हाँ,
1: तो हमें संगीत नहीं आया। दो प्रकार के नाद होते हैं, आहत नाद, अनहत नाद।
0: अनहत नाद,
1: आहत बोलते हैं जो सुन सकते हैं हम, और अनहत होता है जो हम सुन नहीं सकते हैं लेकिन वो भी नाद है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि आप टेलीफोन से बात करते हैं
0: जी,
1: दूरभाष्य, तो वो पता नहीं कैसे जाता है ना, एक यंत्र
0: वायरलेस
1: चला जाता है, वो भी साउंड है, वो
0: साउंड है।
1: हाँ, तो इस प्रकार के दो नाद होते हैं। तो संगीत जो है वो तो हमें धरोहर में हमें प्राप्त हुआ है
0: जी,
1: वो हमारा हमारे खून में हमारे शरीर में है। हृदय धड़कता है तो हृदय के धड़कन से आप जीवित हैं
0: जी हाँ।
1: अगर हृदय में धड़कन नहीं है तो आप मृत हैं। तो इसीलिए वो वहां से स्वर वहीं से पैदा होता है
0: जी।
1: तो स्वर के बिना हम तो जी नहीं सकते हैं, इसीलिए संगीत हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है
0: और सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सार्वभौमिक है जी।
1: सारे लोग जो हैं संगीत से जुड़े हुए हैं, भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन संगीत तो संगीत है,
0: क्योंकि जैसे एक मधुर ध्वनि हम सुनते हैं
1: हाँ,
0: तो सभी लोग एक साथ झूमने लगते
1: कर देता है
0: जी, आकर्षित करने लगता है एकदम,
1: क्योंकि ये नियमित नाद से पैदा होता है संगीत। जो स्वर होता है उसको बोलते हैं रेगुलर वाइब्रेशन।
0: अच्छा,
1: अन्यथा अगर वो नियमित कंपन से नहीं पैदा होता तो उसको हम स्वर नहीं कहते हैं। हाँ, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर होते हैं एक असुर होते हैं।
0: एकदम सही। तो जब संगीत मन को मोह लेता है तब उसकी कोई सीमा नहीं रहती।
1: अवश्य
0: किसी भी भाषा का गीत या संगीत कर्णप्रिय हो तो उसका अमिट प्रभाव पड़ता ही है।
1: हाँ
0: चमन जी, आपके जीवन में संगीत का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा।
1: देखिए, मैं शायद बचपन से ही संगीत से जुड़ा हुआ हूं।
0: जी,
1: मेरे नाना वो गायक थे
0: जी हाँ,
1: और संभवतः उसी से मुझे वो प्राप्त हुआ है धरोहर में। मैंने उसको देखा नहीं और ना ही मैंने सुना कभी उसको
0: जी हाँ,
1: लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नाना मेरे में जीवित है।
0: तो किस उम्र से आप संस्कृत से जुड़े?
1: संगीत से जुड़ा हूँ मैं जब से मैंने होश संभाला है, जैसे बोलते हैं 12-13 वर्ष की उम्र में मैंने गायन शुरू कर दिया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, हमारे गांव में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो हमेशा भागवत की आयोजन करते थे, 15 दिन भागवत होता था। तो उस भागवत में सबसे पहले कीर्तन हुआ करता था, भजन हुआ करते थे,
0: श्लोक पाठ।
1: तो मैं अपने नाम दे देता था कि मैं आऊंगा गाने।
0: अच्छा।
1: तो उन दिनों मैं प्रदीप के गीत गाया करता था। हाँ,
0: अच्छा है।
1: तो वहां से शुरू हुआ है।
0: जी जी जी। तो मैं तो कहूंगा कि संगीत हमारे शरीर में विद्यमान उस आत्मा की तरह है जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। गुरु जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख परंपराओं के नाम बताइए।
1: हाँ, देखिए, संगीत तो वैसे एक ही है, सब सारे संसार में एक ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो कि उनमें थोड़ा अलगाव पैदा करता है।
0: जी हाँ।
1: जैसे स्वरों का किस प्रकार से प्रयोग करना वो अलग अलग होता है
0: जी।
1: तो भारतीय संगीत में दो प्रकार के संगीत है, कि हिंदुस्तानी
0: हाँ।
1: जो उत्तर भारत में प्रचलित है।
0: अच्छा।
1: और दक्षिण में है कर्नाटिक संगीत।
0: कर्नाटिक
1: संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में भेद थोड़ा थोड़ा है
0: जी हाँ।
1: राग वही है लेकिन नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उसके स्वरों की जो संरचना है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस
0: हाँ।
1: क्योंकि एक स्वर का नियमित एक वाइब्रेशन होता है, मान लीजिए सा जो होता है हमारे 240 वाइब्रेशंस पर सेकंड होता है। हाँ, तो ये बराबर नहीं होता है वेस्टर्न म्यूजिक में
0: जी हाँ।
1: ये बराबर नहीं होता है कर्नाटिक संगीत में, उसमें थोड़ा सा हेर फेर होता है, इसी के कारण वो अलग हो जाते हैं। और स्वरों के लेने का ढंग जो है, स्वरों के उपयोग करने का ढंग, स्वरों को गाने का ढंग अलग अलग हो जाता है
0: जी हाँ। MGI में भी कर्नाटिक
1: संगीत होता है,
0: संगीत होता है।
1: और एक और अभी कुछ समय से रविंद्र संगीत भी प्रचलित है भारत में, रविंद्र संगीत।
0: अच्छा।
1: वो भी प्रचलित है रविंद्र,
0: उसकी क्या विशेषता है रविंद्र संगीत?
1: वो ज्यादा बंगाल में प्रचलित हुआ तो उसका एक अलग ढंग है, उसमें ज्यादातर खोल

0: बजता है, मतलब तबला जैसे साउथ इंडियन म्यूजिक में, कर्नाटिक संगीत में, जैसे उत्तर भारत में तबला बजता है मुख्य जो वाद्य ताल वाद्य है वो तबला है, तो जो कर्नाटक में है, मतलब कर्नाटिक संगीत में साउथ इंडियन म्यूजिक, उसमें तबला नहीं बजता है।
1: अभी हाल ही में आरटीआई में एक प्रोग्राम हुआ,
0: हाँ,
1: तो वहां पर भी कुछ सुनने को मिला।
0: हाँ, तो आपने देखा, हाँ,
1: एकला चलू
0: रे, हाँ,
1: हाँ, ये भी एक प्रकार का संगीत ही है।
0: हाँ, तो वही है रविंद्र संगीत,
1: यही संगीत, हाँ, ओके, ठीक है। गुरुजी, संगीत मानसिक स्वास्थ्य और तनाव नियंत्रण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य,
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आजकल इस पर ज्यादा शोध कार्य चल रहा है। कई जगहों पर भारत में पेड़ पौधों, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर फल आदि होते हैं, तो वहाँ पर संगीत द्वारा प्रयोगात्मक कार्य चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर संगीत विद्यमान रहता है वहाँ पर पेड़ ज्यादा फल देते हैं, गाय ज्यादा दूध देते हैं और फूल भी बहुत अच्छे ढंग से खिलते हैं। और जहाँ पर संगीत नहीं होता है वो समझो वहाँ पर थोड़ा पैदावार तो होता है लेकिन उसमें पैदावार में कमी आती है।
1: जी,
0: तो स्वाभाविक है मनुष्य के ऊपर भी उसका असर होता है। भारत में जो भारतीय संगीत है वो रागों पर आधारित है। राग जो है विशेष स्वरों की संरचना होती है।
1: अच्छा।
0: जैसे मान लीजिए एक राग में लेता हूँ भैरव, तो भैरव में रे और ध कोमल होते हैं। सारे गा मा पा ध नी सा, ये शुद्ध स्वर हो गया।
1: अच्छा।
0: लेकिन सारे गा मा पा ध नी सा, ये राग भैरव हो गया।
1: अच्छा,
0: है ना। अब उसमें मैं अगर कुछ स्वर काट दूं, सारे गा पा ध सा सा ध प ग रे सा, इसमें दो स्वर काट दिया, इसमें पांच ही स्वर है सात स्वर के बजाय। तो इस प्रकार से राग पैदा होते हैं। तो अलग अलग रागों का हमारे मानसिकता पर असर होता है।
1: असर होता है।
0: केवल हम, जैसे मैंने कहा कि पेड़ पौधों पर होता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं हो, जानवरों पर भी होता है। तो जैसे एक उदाहरण है,
1: जी हाँ,
0: अगर आपके सिरदर्द है ज्यादा तो आप भैरव सुनिए, कुछ समय तक आप राग भैरव सुनेंगे, सिरदर्द दूर हो जाएगा। अस्थमा है आपको तो राग मालकों सुनिए, रक्तचाप है तो आप भूपाली सुनिए।
1: अद्भुत।
0: हाँ, ये अलग अलग, इस पर अनुसंधान हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ,
1: एक्सपेरिमेंट
0: होने के बाद ये निर्णय निकला है।
1: बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं।
0: हाँ, अब यादगाश आपके भूलते हैं आप,
1: मेमोरी, यस,
0: तो शिवरंजनी राग कीजिए, सुनिए शिवरंजनी राग सुनने के बाद, है ना, कमजोरी के लिए जय जयवंती राग सुनिए, एसिडिटी के लिए राग खमाज सुनिए, और अनिद्रा नींद में नहीं है तो भैरवी सुनिए, और हृदय रोग अगर हो तो दरबारी सुनिए।
1: जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। चमन जी, आपके अमूल्य व शिक्षाप्रद विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रोताओं, निस्संदेह विश्व संगीत दिवस या संगीत दिवस मनाना बहुत आवश्यक है।
0: बहुत आवश्यक।
1: संगीत मानसिक शांति और आनंद प्रदान करता है। यह भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। संगीत ही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक सिद्ध होता है। यह व्यक्तित्व विकास तथा एकाग्रता को बढ़ाता है तथा आध्यात्मिक चेतना और आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और गुरुजी चमन को आज्ञा दीजिए अगले सप्ताह पुनः जान सरोवर नामक कार्यक्रम से जुड़ने की कृपा करें। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।
0: नमस्ते और धन्यवाद श्रोताओं को, आपको भी।

بخت پجیر کی آد بجر باتی. नमस्ते. भोजपुरी में समाचार सुना जा. बजट 2026-2027 के मुताबिक जो नजना 31 दिसंबर 2026 ले बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के पास रहियन जा और उनकरा प्राप्त करते रहियन जा उनकरा नवा स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त होई

0: एसएपी के भुगतान सरकार दिने घोषित मीन्स टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर करल जाए। एसएपी के राशि को तय मानक के मुताबिक निर्धारित करल जाए, जिकर बाद में मीन्स टेस्ट लागू करल जाए। सरकार ये भी स्पष्ट कर लन कि मौजूदा पीओपी लाभार्थी की पेंशन पहल का जनवरी 2027 से एसएपी के होयला पर अपन आप बंद नहीं होई। Budget 2026-2027 qui bat la Confédération des travailleurs du secteur privé CTSP open pratiquia vyakta karlan CTSP bolan ki i budget am janta ke vastavik zarurat se dur bate union khaskar ki pension reform aur means test par apatti jatailan bolan ki i buzurg log ki pension pawe khatin apan arthik sthiti sabit kare के परी जन उनकर मुताबिक सही नए बातें सीटीएसपी एक बजाय यूनिवर्सल पेंशन की जारी रखे के और उच्च आय होला जना पर तनिजस्ती टैक्स लगावे के सुझाव देलन। सीटीएसपी के प्रवक्ता रियाज चतू ई बात के ऐलान करलन जा। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार की सदस्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस करलन, जेकर में उघोषित फैसला पर अपन प्रतिक्रिया देलन। इस मौका पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरियाना वाओ मारी, ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन और शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद भी मौजूद रहलन जा। अरियाना वाओ मारी बोलन कि वित्त मंत्रालय के भेजल कर उनकर सब प्रस्ताव के स्वीकार कर ले बातें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री खातिन बजट कई गो प्राथमिक मुद्दा के महत्वपूर्ण बढ़ावा दिली बातें, जेकर में डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल बातें। एकर संगे एडॉप्शन से जुड़ल नवा प्रावधान भी बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल के सामने रखल जाए। ओ मैटर्निटी लीव के गो बरीस ले बढ़ावे पर भी अपन संतुष्टि जतैलन। मंत्री पैट्रिक आसियावादेन बोलन के ऊर्जा ई बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता बाते। घर में सोलर एनर्जी की बढ़ावा देवे खातिर हर परिवार के अपन छत घर के छत पर सोलर पैनल्स लगावे खातिर 75,000 रुपया की सहायता देवल जाए। और शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद बोलन कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट के मुख्य ध्यान समावेशन पर बातें। घोषित प्रावधान में स्पेशल एजुकेशन नीड स्कूल के जस्ती मजबूत करे के कदम भी शामिल बातें। कर संगीय स्कूल में उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ अभियान की तेज करे खातिर 10 मिलियन रुपया की राशि रखल गल बातें। बजट 2026-2027 पर आसिम के अध्यक्ष जयंत चेलम बोलन की कई गो कदम से उपभोक्ता पर बोझ कमती हो सकेला, किंतु उनकर मुताबिक अंतिम निष्कर्ष नए निकावल जा सके। कहे कि बजट दस्तावेज के विस्तार से अध्ययन करे के परी, जिमें सब घोषित कदम और उनकर उपभोक्ता पर वास्तविक प्रभाव के जस्ती निमन से समझल जा सकी। विदेश में शुक्रवार 19 जून के ईरान और अमेरिका के बीच लंबा समय से मौजूद विवाद के खत्म करके शांति समझौता पर आखिरी मुहर लगल बातें। एकर संगे इसराइल और हिजबुल्ला के लेके भी बड़ा खबर सामने आल बातें। प्राप्त खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बोलन की कल सांझ कि इसराइल और हिजबुल्ला भी युद्ध विराम खातिर अपन सहमति देलन जा। तो ये रहे भोजपुरी में समाचार, आप लोग के ध्यान का धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Kanpun Lane, Nouvelle France, 85 Paris, 85 ans, qui Sri Dindya Rambanju, Sri Dindayal रामबजू, श्री दीनदयाल रामबजू, जिनका लोग जगदीश नाम से जानते हैं, जा गुजर गए। उनकर माती आज दिन के 11:30, आज दिन के 11:30 उनकर बेटी श्रीमती बाबीता मांडव के खरे कानपुर ले नुवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार के लिए खौम्बा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 5 जॉन केनेडी स्ट्रीट थ्रोंगबा पोल्ट्री में, नंबर 5 जॉन केनेडी स्ट्रीट थ्रोंगबा पोल्ट्री में 68 बरिस की 68 ओं के श्री रामगीत हरिमन सिंह जगदेव, श्री रामगीत हरिमन सिंह जगदेव, जिनका लोग रामगीत नाम से जानते हैं, जा गुजर गर हवन करमा थी, आज दिन के एक बजे उनकर घर है। नंबर 5 जॉन केनेडी स्ट्रीट थ्रोंगबा पोल्ट्री से उठा के अंतिम संस्कार करें थ्रोंगबा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। Number 10 Venkatasami Shebel Poutimi, number 10 Venkatasami Shebel Poutimi, Sir Sadbariski, Susan Setan Kirshi, Vinodram.

सामी श्री विनोदराम सामी जिनका रारो गांव सुनाम से रन रंजा गुजरगर हुन करमा दिया आज दिन के 10 बजे उन कर पत्नी श्रीमती चिंता राम सामी के घरे मरती इस वेंकता सामी श्री बैल पोटवी से उठा कि अंतिम संस्कार खातिर श्री बैल के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टुडे एट 10 AM ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 बरिस की सुजन कैसों की श्रीमती दाऊमत ओरी जिनका लोग कुमारी नाम से चंद्र रंजा गुजरगर होन कर माती आज दिन के दस बजे उनकर बेटा श्री विशाल ओरी के घरे ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठा के दफनावे खातिन को ब्यो ओरी लेन के शमशान भूमि दी जावल जा कमीशन फ्यूनिडर दिया 10 AM Savan Road, Nouvelle-France, 66 बरिस के 66 ans के श्री गौकरण मंगा जिनकरा लोग कस्तिलो नाम से जनर रंजा गुजर कर होन करमाती आज दिन के 11 बज के आधा उनकर घरे सवान रोड वेलफ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिन मारी जानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM रिजर्वर रोड सुतीस कॉम्बी में 42 बरिस के 42 ans के श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाशी नाम बंधु जिनका लोक श्वेता नाम से चंद्र रंजा गुजरकर हवन करवाती आज दिन के दस बजे उनकर पति श्री ऋषाल रामचंद के घरे रिजर्वर रोड सुचीस खॉम्बे से उठा के अंतिम संस्कार खातिन खॉम्बे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 10 AM टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल में मंदिरम के भीरी 75 बरिस की सुजन कैजों के श्री वुशांत कादारू जिनका लोग पाविन कंट्रोल नाम से जाने रंजा गुजरगर होन कर माती आज इनके दो बजे उनकर घर ही टेम्पल रोड बेल्वी मोरेल से उठा के अंतिम संस्कार का दिन खाऊ पावी लावंतिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 2 PM रेमी ओलिये माई भूमि 96 बरिस के 96 ans के श्री सुपाया मुगम जिनका लोग नादिस नाम से चंदन रंजा गुजरकर हवन कर माती आज दिन के एक बजे उनकर घर ही रेमियोली माईबू से उठा के अंतिम संस्कार खाते न दफनावे खातिन पॉइंट भूख दिवस रिवे देखा योल के शमशान भूमि चावल जाए फिनिश रोज डे एट 1 PM मिक्वालेन शमैक्रोनी में 69 बरिस के 69 ans के श्री ईश्वंता देव तानिया जिनका लोग ईश्वर नाम से जाना रंजा उर्जुन जिनका लोग मालूम पैंथ नाम से भी जाना रंजा गुजर ग्रहण कर माती आज दिन के सवा एक बजे उनकर घरे मिकवा लेन शमेघोनी से उठा के कौंगुपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1:15 PM सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमिशन रोड बेलमोर में 64 बरिस की 64 ans के श्री सतीश मुहाबल जिनका लोग मन नाम से जाने रंजा गुजर गर होन कर माती आज दिन के दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती गौमती मुहाबल की घर सन ट्रॉपिकल पैराडाइज क्रिमिशन रोड बेलमाओ से उठा के दफनावी खातिन थोड़ो जूस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 2 PM रॉय रोड मोटाइलोंग में 71 बरिस की 71 ans के श्री ताराचंद गोपल जिनका लोग बिनेश नाम से जाने रंजा गुजर गल होन कर माती आज दिन के डेढ़ बजे उनकर पत्नी श्रीमती उमा देवी मोलू गोपल के घरे रॉय रोड मोटाइलोंग से उठा के अंतिम संस्कार खातिन बुआ मौशन के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM नंबर चार अवेन्यू ला पेरोज बेल रोज में 78 बरिस के 78 ans के श्री बिद्यानंद प्रभु जिनका लोग प्रेम नाम से जाने रंजा और उजन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर विभाग के पूर्व कर्मचारी रंजा गुजरगर हवन करमाती आज दिन के डेढ़ बजे उनकर पत्नी श्रीमती गीता प्रभु के घर नंबर 4 AVENUE LA PERROUSE से उठा के अंतिम संस्कार खातिन कोडू गांव के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमशन टुडे एट 1:30 PM रॉय रोड पेन मान्यों में 45 बरिस की 45 ans के श्री राजा राम जापन जिनका लोग बिग स्वाविन नाम से जाना रंजा गुजरगर होन करमाती आज दिन के 3 बजे उनकर माँ श्रीमती नोएले

0: रामजापन की घरे रोद पेनमानियों से उठा किन तिम संस्कार खातिन पेनमानियों की शमशान भूमि चार बजाय कमीशन जुड़े आज फ्रू पी एम माम बहाल रोद बुआशियागी में माम बहाल रोद बुआशियागी में छप्पन बरिस के सुनगन सीजों के श्री नन किशोर मंगो श्री नन किशोर मंगो जिनका लोग अनिल नाम से जन रंजा गुजरगर हवन करमाती आज दिन के एक बजे उनकर माँ श्रीमती रेवती मंगाओ के घरे माम बहाल रोड बुआशाही से उठा के अंतिम संस्कार खातिन बुआशाही के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM कम्युनिटी सेंटर लेन अमिताज फिनिक्स में कम्युनिटी सेंटर लेन अमिताज फिनिक्स में 64 बरिस के सुसन काथों के श्री धनानंद सिंह सुनातन श्री धनानंद सिंह सुनातन जिनका लोग सुनील नाम से रंजा गुजरगर हवन करमाती आज इनके दो बजे आज इनके दो बजे उनकर घर कम्युनिटी सेंटर लेन अमिताज फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार का दिन फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रॉयल रोड मोंसेलमान सेंट एंद्रेमी रॉयल रोड मोंसेलमान सेंट एंद्रेमी 48 बरिस के 48 अंके श्री सुधीर कुमार जगदाऊ श्री सुधीर कुमार जगदाऊ जिनका लोग चंदा तुल्य नाम से जनक रंजा गुजरगर हवन करमाती आज दिन के 3 बजे आज इनके 3 बजे उनकर घर रॉयल रोड मोंसेलमान सेंट एंद्रे से उठा के अंतिम संस्कार का दिन मोंसेलमान सेंट एंद्रे की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोकग्रस्त परिवार संगे हमने की सहानुभूति बातें
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 8:13 हो रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। बोबासा सिरिल लेकनिंग्स बिसावन बिल्टू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 20 जून को सुबह के 8:30 से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएस और सुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
2: On the hour, every hour.

सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, सुनते रहिए प्यार से एमबीसी रेडियो मॉरिशस। सुबह 11:16 एक बार फिर स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और अभी से लेकर सुबह के 9 बजे तक यो मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट 2, और इसमें आप अपने नाम जोड़ सकते हैं, किसी का जन्मदिन है, शादी है, शादी की सालगिरह, या कोई खास इवेंट, तो बेशक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं कैसे, या फिर आप हमें SMS कीजिए हमारी टिकटॉक पेज पर, टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस। तो रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज आप हमें देख रहे हैं, थैंक यू जी, और रेडियो मॉरिशस पर आप हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, जी हाँ, अनुराग पोरवाल की आवाज़ में, और ये गीत हम चलाएंगे रिव्यू चुपोस के मानते सिंह, प्रतिमा मोहबल के नाम, और मोताबा के हिरीश नारायण के नाम, गेट वेल सून दोस्त। और यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे मनुदा पास्वामी के नाम, सन बुकम, आशना के नाम, अन्ना यह गीत आपके नाम भी, तनु बिहारी, धनुषा रतन, और साथ में दीप खत्री, सुबोल सुशील, दिनीस गोहापा, और यही गाना सूरज के नाम, बेबी रचना, ये गीत आपके नाम भी, पेंसिल गादू, अजय रिजाओ, अनिता मंगर, फिर बुझाऊना, सेवा मीरा रामास्वामी के नाम भी हम करेंगे, ये गाना जूली वर्जिनिया के नाम और विवेक के नाम भी, जो बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं। और यही गाना हम चलाएंगे माधव के, और के चाचू साइलेंट के नाम, और माधव जो अपने चाचू से बहुत प्यार करते हैं, और चाचू भी अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करते हैं, सो चाचा भतीजा का प्यार बरकरार रहे। चाचू भतीजा माधव की ओर से यह गीत जाता है उसके चाचू साइलेंट के नाम, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है। और राय तो यही गाना हम चलाएंगे कवि की ओर से, उनकी पत्नी टीना, मामा माला, बहन रीना और सब भैरव परिवार के नाम। और जितने भी लोग इस समय हमें टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं और रेडियो पर सुन रहे हैं, सो गीत आपके नाम भी सिर्फ तुम।

0: 1819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: इंसान मर जाते हैं पर प्यार हमेशा रहता है। प्यार कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर ये प्यार न होता दुनिया में तो आप न होते, हम न होते, कोई भी नहीं होता। इसी प्यार के दम पे टिकी है ये दुनिया। सो प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। सुबह 11:24, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं। अगला गाना तुम्हारी सिवा, जी हाँ, फिल्म तुम बिन का गाना है, गीत विमला जी के नाम। हेलो विमला। अनिल सोहरा, यह गीत आपके नाम भी। यह गीत बृंदा नारायण के नाम, और कांति जी, वानिसा जी है, शान है, अश्विनी है, हमारा साथ दे रही है, रतन खारका, कौतिक, सुबिता, यह गीत आपके नाम भी, कुजुदा, बृंदा पतर, इंदिरा लौटन, लोरी मारुक जी, और फिर यही गाना हम चलाएंगे फिरू अब्दुल के नाम। फातिमा है न्यू ग्रोव से, हाय राजन जी, गुड मॉर्निंग। और यही गीत विशाल मंडप जी के नाम, इटली से, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पूरे परिवार के लिए, और मौताबा में सभी मंडप परिवार के नाम यह गीत जाएगा। लोरी लोरियाना, यह गीत आपके नाम भी। आशा जानू कॉटेज से है, हेलो आशा जी, यह गीत आपकी मामा कुमारी, फिर शुभम, दीदी आरती, जीजा जी और पूरे जानू परिवार के लिए। और ये गाना राजमन्ना के नाम, और राजमन्ना के नाम चलेगा उनकी पत्नी, बच्चों के नाम भी, सावन और जिमी दुखिया, यह गीत आपके नाम भी, रवि दिनों, यह गीत आपके नाम, आपकी पत्नी।

बच्चों के नाम भी। यही गाना हम चलाएंगे सुदेश जसवा के नाम, उनकी माँ राजकुमारी, सब जसवा परिवार के नाम, चिबुक लोंग राजा, स्टीव नानो, प्रवीण भैरव, यह गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। वियर्जिनी हमारा साथ दे रही है, हाय वियर्जिनी, रानी माँ भी हमें देख रही है, फिर राजन साहब है, और जितने प्यारे प्यारे लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पर, और जितने प्यारे प्यारे लोग हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, यह गीत आपके नाम, और यही गीत रीता सीतालू के नाम, और उनके दोस्त है रंभा, फिर माया, मिसिज वका और सब परिवार के नाम। यही गीत चंपा और देविका रामगतिया के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। वंदना गुमानी, यह गीत आपके नाम, आपके परिवार और आपके मामा के नाम। तुम्हारे सिवाना चाहत करेंगे, बस तुम्ही से प्यार किया है, तुम्ही से प्यार करेंगे। प्यार करते रहिए, प्यार का मजा लेते रहिए, प्यार में बड़ा ही नशा है, प्यार में बड़ा ही मजा है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मोहब्बत ही मोहब्बत हो हर किसी की जिंदगी में, यही हम दिल से दुआ करते हैं। आजकल देखते हैं लोग बहुत ही वायलेंट, हिंसात्मक हो रहे हैं, बहुत हिंसा से भरे, छोटी छोटी बात पर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं, किसी को मार डालते। अरे भाई क्या हो रहा है लोगों को आजकल, खून खराबा ये सब, वेरी सैड वेरी सैड। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम सभी इंसान हैं और हमें इंसान बनकर रहना चाहिए, और कभी कभी इंसान हैवान बन जाता है तो बहुत बुरी चीज़ होती है दुनिया में। कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होता है, पर हम इंसान हैं, हमें इंसान बनकर रहना है कि नहीं। यस, अगला गाना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, ना ना ना ना ना ना ना मत हो ना रे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना, अगर कोई रूठ जाए तो उन्हें ऐसे ही मनाइएगा। आजकल कोई किसी को मनाता है या किसी को गुस्सा दिला देता है। सलीमा, नेक्स्ट गाना फॉर यू, ओ मेरे सोना रे। स्वीटी के अर्सन के बेटे आरव के लिए गाना, माधवी डुमाओ यह गीत आपके नाम भी, प्रेमिका सयंतन यह गीत आपके नाम भी, जरीन हाय जरीन, हमारी प्यारी और लवली जरीन के नाम अगला गीत, ओ मेरे सोना ओ मेरे सोना। हाय डॉक्टर अंजू, ये गीत आपके फियांसे के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ ये गाना। संगीता के नाम, लाखोजा से है आप, बहुत प्यार से जुड़ी हुई है टिकटॉक पेज पर, क्या बात है। और यही गाना हम चलाएंगे चित्रा और मोदल बे, उनके पति ज्ञान और सब विश्राम परिवार के नाम। यही गीत हम चलाएंगे रोबर्टो के नाम, हाय रोबर्टो। और यही गाना हम चलाएंगे आप सभी दोस्तों के लिए जो अभी भी नींद से जागे और सोच रहे हैं कि भाई आज कौन सा दिन है, कि आज मंडे तो नहीं, नहीं आज मंडे नहीं, आज सैटरडे है। यस, 20 जून 2026, हैप्पी म्यूजिक डे माधवी डुमाओ जी, और आप सभी को हैप्पी म्यूजिक डे विश करते हैं। प्रीतम शनिचार्य, गीत आपके नाम भी, आयुषी प्रीति हेलो तेओ, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। संजय बिहारी फ्रॉम मोताबा, उनके पूरे परिवार के लिए। हसीना गुलाम, यह गीत आपके नाम भी। भाई रफीक तायाक से, रफीक मोहित, यस तायाक से है आप, सो यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। वीना कुबुसामी, सुलमा दुखित, यह गीत आपके नाम भी। और इंदिरा लौटन की ओर से, उनके इंदिरा लौटन की ओर से दमराज लौटन के नाम, वो इस समय इटली में है और हमें सुन रहे हैं। इटली वालों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, यह गीत आपके नाम है। जितने भी लोग इटली में हैं इस समय हमें देख रहे हैं टिकटॉक पर या हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, सो यह गीत आपके नाम, ओ मेरे सोनारे, बहुत ही प्यारा सा गाना, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

कितना प्यारा गाना था, हाय हाय हाय, हम तो मर मिटे इस गीत पर। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। अगला गाना खाई के पान।

बनारस वाला. दिस गाना फॉर सियान डुमर, उनका बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू सियान डुमर फ्रॉम मामा प्रियंका, मेविन एंड अकेल. काव्या यह गीत आपके नाम भी, शेरपा यह गीत आपके नाम. हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग एंड दिस गाना इज फॉर यू. माधवी डुमर यह गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार से हम चला रहे हैं. रतन निहाल है गांव से, उनकी पत्नी करुणा, पापा विजय और सब परिवार के लिए यही गाना हम चलाएंगे. विमला के नाम. हेलो विमला. यस विमला हमारा साथ दे रही है. बेबी जगन यह गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार से हम चलाएंगे. जी यह गीत आपके नाम भी. और यस अभिषेक, दिस गाना विल बी स्पेशली फॉर यू. आई नो कि आपको हिंदी गीत पसंद है. खाई के पान बनारस वाला, खोली चाय बंद अकल का ताला. ओ खाई के बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर गीत है ये. सो चलिए, किस बात की देरी है, चलाते ये गाना. खाई के पान बनारस वाला, ओए होए. रिमिक्स वर्जन में क्या बात है. हो जाएगा नाम सभी के नाम ऑन रेडियो मॉरिशस एंड टिकटॉक ऑफ रेडियो मॉरिशस फॉर ऑल द व्यूअर्स वॉचिंग मी राइट नाउ ऑन टिकटॉक.

गंगा छोटा गंगा किनारे वाला और खाई के पान बनारस वाला हमने मॉरिशस में तो नहीं देखा है, पर भारत में अगर आप जाएंगे तो लोग वहाँ पर पान खाते हैं। क्या बात है। ये पान ज़रा तीखा होता है, पर वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, अगर आप बनारस खासकर अगर आप बनारस जाएंगे, एक जगह है भारत में जिसको हम बनारस कहते हैं, सो वहाँ का पान लाजवाब। अगला गाना, दो घूर मुझे बे पिला दे शराब। यार मैं नहीं कह रहा हूँ, गीत के बोल है भैया, बिग शॉट रिमिक्स से लिया गया। यस, यह गाना जो है शोभा जी के नाम, शोभा पुरन। यस, यह गीत आपके नाम और आपकी दो बेटियों के नाम भी। यस, शोभा फ्रॉम शोभा पुरन वाकवा से आपकी दो बेटियों के नाम, वीरानंद टोको। यह गीत आपके नाम, सब कलकतिया परिवार त्रियोले से है, फिर शालिनी हीरू है लाफ्लोरा से, इनके दो बेटियां, उनके पति विशाल और सब हीरू परिवार के नाम यह गीत जाएगा। और यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे राधा शिवालक की ओर से, उनकी बेटी शिल्पा, दामाद बेटी प्रशांत, बहू और सब शिवालक परिवार के नाम, शबनम शबनाज आलम। यह गीत आपके नाम भी। और ये गाना हम चलाएंगे MGI कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के रेक्टरनी के नाम भी। दो घुन मुझे बे पिला दे शराबी, क्या बात है। चलिए इस गीत को सुनते हैं, थोड़ा सा डांस कीजिए, थोड़ा सा नाचिए, म्यूजिक डे है भाई, कल म्यूजिक डे मनाएंगे तो नाच गाना तो बनता है। ओके, गेट रेडी टू डांस विद अस। चलिए एक साथ गाते हैं, झूमते हैं, मुस्कुराते हैं।

जाने के लिए कैसे कहूँ, पर जाना तो पड़ेगा, जाएंगे तो फिर से लौट कर आएंगे ना। प्यार का तराना के इस गीत के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। 9 बजे का समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे पिक टाइम मैगजीन आज की चर्चा सुबह के 6 बजे से। अभी तक हमारा साथ देने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपके SMS, फोन कॉल्स और टिकटॉक पर हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टिकटॉक पर हमें देखा, रेडियो पर आपने हमें सुना, थैंक यू सो सो वेल, थैंक यू वेरी मच। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज रात को 9 बजे से 11 बजे तक ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन प्रोग्रामों का भोजपुरी तड़का। सो तब तक हमें दीजिए इजाजत, और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, हैव अ लवली सैटरडे, बॉन वीकेंड, लव यू ऑल, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं टीना। नमस्कार टीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओबी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे, वे नए स्टेट एज पेंशन एसएपी के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट यानी आय परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें बाद में

0: इंस्टेंस लागू किया जाएगा। और सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीओपी लाभार्थियों की पेंशन 1 जनवरी 2027 से एसएपी लागू होने पर अपने आप बंद नहीं होगी। Budget 2026-2027 qui bat, Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, n'est tout pratiqué à dire. CTSP a dit que ce budget est un logon qui va se faire avec Zerroton Sidour. L'Union n'est qu'à ce tour pour pension réforme ou means test pour apathie jetaille. उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी जो उनके अनुसार सही नहीं है। सीटीएसपी ने इसके बजाय यूनिवर्सल पेंशन को जारी रखने और उच्च आय वालों पर थोड़ा अतिरिक्त टैक्स लगाने पर सुझाव दिया है। इसी क्रम में बजट 2026-2027 के बाद सरकार के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने घोषित फैसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आर्याना वामारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के अनुसार बजट ने कई प्राथमिक मुद्दों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है जिनमें डोमेस्टिक अब्यूज बिल शामिल है। साथ ही एडॉप्शन से जुड़े नए प्रावधान भी जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। और मंत्री पात्रिक कासियावादन ने कहा कि ऊर्जा भी इस बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। घरों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इस बजट का मुख्य ध्यान समावेशन पर है। घोषित प्रावधानों में स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल को और मजबूत करना शामिल है। साथ ही स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए 10 मिलियन रुपये की राशि रखी गई है। असीम के अध्यक्ष जयंत चेलम ने कहा कि कुछ कदमों से उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, हालांकि उनका मानना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पिछले में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई। उनकी भतीजी जो सियांगन में ऊपर रहती है ने पुलिस को बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया जो उससे बात कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज सड़क सुरक्षा और सड़क संबंधी नियम पर चर्चा की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे एसआई बुधन। तो 9 बजे के इन समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मिर्चिस पर। विदेश में कल शुक्रवार दोपहर लंदन के उत्तर में 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आगे आ रही नमस्कार।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हमारी जो सड़कें हैं उस पर जो नए नियम लागू किए गए हैं और फिर हमारी सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को किस तरह से हम घटा सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर मिर्जाबुदन। मिर्जाबुदन जी नमस्ते।
2: नमस्ते, आदाब।
1: आदाब, ये कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। हम जैसे देखते हैं जहाँ ऐसा है बुदन, हमने के सड़क पर दुर्घटना बढ़ ले जाता, दिन ब दिन बढ़ ले जाता, हर प्रकार के दुर्घटना हुआ था, पीतों संगे, मोटरसाइकिल संगे, गाड़ी के बीच, पालू के संगे। और फिर ये सब बात के ख्याल रखते हुए हमने के जो नियम बा, ड्राइविंग के नियम, ओकर में कुछ सुधार आना गल बा, कुछ नवा नियम लागू कर गल बा। और आज यही सब विषय पर बात करब जा। और ये सब विषय पर बात करे खातिर आज आप अपन समय निकाल के अयला, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद MBC के भी हमने के जो लोकेशन दिलक। देखा हमने के तक काम जारी है। और एक्सीडेंट जब हमने बोली ना सर, तो एक्सीडेंट देखा कोई के हाथ में नहीं है, वो तो सर्कमस्टेंस पर है। तब कुछ न कुछ नहीं चलेला सीमा में सड़क पर, तो एगो एक्सीडेंट दूसरा एक्सीडेंट से लिए करके तो अब एक्सीडेंट हो जाना। कब हो कैसे बोला, बहुत निमन से बोला कि सब प्रकार के एक्सीडेंट बा, पियतों लोग के

0: accident ba et cycliste motocycliste lo ki accident ba et chauffeur lo même enflé passager jab hamni sif dekhina sa ta dekhina sa ki jin victim accident ke te lo sab lo hawan sa aur tendance jab dekha desa hamesha compare kaina sa dekha kahe abhi aadmi lo jasti accident par batyalan sa kahe abhi aadmi lo jasti accident par e कमेंट्स करे रहन सर कहे कि हबी हबी सोशल मीडिया पर एक मजा एक्सीडेंट होल बात है देख बार लाइव बतावल गल बा या फिर जस्टियो लोग के इंफॉर्मेशन मिले ला
1: पुलिस के बतावे से अक्ते ये सब जो जानकारी बा ये सोशल मीडिया पर
0: चला वेला कर लाइव टेलीकॉस भी हो जाला ब्रॉडकास्ट भी हो जाला तो ये खातिर जैसे आदमी लोग एक्सीडेंट पर बतिया रहन सर अच्छा बात है लोग के इंफॉर्मेशन मिले ला और जानकारी मिले ला तो ये मैं बोल सकी ओकर दोनों को देखा देखो पॉजिटिव लेबत हम नहीं बोलना सर कि आदमी के इन्फॉर्मेशन मिला था आदमी लोग सकेला है देख के तेनी कुन जैसी सावधानी रखें सर तो है कुछ पॉजिटिव मेरे को तो नेगेटिव होला कि कभी कभी देखी ना सर एक एक्सीडेंट होला तो वो एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट प्रोवोक होला कहे के बहुत कोई फिल्म मेकर थन सर रोकेलन सर गाड़ी के उपशिक्षण कैलन सर देखा अभी हाल ही में इससे मैंने हम काम करते नहीं सर देखनी सर एगो एक्सीडेंट होल अब ओकर पीछे हम नहीं हो जब उपशिक्षण लिखा था सर ओकर पीछे एगो और एक्सीडेंट तो देखा कि आदमी के ओकर जो हमनी के सकेला हमनी इंसान ऐसे ही सा कि हमनी के जो हमनी के जो लेसने है कि मजा की रोजीते है कि देखेगे देखा जब ले तू रोक के अपन गाड़ी निमन से मदद करत हुआ कोई के जान बचावत हुआ या फिर कोई के सहायता जो होता जब बहुत अच्छा बात है मैं चीज तू अपन गाड़ी रोक के उपशिक्षण करत हुआ या फिर आके अपन अपन पोता निकाल के फिल्मे करत हुआ या फिर फेसबुक पर डालत हुआ या हाई सब करत हुआ तो है देखा देखबह तक मजा नहीं अच्छा बात बाकी सकेला हाउ आदमी जो ब्लेसुल बा वही नहीं चाहत कि ओकर फोटो ओकर फिल्म फेसबुक पर आए या फिर जो फामी कोई एप्लीक्यूल बा कबो एगो सड़क दुर्घटना जो घायल रहला या फिर कोई अपन जान गवा देला तो सकेला फामी नहीं खुशी रहल कि हाउ जो लेता में बा कि हाउ लोग आदमी लोग देखी तो है सब देखा एग्जैक्टली मत देखो ते पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो इमे चाहना तन्नी कुन चाहना सावधान रह के कुछ करते हो मैं सुनमो एक्सीडेंट देखा दी सकी हाँ एक्सीडेंट बा हुआ था और रापोते भी हुआ था तो इसे हमने के लिसों निकाल लेना सा इसे देखब कि मैम हमने के जो लुटोगते भी बा तो देखा वो लोग एक पर रियाजियों लन सा जब एक्सीडेंट ढेर होला तो नवा कानून लन सा पेनाल्टी पॉइंट लन सा देखा पेनाल्टी पॉइंट में भी एगो एगो एगो सौजमा आन दे लन सा कि कैसे टेलीफोन के ओकर पॉइंट मोटे कर दे लन सा हाई सब बतावे ला कि जो लुटोगते भी बा वो लोग भी अपन जिम्मेदारी लेवे लन सा वो लोग भी कॉन्सर्न हो लन सा जब रापो मिलेला कि ऐसे हुआ था तो बस कि सबके वो लोग के सबके उलोके बी उलोके मकसद है कि एक्सीडेंट जिम्मे करे के कम से कम एक्सीडेंट होवे के कम से कम आदमी घायल हो एक्सीडेंट के जरिए और जमे आदमी ज्यादा से आदमी लोग सड़क सुरक्षा से इस्तेमाल करिए तो है सब हमने के कॉमन गोल है किसे देखा हमने लुटोगे ला पुलिस है सर मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के तो या फिर देखा कि कैसे एम्बेसी भी आज है जो प्रोग्राम करा था तो ये सब हमने के कॉमन गोल है एक्सीडेंट कम करे के
1: जरूर और अभी जब बचेते हैं जा सोशल मीडिया के बारे में कैसे फिल्में हुआ था और फिर ये जो नवा कानून लागू होल बा अभी ड्राइवर लोग पर तो जे एगो एक्सीडेंट होल ये चलते चलते ये सवा कर देवा था और एगो ड्राइवर गलौची होके वो फिल्में करा था तो ओके सके कौन था वॉन्सी हुई
0: देखा फिल्में करत हुआ गलौची होके या फिर रोक के भी तो देखा अपन मोबाइल इस्तेमाल करत हुआ देखा है ला चाहला देखे कि हाँ वोलों पर हुआ देखा है अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे लेवे के हम नहीं बोलना सके एक आदमी जे एक्सीडेंट हो बा तोहर काम नहीं बहा हो जा जे सहायता नहीं पहुँचाए के बा तो तू अपन जा हो जा बस कि तोहर खातिर दूसर कोई आ गए तोहर खातिर दूसर सकेला एक एक्सीडेंट उतना ग्राव नहीं बा मैं सुनमा जब एक आदमी से दू गो दस गो पंद्रह गो बीस गो गाड़ी सब ऐसे होला और खास कर जब भाई मोटरवे पर जहाँ पड़ी आदमी लोग के रफ्तार हुए देखा 37 किलोमीटर तक बगुल हुई तो हाउ जा पर इतना गाड़ी लोग घूलो था और उमें अब साइड में देखे ना कि एगो दुर्घटना और बा ऐसे होल बा तो इस बा प्रोवोके करे देखा हमने उतना हमने कहनी देखा को तो मौसम पर नहीं जाए ना सर हमने देखी ना सर कि सुरक्षा आम जनता की सुरक्षा बस कि एगो एक्सीडेंट होला तो जब आदमी घायल होला ओकर जिसमें हाथ पाँव टूट गल तो जहाँ कितना ओके दुलिया होला और कितना ओके इनकन्वीनियंस होला एगो काम करे वाला आदमी रहता पर जाके लुपिटाल प्लाक डराई के एक महीना दू महीना ओकर ट्रीटमेंट ओकर हाउस स्वीवी ओकर परिवार में जे एगो घर में वही अपन लड़का के जाता लेकुल छोड़े तो हाउस सब में डिस्टर्बेंस होला

0: इनकन्वीनियंस होला अब वो काम नहीं करेला तो सब में बहुत चीज होला आदमी से अकेला खाली वो एक्सीडेंट सोचेला मेरे को एक्सीडेंट के पीछे बहुत एप्लीकेशन है
1: जरूर। और जब अभी शुरू करी जा अभी जो नवा नियम लागू होल बा एकरे पर और फिर देखब जा कैसे सकब जा कौन कौन सावधानी

0: जो अलग अलग समस्या बा हमनी के समाज में उस सब पर हमनी बातचीत कर ले आवत है जा और देखत है जा कि जो अलग अलग समस्या बा ओकर असर पड़ता हमनी के सड़क पर भी ड्राइविंग पर भी
1: बेशक हम सब परेला
0: जरूर। तो सबसे आगे हमनी के इन नवा कानून जो अभी लागू होल बा एकर पर थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो गल रहल एगो समय में तो हमनी के थोड़ा ई नवा नियम समझाओ आज भोजपुरी में ताकि सब कोई समझी।
1: देखा हम जितना एकर पर चर्चा होल बा तो आदमी लोग तो जान गल बा आदमी लोग ओकर कुछ पॉजिटिव नहीं देखेलन से हमेशा नेगेटिव देखेलन से। देखा है कानून जो टेलीफोन पर है पहला कानून जो है पेनाल्टी पॉइंट। पेनाल्टी पॉइंट एगो एगो सिस्टम वे है ओकर मकसद जो है कि आदमी लोग के जब जर आदमी खास कर जो आदमी लोग के मजा जब एगो एगो जुर्माना मिलेला तो लिफे नहीं करेला लोग पर तो वो लोग कोची नहीं करेलन से हाउ हाउ ओफेंस करे के कैसे के एगो एगो एग्जाम्पल बताए एक्सेस एक्सेस वितेस आदमी जस्ती ज़्यादा अपन गाड़ी तेज रफ्तार से चलावेला तो एगो कॉन्ट्रावर्शन मिला था वो का कहला हाउ चिकेट तो आप फिक्स पेनाल्टी वा अपन एगो एगो क्लिप में रख देला हमने जैसा गाड़ी आते कल ऐसा एगो आदमी के 15-20 गो फिक्स पेनाल्टी के ओकर नोटिस बा वो देखेला मजा जब इतना हो जाला था एक को जाके पे कर जाता देखा आदमिया लगे पैसा बा और वो एक को लेफे नहीं करेला ओकर कोचित पर तो हाई पेनाल्टी पॉइंट में जो है एक मकसद जो आदमी के ओकर ओकर ओकर बिहेवियर ओकर फासों लाहूत सेवी करे के ओकर में एगो समझमा आने खातिर जो आदमी लोग के तो हाई खातिर हाई पेनाल्टी पॉइंट इन एंट्रोजिया रेस एंट्रोजिया होल कि जमें आदमी मैम पैसा रही मैं जमा पैसा जुर्माना के साथ साथ ओकर लिसेंस भी अफेक्ट हुई यानी कि जब इतना पॉइंट जैसे एगो एकर एकर एकर बाजुए रहल कि जितना कोई के ड्राइविंग लाइसेंस है पूरी तरह तो ओकर बाज मिनिमम ओकर ओकर लिमिट रहल कैंस पॉइंट जब आए तो ओकर प्रोसीजर करब से हमनी लागू उतरे कि जहाँ पर ओके ओकर ओकर लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हुई जो आदमी के लर्नर है ओकर बाज रहल जिस पॉइंट यानी कि ओकर प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस रहल ओकर जैसे जिस पॉइंट हो जाए देपासी करलक तो ओकर प्रोविजनल करब से ओकर लर्नर ओके डिस्क्वालीफाई करेगी। जो आदमी के मैम पेमी इंटरनेशनल देओ के आदमी हो ओकर भी भाई प्रोविजनल रहल कैंस पॉइंट में ओकर पेमी से कब से ओके टॉप हो गए मतलब से डिस्क्वालीफाई करके जब ले मोरिस में बा तब ओके भी जब अफेक्ट हुई इतना ले कि है कानून इतना ले प्रोविजन कर ले बा मैं मेरे को आदमी के पेमी नहीं भावी लर्नर नहीं बा हाँ। मैं वो एक आदमी ऑफेंस कर लग पेनाल्टी पॉइंट के जरिए और वो ओकर पर भी सॉक्शन लेवल जाला कि ओकर ओके पेमी में मिले के आगे ओके एगो डिस्क्वालीफाई करते इतना दिन ओके पेमी नहीं मिली ओकर लर्नर नहीं मिली तो देखो तो चार जरिए चार बॉस में है हाई पेनाल्टी पॉइंट आना रहल जब आदमी लोग के सॉक्शन ले अब आदमी लोग के एगो एगो एगो सिस्टम है जो बोला ट्रांसिसमा तीन बरिस तक हाउ जो पॉइंट मिलल बा तो हाउ पॉइंट ओके ओकर लाइसेंस लगे रही ओकर लाइसेंस में रही सही जाए ओकर वाली जीते ओकर ओकर जीरा ओकर जीरे हाँ मैसी ओकर जीरे से 36 माह तब अब सब में नहीं एगो ऐसा एगो लालिस कर ले हों सा कि तरंदे ओफेंस लिस्टे होल बा जिनके जरिए आदमी के पॉइंट मिली सेटन ओफेंस के तनी ज्यादा पॉइंट मिलेला सेटन ओफेंस के तनी कम पॉइंट मिला सेलों हाउ ग्राविटे ओफेंस हुआ तो ई में जब इंट्रोड्यूअर हल था एगो 27 ओफेंस के मजे दे पॉइंट ले मिल रहल दे एगो एगो एगो एगो बारे में हो एगो एगो अथी दे आ कात जब ला पुलिस तोरा जब एगो कॉन्ट्रावर्शन ले फिक्स पेनाल्टी के जरिए तू जाके पेये कर देला तो तुहर हाउ मिनिमम लेवल जला है कि हाउ लिमिट में दे पॉइंट है तो दे पॉइंट जाइब तो लाकू हो जाओ ओकर ऑफिसे तोरा दे पॉइंट ले तोर दे पॉइंट डाली तब हाउ रिकॉर्ड हम लगे बिदा कैला तो ट्रैफिक में हमने एगो रिकॉर्ड रखना सर अब जो तू हाउ ला पुलिस के जो फिक्स पेनाल्टी नहीं पे करब अब जेब लाकू तो लाकू सकी तोरा कत पॉइंट ले देवी तो ऐसे ऐसे करके तब हमने एसपे कहना सर कि जब ले रिकॉर्ड में हमने के जे कैंस पॉइंट चलाए तो सबसे एगो प्रोसीजर करे आदमी के
0: हमने एगो लाइसेंस होल्डर के कैंस पॉइंट बा ओकर
1: एगो जोन हाउ जोन टू एगो एगो एगो लाइसेंस होल्डर हाउ फुल कॉम्पिटेंट ड्राइविंग लाइसेंस हाउ टू हर किसी भी ना सर जैसे कि लाइसेंस मिल गल तो तोरा कैंस पॉइंट मिलेला एगो लर्नर के ओके खाली जिस पॉइंट मिलेला अब एक पॉइंट वा नहीं मिलेला लाइसेंस वा के ओकर लिमिट है कैंस पॉइंट तब एगो ऑफेंस कर ला जो दे पॉइंट तो दे पॉइंट तो रिकॉर्ड में चला एगो दूसर ऑफेंस कर ला कहीं 3 पॉइंट तो हाउ 3 पॉइंट आके आजते होल एगो दूसर ऑफेंस कर ला 4 पॉइंट तो हाउ ऐसे आजते आजते होले आवेला दे 3 और 4 5 9 पॉइंट हो गल तो ऐसे एक मचे है रिकॉर्ड रखेला अब हाई सब जो दे पॉइंट तो पॉइंट का पॉइंट मिलल तो ए लोग के एगो जिरे हक मजे ट्रांसिसमा ले रहे से तो लाइसेंस में जैसे ट्रांसिसमा हो गए तो ऑटोमेटिकमा वो लोग हट जालन से तो हवे बोलिया कि मजा जब तोरा पॉइंट मिले लगेला तो तोरा चला अपन

0: ओपुतमा बदले के नहीं तो तुहर और पॉइंट मिली तो तुहर पॉइंट के जरिए सकबा अपन लाइसेंस पेच हो जाए है ये मेकानिज्म है ओकर मेकानिज्म की तोरा पॉइंट मिलल अब पॉइंट वो भी पहले तो अति रहल है डीएलसी ड्राइविंग लाइसेंस काउंट पॉइंट में उ में मिल जाता अभी नहीं अभी ऑनलाइन हो गल बा आप कोरेक में तू हेल्ब तो तू जान जेबा तुहर कितना पॉइंट मिलल बा तो है सब भी ऐ सब नवा नवा चीज इंट्रोड्यूस होल बा तो एगो आदमी के चला जाने के कितना पॉइंट रहल ओकर कितना पॉइंट मिलल बा अब है के जरिए कैसे अब तुहर कैंस पॉइंट जहाँ तो तुहर कैंस पॉइंट लिमिट बा सिपा तुहर मैच्योरिटी तुहर जो ओफेंस कर ले रहा बा एक बड़ी सुलबा बा दू बड़ी सुलबा तो अदमिया के चला ओब्लिगेटरी में अपन बिहेवियर समझे के लेके जब ओके दूसर कॉन्ट्रावेंशन पॉइंट वाला नहीं मिली जिनमें ओकर ओकर जो बारे में ओकर कैंस पॉइंट के नहीं दे पासे करी तो ऐसे देखा था एगो सेल्फ कंट्रोल पैसा नहीं है पैसा सकेला पोस्ट में जैसी रही मैसुलमा तुहर पॉइंट चल जाए तो तुहर लाइसेंस के जब अफेक्ट हुई तो देखबा कि मैसा लगे गए तो तुहर लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाए इतना लेता खातिर तो तब नहीं सकब गाड़ी चलाए तो हाई के जरिए एगो नवा नवा एगो स्कीम रहल तो हाई कानून बहुत पेई में काम भी कर लेबा मोगिस में एंथ्रोजिया भी हो रहा तो देखा रेस एंथ्रोजिया करलन से अब जमे एगो डर रही एगो डर रही आदमी के कि कितना पॉइंट होल बा हमके इसकी हई फौसवा में सकेला कि हमार लाइसेंस चल जाए तो हमके चेहरा सावधानी एगो एग्जाम्पल लेना सर सीट बेल्ट देखा बहुत लोग के सीट बेल्ट मिला था सीट बेल्ट नहीं जाना सर तो डिपो मिलेला अब हये में टेलीफोन रहल अब टेलीफोन रहल तो टेलीफोन के पॉइंट मिला था देखो कि आदमी लोग टेलीफोन में ज्यादा बात करते हैं और देखा था कि जो एवरेजली मिला था ढेर कोई टेलीफोन के ऑफेंस करता तभी खाते देखो कि लोटोगीते लोग आल मंत्रालय मिनिस्ट्री आल एगो सुझाव से कि बोला कहेगा पॉइंट टेलीफोन के पॉइंट मोहते कर देके पहुँच कर देके तो देखा कि अदमिया के अब डरवा जस्ती रही देखा था कि आदमी तरी कम थी टेलीफोन सेवी करता बस ये कहे कि सैंक पॉइंट एक कुछ टेलीफोन मिलल सैंक पॉइंट दो कुछ टेलीफोन मिलल जिस पॉइंट त्रॉजेम कुछ टेलीफोन मिलल तो देखो कि तुर लाइसेंस में चल गल तो आदमी तो रोज टेलीफोन को आदमी रहा रोज टेलीफोन सेवी करता देखबा कि कहूँ देखबा से तू जो आदमी लोग मजा जो तनी कुन मजा तनी कैसे मजा दूसर के एक मजा वो लोग जिम्मेदारी नहीं खोजन सर लेकिन दूसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खोजन दूसर के सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच खाली अपन सोचे लन सर सेल्फिश आदमी लोग तो हाई सब आदमी लोग खातिर मजा देखा है सब कानून देखबा कि एगो लिफे करी अदमिया के परी ओब्लिगेटरी में अपन कॉम्पूट में सौंसे करे के परी ओब्लिगेटरी में अपन फासो जो गाड़ी चलावे ला सौंसे करे के नहीं तो ओकर पीएमई जब नहीं चल जाए अब पीएमई ही नहीं रही था कौन सी गाड़ी चला के
1: और जो टेलीफोन सेवी करे के बाद बा आदमी लोग देखेला कहाँ ला पुलिस बा जब ला पुलिस नहीं रही तो वो लोग सकत रहन सा अपन जो बाकी गाड़ी चालक बा हमने के लौके ला कि बाकी सब कोई देखत देखा कैसे ड्राइव करता फ़ोन पर बा लेकिन आज अब देखत है जा कि अब हमने के जो रोड सेफ्टी कैमरा बा ओकर से भी ये देखल जाए कि आपके ड्राइविंग कैसन बा एकर पर थोड़ा बतिया
0: हजा हम तोरा कोजे करब
1: जरूर
0: देखा कि अभी काम हुआ था हाई पर गवर्नमेंट हमने के जो मिनिस्ट्री है इस पर दिजा काम करते हैं कि जो है सेफ सिटी कैमरा है तो ये लोग के जरिए भी सकब सा कॉन्ट्रावेंशन रापोते करे और ओकर में पहुँचा हुआ कॉन्ट्रावेंशन दंड लेबा कि ऑटोमेटिकमा हो टेलीफोन या फिर सेंचे या फिर एक्सेस ये काम हुआ था और बहुत जल्दी ही एकर पर हमने सकब से एक लागू करे सो मैं एकर पर काम हुआ था मैं कोशिशों कहाँ बताएं कि आदमी लोग ढेर आदमी नहीं जाने ला कि जो हमने के जो स्पीड कैमरा है जो है वॉट जोन है जिन से हमने के पापिये मिलेला स्पीडिंग खातिर तो ओकर जरिए भी जो टेलीफोन सेवी करत हो तो उ लॉक जला तो जब हम तोर पापिया वेला तो ओकर में टेलीफोन भी रहेला और तोहर स्पीड के भी रहेला
1: तो मतलब अब तोहर पॉइंट दोनों खातिर कटाई
0: नहीं जब ये लालवा है पोविजन कर लेवा देखा उतना डोमिनियर भी नहीं करेला एक लालवा जब पोविजन कर लेवा बोले बाकी जब एक ही समय एक ही दिन एक ही वक्त मजा जब एगो आदमी एगो ओफेंस से ज्यादा कर रहा था जो उनके पॉइंट है जैसे कि है एग्जाम्पल सबसे लेवे स्पीडिंग के पॉइंट भी देवेला और टेलीफोन की पॉइंट ले चलेला तो हाउ ले बोलेला कि जो जो ओफेंस के ओकर पॉइंट यानी ज्यादा है कैसे स्पीडिंग के पहले अभी दे पॉइंट रही और हजा टेलीफोन के सैंक पॉइंट करवा तब बोला हाउ सैंक पॉइंट वहाँ देवे के खाली स्पीडिंग वहाँ गिर जाला खाली एक गो ओफेंस जो में हाँ एक गो ओफेंस के पॉइंट मिलेला मैं खाली हाउ हाउ वक्त हुआ मैं लौ दे में या फिर से एगो दूसर प्लास में ला पुलिस तो आगे गलत रहे से दूसर पॉइंट वो जालू रही
1: जरूर और फिर अब ये जो नवा नियम आलबा एकर में एक तो पीएमई आप बा और अभी जैसे बोला था कि सेफ सिटी कैमरा भी

0: समय के साथ एके भी लागू कर जाए और एकर में और कौन कौन बात के हमें के चाहिए अब ख्याल रखे के
1: देखा आदमी के चला हमेशा ख्याल रखे कि देखा ए जो उफोंस होएला एक एक तरह देखा गाड़ी पहला पहला है बाजिक है कि है सड़क जो ना हमने अकेले नहीं सेवी करना सर देखा हमने के लाकू में भी जब हमने सेवी करना सर तो देखना सर कि जो एक जो हमने के भाई के घर बा हाँ। या फिर हमने के बहन के घर बा या फिर हमने के लड़का लोग बा जो पियतर बा हमने के लाकू में तो हेली ना सर तक गत्ते गत्ते हेली ना सर
0: का कहते
1: जब मैं दूसरे के देहौजे या फिर दूसरे के एगो दौजे नहीं है
0: जरूर
1: हाईला हाईला जब हमने के लाकू में जो कहना सर तो हवे बात सीमा में आवेला लाकू में तक सकेला हमने के एगो घर दू गो घर या फिर 10-15 आदमी से पौताजे कहना सर हमने के लाकू में जब हम सीमा में आना सर तो हमने के सीमा में प्रेस के 750,000 गाड़ी बा गाड़ी और मोटरसाइकिलेट लोग और कितना हमने के पैदल चले रहा लोग संगे रह सर तो ये लोग के साथ हमने पौताजे कहना सर सोचा कितना चाहत पूरी कुछ लोगे के हाई ये बात चला जाए हमने के कपाल में डाल डॉप सर कि सड़क जो ना हमने के खाली अपन ने है हमने पौताजे कहना सर दूसरे लोग संगे तो हाई जो जो जो कायदा कानून है सड़क पर सब कोई जब रिस्पेक्ट करत तो देखा कि सब चीज़ निमन से चलत एक बोले एग्जाम्पल लेना रोपो में मैम ला पुलिस नहीं बा तो रोपो में को कानून जो मेला गिव वे टू ट्राफिक फ्रॉम द राइट देखो तो ला पुलिस नहीं बा मैं जो आदमी लोग तोहर दाए तरफ आवेला द्वात में आवेलन सर तो वो लोग के हमने पुयोते देना सर जब चल चलन सर तब हमने जाए ना सर तो हाई ये बोल जला कि रिस्पेक्टे कहना सर कानून कायदा कानून तो हाई ये जे हाई रोपो के जो नियम है सगरो रिस्पेक्टे करती सर तो सब सगरों के सीमा में बोला थोड़ा किनारे चले के सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में गुलो के कंटिन्यूस व्हाइट लाइन रही तो ओवरटेक नहीं करे के या फिर डबल येलो लाइन में गाड़ी अपन नहीं रोके के तो हाई सब देखा सब सब तरह तरह के कायदा कानून बनल बा जे सब आदमी निमन से रिस्पेक्टे करत तो बहुत कमती एक्सीडेंट होत तो हाई ये से चला शुरू करे के कि कानून के चला रिस्पेक्टे करे के सड़क के ओकर कायदा कानून ओकर नियम चला रिस्पेक्टे करे के कुतवाजी भी चला रहे के कबो कनो आदमी एगे कर दे रहा देखा एगो एगो एगो एगो एगो पैदल चलेला सड़क के बीच में ता वैसे होता मैं ओके मैम ओके दुआ नहीं है तो तू इसकी जाको के ओके मुआ देबा तो हाँ एगो कुतवाजी कबो कबो हो जाला तो सकब तू एगो अपन पर्सनल में सकब एगो एक्सीडेंट एविटे करे जहाँ पर मैम एगो तोहर तोहर पोसा एगो एक कर लग तो तू ओके एगो सहायता दे के सकब तनिकुन ओके एगो एगो एक्सीडेंट एविटे करे कितना आदमी लोग करेला कितना आदमी लोग बहुत कोई जो डिफेंसिव ड्राइविंग के नियम पर चले रहन सर बहुत दूसर के एरिया पर ये लोग एक्सीडेंट एविटे करन सर मुसलमान किसी बोल ना एक्सीडेंट कोई नहीं चाहे एक्सीडेंट हो भी मुसलमान कोनो सर्कमस्टांस होवेला जो एगो एक्सीडेंट प्रोवोक कर देवेला तो सुलमा हमने के हाइये है प्राइमरी बेसिक हमने के सड़क पर हम सत जहाँ ले सकब कि मजा तू अपन कायदा कानून पर अमल करब डिफेंसिव ड्राइविंग ऑब्जर्व करब और जो तुहर संगतिया लोग देखब कि मजा खास कर हमने के जो जो विल्नेराब ग्रुप है मोटरसाइकिल लोग है पैदल चले वाला लोग है हमने के बड़े बुजुर्ग लोग है जब देखब सड़क पर वो लोग संगे आवत हुआ तब पर तनिकुन ज्यादा प्रिकॉशन ले लेला तनिकुन लेता ले मुसलमान सकब कि एगो एक्सीडेंट एविटे कर दे कोई के जान सकब बचा दे तो एगो बहुत बड़ा बात है
0: जरूर तो आज जैसे सुनत हवा देखत हवा हमने के संगे हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जाबुदन और आप हमने के सड़क सुरक्षा से जुड़ल जो जानकारी चाहेला हमने के जाने के खास तौर पर अभी जो नवा नियम लागू करल गल बा ड्राइविंग के लेके प्यामी आपवा के लेके और कौन कौन बात के हमने के चाहे ख्याल रखे के ताकि हमने के साथ साथ जितना भी सड़क इस्तेमाल करे होला ड्राइवर या फिर पैदल चले होला या फिर साइकिलिस्ट हवन सा सबके सुरक्षा बरकरार रही ये विषय पर अभी हमने और आगे जाब जा थोड़ा समय बाद अभी एगो ब्रेक लवब जा और फिर देखब जा कि अभी आप कुतवाजी के बारे में बात कर ला रोड रेज एगो बहुत आम बात हो गल बात देखते हैं जाके से गुस्सा करल जाता सड़क पर कहीं से दूसर के नुकसान पहुंचावल जाता छोटा छोटा बात पर और फिर कौन कौन कारण से हमने के सड़क पर इतना दुर्घटना बढ़ ले जाता ये सब पर अभी थोड़ा घड़ी में ध्यान देवब जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमने चर्चा करते हैं जा सड़क सुरक्षा के लेके जो नवा नियम लागू कर रहा बा, और साथ में हमने के सड़क पर काहे इतना दुर्घटना बढ़ ले जाता देखते हैं जा नियम के जस्ती सख्त करल जाता, बहुत सेंसिटाइजेशन कैंपेन होते बा फिर भी सड़क दुर्घटना बढ़ ले जाता। तो अभी सब इंस्पेक्टर जी आप बोलत रहला कि जो पेनल्टी पॉइंट्स बा सकबा अपन लिसेंस के जितना कैंस में बा बिला देवे जे अपन जो व्यवहार बा आपके जो ड्राइविंग के आदत बा जिन्हें बदल बा जे खराब आदत हुई था। तो जब से ये नवा नियम लागू कर गल बा आप लोग के पास जो रिकॉर्ड बा का बतावा था जस्ती ड्राइवर्स लोग सुरक्षा के कदम उठावत हवन जा कि नहीं, आप लोग के पास कोनो आंकड़ा तो होई आप लोग जब कौन था वोसो लेवत हो जाता।
1: देखा है जब है कानून बनल बा तो हमने के ट्रैफिक ब्रांच में एक उस सेक्शन है जो खाली है पेनल्टी पॉइंट के सीवी करेला ओकर रिकॉर्ड करेला और ओकर सिस्टम में जो कंप्यूटर है ये बनावल गल बा पस कि हमने है यूनिट

0: et judi série c'est le relié hon ça jaise ho ja adamia hapan fix penalty paye karela ya phir magistrat ok condamné karela ego penalty point la offense ta olo ke de suite haila hai consequence mila ta hamni ke jab monitoring kaina sa ta dekha hamni ke record ke mutabik khali hamni traffic bans ke jab batya apsa ta hamni jab se hai kanun lagu holba 7300 आदमी लोग के पेनाल्टी पॉइंट होला ऑफेंस दिले हैं सर तो देखा सोमे ने कहती सर जब देखो ऑफेंस रहेला पेनाल्टी पॉइंट के तो ला पुलिस वा देवेला तो हमने के ट्रैफिक लोग हमने के जो ट्रैफिक ब्रांच के ऑफिसर्स हैं सर तो प्रेस्के 7300 सोफे लोग के पॉइंट दिला हैं सर
1: अच्छा
0: अब जब देखा थी सर कि हमने के हाई कंप्यूटर कुछ बताता है इसके आदमी लोग कुछ करते हैं सर रेजिस्टे होते हैं सर या फिर पे करते हैं सर तो अंतिम मजा ला पुलिस के जब पुलिस लोग जब दिले हैं सर तो हाई कंप्यूटर वा जब सब रेंसेमेंट होता तो हमने के रेंसेमेंट बोलता कि 7400 सोफे लोग अपन पेनाल्टी पॉइंट खोला ऑफेंस आके पे कर और लाकू ओलो के लिसेंस में ओलो के पॉइंट डाले लगल बा 7400 सोफे लोग अफेक्टे ओलो से देखे पॉइंट मिले लगल बा अब जो ये बात और जो हम के जो स्वीवी कहना से जो एपोत है ये में एक सोफे है खाली अभी जो जॉवियस जब है कुमार बा एक सोफे के नेफ पॉइंट देजा मिल गल बा यानी कि हाई सोफिया बहुत भेरी बा जो हाई रीत में जाता तो ये और दो महीना में देखो एक लिसेंस चल जाए इतना ले ये ऑफेंस करता है कि नेफ पॉइंट मिलल बा एक सोफिया की देजा वीट पॉइंट मिलल बा और कैसे तब तो हम बोले नहीं तब या ए तीन गो सोफिया की सेट पॉइंट मिलल बा और जैसे तब हम बोले नहीं कि हाई हाई हाई कानून खाली अति लाइसेंस मोरिस के नहीं है लाइसेंस इंटरनेशनल के है तो हमने के बोला था कि एक सोफिया बा जो एतरांजे है नहीं बोल सकून पी के मैं ओके भी ओकर पॉइंट्स मिलल बा और ओकर लाइसेंस में ओकर पॉइंट डाल दिले सर तो देखो कि जो किसी कानून जो मकसद से ही कानून बनल बा तो ओकर मकसद हमने ओकर जो बी बा हमने ये पूरा हुआ था कि सब कहते लिसेंस के सब कहते सोफे के ओकर पॉइंट मिलेला और हमने के जो रिकॉर्ड बताओ था कि ये भी बहुत हाल ही में सकेला एक दो महीना में देखब सोफे लोग अपन लिसेंस डिस्कालीफाई हो जाए लोग के लिसेंस पे एच लगे सर तो ये एगो बहुत ज़रूरी खबर है और एगो एगो चेतावनी एगो एगो सकब सब बोले कि आदमी लोग के चहला अभी सोफे लोग के चहला अटेंशन करे के
1: बहुत
0: अटेंशन करे के खास कर देखा जो नेफ पॉइंट वीट पॉइंट मिल गल बा सेट पॉइंट जे एगो टेलीफोन लोग के मिलल था तो लोग लालिन में चले जाए प्रेस के रेबो चले जाए सर
1: एगो टेलीफोन के कितना बा
0: 5 पॉइंट सकी मिल जाए अभी अभी से जो नवा आती बा 5 पॉइंट और जो माइसरा लग जाए तो जस्ती मिली तो ये लोग के बोला था अब भाईजा एगो कानून बोला था जब बोली ना सर तो हमने सोफे वो लोग के तनी सोची ना सर कब सकेला कोई के हाउ लिसेंस एम्पोटा हाउ वो कर काम है एगो सोफे एगो डिपार्टमेंट में सोफे काम करेला रोज काम करेला तो ओके पॉइंट मिला था तो एगो कानून एगो प्रोविजन कर ले बा एगो एगो एगो एगो सिस्टम हाँ एगो सिस्टम जो बोला रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट रिडेम्पशन ऑफ पॉइंट बोला कि एगो आदमी सेतु जो खाली जो के लिसेंस फुल है लर्नल ओके नहीं जैसे ओकर जिस पॉइंट पास हो जिस पॉइंट हो गल और 14 पॉइंट होल बा जिस आ 14 पॉइंट में रही तो उससे की एगो एप्लीकेशन करे माइसरा संगे कि ओकर एगो जो दैनीय पॉइंट मिलल बा कहीं दे पॉइंट मिलल बा तो पॉइंट मिलल रहा हाउ पॉइंट वॉक मजे एगो ह्यूमन ग्राउंड पर एगो ह्यूमैनिटी के ह्यूमैनिटी में कि ओके हाउ पॉइंट वॉक
1: हटा
0: देगी तो ई माजिस्ट्रा देखेला ओकर सब रेंसेमेंट ले कब कितना पॉइंट मिलल बा कौन खातिर पॉइंट मिलल बा देखिए दमिया कैसन रहल तो ई माजिस्ट्रा के देसियो हो तो माजिस्ट्रा जी सैटिस्फाई होई तो सकी ओकर हो जो दैनीय पॉइंट मिलल बा ओके हटा देता आ एगो सिस्टम बनाल बा कि अदमियो पेनालिज नहीं होई एगो सिस्टम बनाल बा हमनी के बी है पॉइंट ढेर नहीं देके या फिर कॉन्ट्रोशन नहीं देके हमनी के बी है कि अदमिया के ओकर मेंटालिटी ओकर कंपोटमेंट समझे करके तो हाय जे समझे करे लगे सर तब बहुत बड़ा बात रही तब एकर देखब एकर लिफे जब देखब सर एनालिस कब सर एक्सीडेंट पर तो देखब एक्सीडेंट कमती होई आदमी लोग कम से कम घायल होई और सब कोई जस्सी सुरक्षा से सड़क से भी करियन सर
1: और जब ये सब शिफ हमने के बतावा था आंकड़ा बतावा था जो न, आ, फिक्स पेनाल्टी जो पेनाल्टी पॉइंट्स पर लागू होलबा तो आपके कैसे बुझाता कि उन लोग के कोपोत में बदला था कि नहीं बदला था
0: देखा अभी ढेर तनी देर भी
1: थोड़ा समय और
0: देखे के समय और मैं टोंडोंस देखा सर टोंडोंस देखा एगो ऑक्सीजन के कारण चला देखे कि मैं सकेला ओकर ओकर ओकर जो ऑक्सीजन हो किकर ओकर के ओतो बाहर देखा सब ऑक्सीजन में सोफे नहीं ओतो रहला
1: जरूर
0: सब ऑक्सीजन में सोफे नहीं ओतेला कभी सकेला

0: एगो देखो मेकानिक रही था योकर ऑडियो को कंट्रोल चला सपा सकेला की एगो पियटो भी ए गया सकेला कर दे देखा बहुत एक्सीडेंट होता जहां पर पियटो लोग रात में लोग रात में चलत होन सर रात में सड़क पार करत होन सर
1: मोटोवे पार करत
0: मोटोवे पार करत हो देखा ना हाउ सेपिया में भी एक्सीडेंट हो रहल की रात में ए पार करत होन सड़क पार करत होन सर त हाई सब रिसवन ह त भाई सबसे एक्सीडेंट का बोलते नहीं जैसे हो जाला त बोलब से की देखा हमनी जब सड़क पर रही ना सब फील्ड में रही ना सर त जब आदमी लोग बतियाला तब बोला बोले लन सर कि देख पैसा तो रही पोस्ट में मिसो मे लाइसेंस नहीं तो का कौन से चीके तो वो लोग अपन कोपोट में तनी तनी सौंसे गत हूँ सर मैं देखा हमनी के बीवी है कि जो हम देखा सड़क पर तो कितना आदमी लोग जब सीट सौ सैकड़ मिल गाड़ी बा तो कितना आदमी लोग बा जो जिम्मेदार हों सर नहीं तो उतना एक्सीडेंट चाहते हुए मैं वो लोग बोलब सर कि जब बहुत आदमी लोग सड़क पर जिम्मेदारी से गाड़ी चलावल सर हई खातिर वो लोग के हमनी तहे दिल से शुक्रिया जा बोलब सर कि वो लोग के कौपूत में वो लोग के अथी अच्छा खाली हमनी विजय कर दी सर जोन हो जोन जोन जोन जोन सोफिया लोग वो लोग हर कुछ तक मजा ओ फोसा करते आवेलन सर सजा ओ लोग मजा जोन ओ लोग फुफा माल होन सर ओ लोग के तनको एको लोग के अति लोग के दिल में रहम नहीं है
1: हाँ।
0: कि जब गाड़ी चलाओ तो एगो लौंदवा जोन अबिताभ जो यहाँ पर बहुत से क्लासों बा और बहुत आदमी लोग चलता तो हम जा देखब कि अपन गाड़ी की रफ्तार इतना ले चलावेलन हाँ। सर कि जे एगो कोनो भी एगो दुर्घटना नहीं सके बीते करे
1: चाहे जनावर रही चाहे आदमी रही चाहे ऑटोमोबाइलिस्ट रही
0: ओ लोग के एको एको कंसीडरेशन नहीं है तो हाई सब कहते सोफियावन लोग के हम देखा विजय कर ले भाई पेनाल्टी पॉइंट जब मैं वो लोग रिकरेंटली हर हमेशा करते रहें सर तो ए लोग के लाइसेंस जब रमसला तो ए लोग के जब भाई है दिल वो लोग के सोकवा लगी तो तब हम के सुधार आवे लगी देखा है पेनाल्टी पॉइंट जो देश में भी एंचा होल बा तो में लेफे कर ले पॉजिटिव में आदमी लोग हब भी सकेला आदमी लोग के उतना वो लोग के नहीं नहीं सोचत हन सर या फिर नहीं हो सुकवा नहीं मिलता मैं हमने देखा कैसे आज हम के लोकाजो मिलल तो हमने बोलनी सर कि इतना आदमी के 7,400 आदमी लोग के पॉइंट मिलल बा के पेमी में तो हाई सब जब आकी मिले हुई लगी जब एगो सेटन लेते हुए आदमी अपन पेमी पे एच हुई लगी तो जब भाई कौपाई निमन से करब सर अदमिया कौपा हुई मैं सुनमा बोलत है कि मजा जो आदमी लोग निमन से गाड़ी चला रहे सर तो लोग के हमने सालिए गई ना सर वो लोग के हमने रिस्पेक्टे गई ना सर मैं जो आदमी के मजा फुफामाल गैर जिम्मेदारी से अपन गाड़ी चलावेला तो वो लोग खातिर हई स्कीम वो लोग खातिर बहुत खतरनाक रही कहे के देखब कि 14 दिन बाद एक ही बारिश में अपन पीएमई पेज हुई लगे सर
1: अब जब गैर जिम्मेदाराना रवैया बतावत हवा कि फुफा माल हवन सा लोग में रहम नहीं बा तो ऐसा ढेर फैक्टिया बा जेकर कारण एगो ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलावता कि दूसर संगे उ दुर्घटना करके दूसर के जान सकता ले लेवे तो हम थोड़ा इ फैक्टिया पर ध्यान दे जा ढेर वक्त है भाई सन अभी 2 हफ्ता तक हम ये जो आज की चर्चा कार्यक्रम रहल वो ड्रग्स के समस्या पर रहल और नशा पर रहल और देखत है जा कि ये भी एगो प्रमुख फैक्टर है हमनी के सड़क पर आजकल दुर्घटना के
0: बेशक है तो देखा नहीं सकब सर एक झुटलाई तो है जब जब नशा के हालत में गाड़ी चला के या फिर ड्रग के लैफलियंस पर गाड़ी चला के तो एक खातिर हमने के जो कंपाई है ला पुलिस औसी ला पुलिस है जब हमने के कमिश्नर पुलिस बहुत स्ट्रिक है बोला एको सांस नहीं दे के और जब ले सकब सर कि मजा मैम दिन में तेज कहना सर जब ले सकब सर कि हमने मोते कहना सर ऑपरेशन मोते कहना सर तो चाहेला है बहुत अच्छा बात बोला कि देखा एगो आदमी जब अपन लावी पेशोनिल में पीवे में जाके पियता खाता पियता जिसको टेक जाता अब इतना ले पी लेबा कि अपन कंट्रोल नहीं बा या कि अपन लिमिट दे पासे कर लेबा तो के नहीं चाहत गाड़ी चलाई के देखा हमें मना नहीं कहना सर आदमी के जाके अपन खाई पिए के दे स्ट्रेस होके मैं सुनमा चला एगो प्रोविजन करे के जो पियत हुआ तो एगो दूसर आदमी तुहर गाड़ी चलाए या फिर एगो दूसर आरोजमा करब अपन घर वापस जाए के तह सुनमा जब तू नहीं करत हो तो हवे खत देखा ऑपरेशन होला तो हम सकब बोले कि मजा है पिछले साल मैं एक बरिस के दौरान 3,285 का पॉजिटिव लाल कुलतीस 3,000 प्लस के 3,300 पॉजिटिव लाल कुलतीस जैसे कहा बहुत है अब तो बताए कि लाल कुलतीस के इतना ले ग्राव है ऑफेंस नशा के हालत में गाड़ी चलाई के तो एक पेनाल्टी मोड में नहीं आवेला ही
1: अच्छा
0: काहे नहीं आवेला बस कि लाल कुल टेस्ट एक ही समय में सब एक कुछ डिस्क्वालीफाई हो जाए जे मजिस्ट्रेट जे खोजी तो ऐसे सैंक्शन लेवे के तैसा कि

0: पहले ही कुछ में तुरा डिस्कालीफाई कर दी और नहीं तो जो देजेम कुछ लाल कुलतीस रेस कर ला लाल कुलतीस के जरिए कौदाने हुई ला तो ओब्लीजे तोर लाइसेंस कैंसिल कर दे ला यानी तोर लाइसेंस सोते हो जाला तोरा प्रिजो भी सकेला बिजा कर दे और तोरा डिस्कालीफाई कर दी इतना दिन तोरा लाइसेंस नहीं चला तो देखा कितना ग्राव ऑफेंस है लाल कुल और ला ड्रोग तो एक पर हमने कंपाई करते ये भी एगो रीजन है कहे कि आदमी लालकुल और लादरोग भी पसके हजार नौ सौ पचास का पॉजिटिव लादरोग के भी हमने पकड़ ले रहे आदमी लोग के तो हाई सब बतावे रहा कि ला पुलिस अपन काम करता ला पुलिस अपन ऑपरेशन जो है जारी रख ले बा और हमने एक एक कोचिंग नहीं करब सर जब मैं आदमी लोग देखवाजो सर पी के गाड़ी चला के बहुत कोई देखी ना सा देखा जब कुछ को पॉजिटिव रहता बोई ना सर बहुत देखी ना सर कि कोई जो आदमी पीले बा तो आकुते बैठल बा देखबा कि ओकर लड़का लोग कोचे कहता या फिर ओकर मैडम कोचे कहता जो नहीं पीले बा या फिर ओकर दोस्त जो नहीं पीले बा बोले ना सर देखा हम नहीं पीले देख वो पीले बा ये सब अच्छा है पॉजिटिव बात है नहीं तो हम इतना ले सकते बोले कि हम गाँवे में इतना भी देख लें कि 3 बजे 4 बजे जब डिस्कोटेक बंद हुआ था तो हौजा पर एगो 20 लो लेकर लाउन सौ सौ प्लस जो नदी लोग पीले वाले से हाँ और हो सोफे नहीं पीले बा हाई सब पॉजिटिव चीज आवेला जब देखे ना सर कि हमने ला पुलिस प्रेजेंट रहेला हाउ ले तो वो लोग हाई सब एविते कर सर मैं सुबह जो लोग नहीं एविते कर सर ला पुलिस हमें देखब कि फ्लिक ऑफ लाक बा ए ग्रॉ बे बा या फिर पोट्रीस में भी जो जो लेक में जो हमने गाड़ी आगते कर सर हमने के स्टॉप एंड सर्च कर सर चेक कर सर तो एक जरिए हर वीकेंड के वो 20-25 गो आदमी पॉजिटिव पकड़ी ना सर तो हाई कोची नहीं करब सर बस कि तुहर बहुत तुहर सवाल जब कुमासे कर ला कि जो कारण आदमी के कोपूतमा हो जो कारण आदमी एक्सीडेंट कहला तो नशा के हालत में और ड्रग के ओकर लेफ्लियंस में जब कोचे करब तो ये एगो लेफे जीरे का कहे कि तुहर फाकिलते तुहर डिसीजन लेवे के
1: तुहर
0: बस में नहीं बा तू तू कम सोफे बोल हम बहुत ठीक है मैं सुबह जब तुहर देर तुहर तुहर कोपोतमा तुहर फासो को जो बहुत सांस होला और बहुत रिस्क हो जाए तोरे खातिर भी और जो दूसर सड़क इस्तेमाल करे खातिर भी तो हाई खातिर हमने हाई सब पर एक कुछ सांस नहीं देना सर तन कुछ तो लेगे नहीं कहना सर और देखा कि एक भर भी बातचीत चला था और भी एक कानून जिया करे के तो ये सब जब आए तो हमने जनाब सब मैं सुबह अभी खातिर बहना सर आदमी लोग के कि देखा अपन अपन अपन फिटनेस कैसे हमने गाड़ी के फिटनेस बहना सर कौतोले करे के तो चला अपन पर्सनल फिटनेस भी देखे के कि नहीं चाहला तुहरा नशा के हालत में या फिर ड्रग के ओकर लेफ्लियंस में कौन जगह या फिर कोनो आदमी बीमार रहला कोनो मेडिसिन दवाई लेवल से तो ओकर लेफ्लियंस भी रहला तो आदमी फिट नहीं रहला ओके नींद लगेला या फिर ओकर कंसंट्रेशन कम रहला या फिर एगो आदमी फाचिगे एक दिन पूरा दिन काम कर लेबा रिपोर्ट तन को नहीं लेला उमे रात के निकल के रे से कोचिया कर रहता या फिर ओवर टाइम पर ओवर टाइम कर रहता तो हई सब बात अफेक्टे कर रहा एगो आदमी ओकर जब सोफे फिजिकली फिट नहीं रहला ओके इम्पेयरमेंट रहला कोनो कुछ ओके ऑफिस से कहला निमन से कंसंट्रेट होके तो सब हाई सब एगो कारण सकेला जीरे खोई सड़क पर एक्सीडेंट करे के नहीं तो एक अलावा देखा कैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत एगो इम्पोर्टेंट बात है आदमी लोग जिसरे हो जा सर और डिस्ट्रैक्शन के एगो तो मुख्य कारण है जब टेलीफोन से भी करते हो या फिर अपन राजू कस के दिला या फिर जो आदमी बैठल बा कोते ओकर संगे बात करत हो या फिर आदमी जो पीछे बैठल बा तू पीछे मुड़ के ओकर संगे बात करत हो तो हाई सब पर डिस्ट्रैक्शन करे गया या फिर गाड़ी चलावत हो और अमेमतो देखा तो कौन चीज एक्सपोजर होल बा या फिर कौन प्रमोशन होल बा तो ये सब पर ये सब भी डिस्ट्रैक्शन करेला एगो आदमी के तो एक लिफे आवेला जब सड़क पर जब चलावत हो गाड़ी सब या फिर आदमी लोग अपन टाइम मैनेजमेंट निमन से नहीं करें सर प्लानिंग नहीं करें सर कहूँ जाए के रहला तो देर से निकलें सर प्रोविजन नहीं करें सर देखा सब कोई जानेला कि मोरिस में वीकडेज यानी कि लेंदी से शुक्ले गाड़ी के उपशिक्षण होला गाड़ी के चले में फचीर के और शाम के तो चाहे वो प्रोविजन करे के देखा हम तोरा एगो बात बोलब आज हम गाँव से निकल के आवते पोर्टिस हम सेते जब एगो 20 में चढ़नी तो वीते चले नहीं सुजोली से वीते चले नहीं तब एम्बेसी से कब आए वीते मैं हाँ ये जो लास्ट सेमेंट के दिन रह तो हमके पर सीजे एगो 20 लेवे के जब हम सकब
1: समय पर आए
0: तो है बड़ा टाइम मैनेजमेंट सब आदमी के चला प्लानिंग सोचे के कौन दिन है कहाँ पर जाता तो जे अब ओके एगो प्लस एयरपोर्टों में जाए के बाद नॉर्मल में जब एगो प्लस में ब्लॉके होल तो उस खोजी हम रिटवा हम वहाँ से करेंगे तो हाइजे पर ही सबले बड़ा एरिया कर अपन लावी में कि अपन स्पीड उगमौते करेला जब स्पीड उगमौते करेला तो ओकर गाड़ी ओकर कंट्रोल में नहीं

0: Là, la moindre qu'on ait incident, oui, t'as n'est ce qui éviter carré, t'as osé de qui tonneau carré là, y a puis douceur gardé, c'est étonnant, maré là qui jan bichel chal jala, y a puis colonne électrique, c'est y a puis miraille, c'est y a puis ganti, mais dérapé ou que y a qui maré là, ça t'as aidé par les tecs qui
1: et car piché, c'est
0: speed limit qui est au gars. Abdita ego douceur ego battre là, condition la route qui est pareil n'est là. कब देखवा बरसात हो गलवा तो सड़क नोवर पाके नहीं रही कोई तनी कुन लाबू लेके देखवा कामियो सीमा में आलबा लाबू लेके ताऊ लाबू से की तोरा
1: एगो एक्सीडेंट
0: माकादम एगो एक्सीडेंट पोवे करते बुयो से की एगो एक्सीडेंट पोवे करे तो हाई सब कोचो क्लिमाटिक अफेक्टे कला एगो आदमी के चाहला जाने के और सब ले पोतो हो दोहर हो आदमी के ओकर सॉ फ्रॉ आदमी के जो हो काल पीस एगो आदमी जब गाड़ी पहुंचे कहला तो चाहला ओके अपन अपन अपन अपन दिमाग अपन अपन सब एगो एगो ओकर जो कोऑर्डिनेशन हो चाहला पीसफुल रहे के जमे ओ भी जब गाड़ी पहुंचे करी तो लगाज में नहीं पहुंचे करी देखा एगो
1: ध्यान भी सड़क पर
0: सड़क पर के देखा एगो आदमी देखे ओकर जो पर्सनैलिटी है जो कहते हैं वो रिफ्लेक्टे करे गाड़ी फसों पहुँचे करेंगे देखबा कि कस के आके फुए ब्रिस्क मारता तपास करता या फिर ट्रेनिंग्स करता हम सब बतावे ला अदमिया के कहते हैं या फिर अपन टॉप जब होन इस्तेमाल करा देखबा एगो फसो है एगो पैप कर ला एगो आदमी के आवे हाँ अदमिया तो ऐसा टॉप करता कि मजा अदमिया को मारे के तो हाई सब एगो आदमी के जो आग्रेसिविटी है जो लेको में दिल में बा दिमाग में बा तो
1: ट्रांसमिट
0: हो ला ड्राइविंग में और जब ऐसे करेला तो दूसर खातिर नॉर्मल एगो दांव से हो जाला
1: जरूर। अब हमने के ई प्रोग्राम के समाप्त होवे में सकब जा बोले एगो 5-6 मिनट बाकी बा हम चाहत है कि ई 5-6 मिनट में आप अब हमने के सलाह देब कैसे चाहे हमने के फुदा रहे के कौन चीज चाहे करे के पिए तो आजकल देखत है जा आप बस स्टॉप पर खड़ा हुआ तो आपसे एगो गाड़ी टकरा जाता एगो लड़का कौन दिन के खड़ा रहल एगो वन ओकर से आके टकरा गल तो ई सब जो एक्सीडेंट बा आजकल तो हर जगह कैमरा बा हर घर में कैमरा बा हर कोना में कैमरा बा और ये सब एक्सीडा कैसे हुआ था हमने के वो कैमरा में लौका था फेसबुक पर शेयर हो जाता हर एगो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाता तो हमने के थोड़ा अब सुरक्षा के बारे में बोला।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत है पोता हो देखा नहीं चाहला हम हमेशा बोलना नहीं चाहला थोड़ा एगो ला पुलिस रहे के नहीं चाहला एगो लुटोवीते रहे के जब मैं एक्सीडेंट कम करब एक्सीडेंट के कम करे खातिर हमने के घर से शुरू होला हमने के जो लड़का पैसे कैसे हमने के लड़का जो छोटा लड़का बा तो ओके लेकुल अकेले नहीं जाए जाना से जाइए ओके अकोपाए कहना से या फिर एगो 20 पर भी जाके ना सर तो है एगो प्रिकॉशन लो थी सर तो है चाहला एगो गाइड डाले के कि अच्छा काम करते सर सड़क सुरक्षा में अपन कॉन्ट्रीब्यूशन देव थी सर तो ऐसे डीजेम एता पावेला जो हम तुर लड़का अब छोटा नहीं बा 14 बरिस हो गल बा जो मोटरसाइकिल के तौदौस वेला हम लड़का देखबा कि अभी ओकर लर्नर नहीं होल बा वो मोटरसाइकिल खुद के थोड़ा लेके निकले गए तो ओके कम पाहत है तोरा ओकर पर मना करे के और ओकर पर एगो ग्रिप रखे के कि हम लड़का हम काम नहीं करी लड़कवा के अब जब ओके कैसो हो गल कनी ओकर लर्नर मिल गल या फिर लाइसेंस मिल गल तो देखे के चाहे लड़कवा इसकी अपन फ्लोरिसों पहना था कि नहीं इसकी खास हेलमेट पहना था कि नहीं रात के तौदे ले निकला था पांगर जाके गाली करते हुए रात के डिस्कोटेक जाता पांगर पी के आवा था
1: कितना ऐसा का हमें के लोग
0: एग्जैक्टली मत देखो था इतना पर इतना बहुत है तो तोरा चाहला कम पारो हैला अपन जिम्मेदारी लेवे के कि तू ही नहीं चाहला पुलिस के कमा करे के तू अपन घर ही में सब है सब आप इसे करे रोके जब मैं लड़कवा एगो सीधा सीमा में जाए अब तोरे अब तू अब पारो हुआ तू कौचिया करत हुआ तो तोरा चाहला नहीं चाहला ला पुलिस के देख के कैसे तबिया बोला अपन टेलीफोन रखे के तोरा चाहला बोल एग्जाम दे के हाउ लड़कवा काल तू जब नहीं रह तो ऊ गाड़ी चलाई तो हाउ लड़कवा के कौन एग्जाम दो था कि ला पुलिस के देख के टेलीफोन रखे के ला पुलिस के देख के सैचिया डाले के
1: और इधर स्पीड लिमिट का ला पुलिस के देख के पुलिस रही तब गलती
0: कर तब कौन एग्जाम दो था तो देखा है ये है ये बाजी का जे हमने अपन घर में है सब जो छोटा छोटा बात बोलनी शुरू कर देनी सर तो है जे एक मजा हमने के हाउ जो पैर वैना सा ओके निमन से पलौता थे सर ओके में निमन से पानी डालते सर काल हमने के लड़का अपन लुटो लेके निकली काम करे जाता लिकुल जाता यूनिवर्सिटी जाता या फिर अपन संगतिया लेके गलबा या फिर कहूँ भी गलबा तो हमने अपन अपन अपन घर में सकप सक मजा सुख शांति से ओके स्प्रे करे तनको आप यौशो नहीं रही कहे के ओके बो फोमाशो दे लें सर तो है ये चाहे एगो एगो बात है कि अपन जो अपन परिवार के है ओके चाहे तोरा बॉल एग्जाम दे के कि एगो एगो एगो रिसेप्शन में गेला तू ही पी के नहीं टट्टी हो गेला अब गाड़ी लेके चलाओ तो तोहर लड़का ही सब देखा था
1: लड़का सच्ची तो हम सब

0: परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी तू अपन ले देख एगो नवा निमन इस्तेमाल करे के सड़क के कायदा कानून बा ओकर पर अमल करे के खाली नहीं मजे की ला पुलिस के देखब हम एगो पुलिस है हमने के एग्जॉम्पन हो ला पुलिस के एग्जॉम्पन हो सैचिया ने डाले के मैं सुनवा हम पहला जैसे हेली ना था पहला जाफे हम सैचिया डालब क्लिके होल तो हम जाना थे हमारे सिक्योरिटी पर पूछो हम के कोई कॉन्ट्रोशन नहीं ली मैं सुनवा हम अपन सैचिया अपन सिक्योरिटी खातिर देखा हमने के टेलीफोन एग्जॉम्पते है मैं सुनवा नहीं चाहना हर कुछ मजा एग्जॉम्पते है टेलीफोन सकब से हमने आगे होके टेलीफोन वहाँ लेके तब अपन काम करना सर तब सब चीज जाफे है जो आवेला जो चाहेला मजा हमने के अमल करेगी तब सड़क बाँटी ना सर सड़क में चाहेला दूसर संगे साथ में बाँटे के अब जो हमने के बड़े बुजुर्ग लड़का के तब जाए ना सर हमने के बड़े बुजुर्ग भी ढेर कोई कोत नहीं लेला मैं हमने के कागौ पूछा जो हमने के विक्टिम है सड़क पर फताल के तो हमने के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमने बोलना सर कि वो लोग के भी चाहना ध्यान दे के वो लोग के चाहना सहायता दे के वो लोग के जैसा प्रॉब्लम है अब बड़े बुजुर्ग लोग के भी देखा हमने सबसे एगो चीज़ करे एगो एगो एक्सीडेंट हो रहा गल गलबरीस अदमिया की सुफेवा के काथोवें जिस बनाने रह काथोवें जिस बनाने के हमारे बड़े बुजुर्ग बा ओके हम कौजुआ करे दो अब हाइये सब आवेला मोबिलेट मोटो सिकलेट हबी ले आवेलन अपन लर्नर खोजन सके रूबले करेंगे तो हाइये देखा हमने बस जितना कोई हमने के जो सुनलक आज हमने के अबासा दिया हुआ हाई सब बात तू अपन परिवार में अपन दोस्त में अपन दफ्तर के साथी लोग में कोलेग में बाँटा जब हमने के सड़क निमन रही एम्बेसी की भी हमने शुक्रिया अदा करते कि हमेशा हमने के प्लेटफॉर्म दे वेला हमने के हमेशा आस पास करें
1: जरूर बहुत बहुत शुक्रिया सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदैन जी ये बातचीत हमने जारी रखब जा कहे कि अभी और ढेर विषय पर बात नहीं सकली करे समय हो गल बा कार्यक्रम हैजे पर समाप्त हुआ था लेकिन फिर मिलब जा ई वादा के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं धन्यवाद नमस्ते।

0: संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीआरपी के पात्र होंगे और उसे प्राप्त कर रहे होंगे वे नए स्टेट एज पेंशन के तहत भी मासिक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। एसएपी का भुगतान सरकार द्वारा घोषित मींस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एसएपी की राशि एक तय मानक के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसमें बाद में मींस टेस्ट लागू किया जाएगा। Le budget 2026-2027 qui bat Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP, ne tournent pas de cri à dire. CTSP का कहना है कि ये बजट आम लोगों की वास्तविक ज़रूरतों से दूर है। यूनियन ने खास तौर पर पेंशन रिफॉर्म और मींस टेस्ट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति साबित करनी पड़ेगी जो उनके अनुसार सही नहीं है। और बजट 2026-2027 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी है। एफएमपी की सदस्य ज्वाना बिहांजे ने घोषित कदमों पर निराशा जताई है। उन्होंने इसे बजट बात बात ही कहा है।

0: और कहा कि इसमें विजन की कमी है तथा ये बढ़ती जीवन यापन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जूझ रही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। GWF के अध्यक्ष क्लैंसी बीबी का कहना है कि बजट में कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण कदम शामिल है। उनके अनुसार इन क्षेत्रों में की गई घोषणाएं काफ़ी सीमित है और उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए था। निजी क्षेत्र का मानना है कि इस बजट की समग्र दिशा उन प्रमुख मुद्दों का समाधान करती है जिन्हें उसने सरकार के सामने रखा था। कल बजट भाषण के केवल डेढ़ घंटे बाद ही बिजनेस मॉरिशस की प्रतिक्रिया सामने आई। निजी निवेश के आधार पर आर्थिक विकास की वकालत करने वाले इस संगठन ने कई घोषणाओं का स्वागत किया है। इनमें मॉरिशस को AI का केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र बनाने की योजना, पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाने के उपाय तथा विदेशी कामगारों की भर्ती को और आसान बनाने वाले कदम शामिल है। पश्चिम अफ्रीका में 63 साल की एक महिला कल शाम अपने घर में मृत पाई गई। उनकी भतीजी जो उसी आंगन में ऊपर रहती है ने पुलिस को बताया कि घर में CCTV कैमरे लगे हैं। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति महिला के साथ दिखाई दिया जो उससे बात कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में फाउल प्ले की आशंका जताई है। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और विदेश में कल दोपहर लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। टक्कर वाली जगह पर इमरजेंसी सर्विस की टीमें तुरंत पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

करते हो। ग्यारहवें पारे के पहले पाव में ग़ज़वे तबूक से वापसी के वाक़यात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे तबूक के लिए आप रवाना हुए और रूम की सल्तनत की सरहद के करीब पहुँचे, और तबूक एक चश्मे का मकाम है, एक चश्मे का नाम है, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया। उस चश्मे के बारे में हदीस पाक में आता है कि वो चश्मा खुश्क था, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी उसमें था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी में कुल्ली फरमाई, आपका कुल्ली फरमाना था कि वो चश्मा जो है बड़ी आबोताब के साथ बहने लगा, और मुसलमानों की सारी ज़रूरियात, 30,000 का लश्कर था, इसकी सारी ज़रूरियात ये एक चश्मा जो है उसके लिए काफ़ी हो गया। रूम का बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानता था, ईमान नहीं लाया लेकिन ये समझता था कि सच्चे नबी हैं, मैं इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए तो आपके रोब और दबदबे की वजह से रूम का बादशाह अपनी फ़ौज लेकर फ़रार हो गया। मुसलमानों ने आसपास जो कबीले थे वहाँ पर हमले किए और फतूहात पाईं, और खैरियत और आफ़ियत के साथ मुसलमान पलटने लगे। अब जब मुसलमान खैरियत और आफ़ियत से पलट गए तो जिन मुनाफिकों ने शिरकत नहीं थी, जिहाद में शिरकत नहीं की थी, उनका तो ये ख्याल था कि रूम की सल्तनत मुसलमानों को रेजा रेजा कर देगी, अब कोई भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सुपर पावर समझी जाती थी। तो उन्होंने जब देखा कि मुसलमान का तो बाल बेका भी नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ के बग़ैर मुसलमान वापस आ गए, तो अब मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बहाने करने लगे। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बहाने मत बनाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारे बहाने कबूल करने से मना फरमा दिया। यहलिफून लकुम लितरदौ अनहुम, ए मुसलमानों, तुम्हारे सामने ये अल्लाह की कस्में खाते हैं मुनाफिकीन ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। फ़इन तरदौ अनहुम, बस अगर तुम इनसे राज़ी भी हो जाओ, फ़इन्नल्लाहा ला यरदा अनिल क़ौमिल फ़ासिकीन, बस बेशक अल्लाह ताला फासिक कौम से राज़ी नहीं होगा। وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, مدینہ شریف کے ارد گرد دیہات تھے, ان دیہاتیوں میں سے بعض وہ تھے کہ جو منافق تھے, ان کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وہ اللہ کی راہ میں اگر دیتے بھی ہیں تو مغرمن, اسے جرمانہ اور تاوان سمجھ کے دیتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, और बाज इन देहातियों में सच्चे मोमिन हैं, वह यत्तखिज़ु मा युन्फिक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि, वो जो अल्लाह की राह में देते हैं उनका मकसद अल्लाह की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करना है। वह सलावातिर रसूल, और अल्लाह की राह में देने के साथ साथ इनका मकसद रसूलुल्लाह की दुआएँ लेना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब कोई अल्लाह की राह में सदका खैरात पेश करता तो हुजूर उस खैरात को अपने सामने रखते, और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है कि हुजूर उस चीज़ को सामने रख कर देने वाले के लिए बरकत की दुआ करते। तो ये मोमिनीन जहाँ अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए और सवाब पाने के लिए अल्लाह की राह में देते, कुरान ने फरमाया वसलावातिर रसूल, इनका एक मकसद ये भी होता कि रसूलुल्लाह की दुआएँ वो हासिल करें। इससे ये भी पता चला कि किसी चीज़ को अल्लाह की राह में देना हो तो उसे सामने रखकर दुआ करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, सुन लो बेशक इन अल्लाह वालों के लिए।

अल्लाह की क़ुर्बत है, अल्लाह का क़ुर्ब है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इसके बाद जो दूसरा रुकू है, इसमें इस बात का बयान है कि अल्लाह की राह में जो सबकत करने वाले हैं उन मोमिनीन का जिक्र है जो जिहाद में गए, और उन लोगों का जिक्र है जो थे तो मोमिन मुसलमान लेकिन नफ्स और शैतान के वार में आ गए थे और जिहाद में नहीं गए, लेकिन उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, सबसे अव्वल सबकत ले जाने वाले मुहाजिर और अंसार। والذين تبعوهم بإحسان, और वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की नेकी में। देखिए दो बातों का जिक्र है, अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र है, और बाद में कयामत तक आने वाले जो इनके पैरोकार हैं, जो सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार की जिनके नीचे नहरें रमा दमा हैं, हमेशा हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। व आख़रून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, वो लोग कि जो जिहाद में शरीक न हुए लेकिन उन्होंने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। ख़लतू अमलन सालिहन व आख़र सय्यिआ, अच्छे अमल के साथ बुरा अमल भी किया। बुरा अमल ये किया कि जिहाद से पीछे रह गए, और अच्छा अमल ये किया कि जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने लगे हैं तो वो मुसलमान मस्जिद नबी शरीफ गए, और हुजूर की आमद से पहले अपने आप को उन्होंने सुतूनों से बांध लिया, पिलर से बांध दिया, और लोगों से कहा कि हमें बांध दें, और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं खोलेंगे हम अपने आप को नहीं खोलेंगे। बस नमाज के लिए वो खुलते, और जो तबई ज़रूरतें थीं उसके लिए अपने आप को खोलते, वरना ये 24 घंटे पिलर के साथ बंधे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका ये मंज़र देखा तो आपने फरमाया कि मैं इन्हें उस वक्त तक नहीं खोलूँगा जब तक अल्लाह हुक्म ना दे। तो इस पर आयत करीमा नाजिल हुई कि ये लोग जो हैं असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह ताला अन करीब इनकी तौबा कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत सुनाई और इन्हें अपने दस्ते मुबारक से आपने खोल दिया। अब जब ये खुल गए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा माल जो राह खुदा में चलने से रुकावट बना, हमारे बागात, हम बागात के फल के इंतज़ार की वजह से हमने कहा कि फल उतर जाएं फिर जाएंगे, ये करते करते वक्त निकल गया, लिहाजा अब हम अपने इन बागात को जिनकी वजह से हम जिहाद से दूर रहे, हम तमाम बागात को अल्लाह की राह में सदका करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल लेने का हुक्म नहीं दिया, जब अल्लाह ताला हुक्म देगा तो मैं लूँगा। खुद मिन अमवालीम सदक़तन, तो यह आयत करीमा नाजिल हुई, ए महबूब आप इनके माल से सदका ले लें, तो तौहिरुहुम, इन्हें पाकीज़ा कर दें, इन्हें पाक कर दें। व तो ज़क्कीहिम बिहा, और इस सदक़े के ज़रिए इन्हें सुथरा कर दें। व सल्ली अलैहिम, और इनके लिए दुआएं करें, माल लेकर इनके लिए दुआ करें, और आपकी दुआ इन लोगों के लिए, सहाबाए कराम के लिए क्या अहमियत रखती है। फरमाया, इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआएं इनके लिए सुकून कल्ब का बाइस हैं।
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات قبول فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

और अल्लाह ताला सुथरे लोगों को पसंद फरमाता है। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक्वा मिनल्लाह, ये फजीलत इन मर्दों को जो हासिल है इसकी वजह मुफस्सरीन ने बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ऐ अहले कुबा, तुम्हारी फजीलत बयान हुई तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि जब हम इस्तिंजा करते हैं तो ढेलों के साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पानी से इस्तिंजा करना और सफाई और तहारत के ख्याल करने की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी फजीलत बयान की।

गोशे नसीहत में आपको हम करबला पर मबनी चंद बातें गोश गुजार करा रहे हैं। यजीद कौन था, बज़बानी अल्लामा साकिब मुस्तफ़ाई, वाक़ियात करबला, बज़बानी पीर साकिब शामी दामद बरकातुमालिया, इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला के आखिरी अल्फाज़,

60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद बदकार शख्स था। इब्ने असीर और दीगर बड़ी बड़ी मोतबर कुतबे तवारीख में उसके स्याह कारनामों के तस्करे मौजूद हैं। वो जानी था, शराबी था, मुसलमानों का कातिल था। बिनते इनब के साथ शहर मक्का और शहर महबूब मदीना तो रसूल में जो उसकी बदमाशियां हैं उनसे कौन बेखबर है। उसने शहर मक्का में बैठ के शराब पी और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरे तो उसने एक जाम बढ़ाते हुए नवासा रसूल के आगे पेश करते हुए कहा कि इसको पी लो, कि कुरान ने यह नहीं कहा कि शराबियों के लिए खराबी है, बल्कि कुरान ने तो कहा नमाजियों के लिए खराबी है, लिहाजा ये शराब का जाम ले लीजिए और इसको नोश कर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन अल्लायास बिल्ला कहते हुए आगे गुजर गए। उन्होंने यजीद किन करतूतों को अपनी आंखों के सामने देखा था और उसके स्याह कारनामे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमने उस वक्त उस पर खरूच किया जब हमें यकीन हो गया कि उसकी करतूतों की वजह से आसमान से कहीं पत्थर ना बरसने लग जाएं। सिर्फ वाकया करबला ही नहीं, उसने मदीना तो रसूल के अंदर 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को कत्ल किया और 300 नौजवान खवातीन की आबरू रेजी करवाई। और मक्कतुल मुकर्रमा में यजीद ने काबतुल्ला पे संगबारी की। ये तारीख के हवाले हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। हत्ता के पूरा मताफ पत्थरों से भर गया, काबे का गुलाफ जल उठा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इवज में जो दुम्बा आया था उसके सींग काबतुल्ला की छत पे रखे गए थे, वो सींग भी जल गए। इसीलिए इन अय्याम को अय्याम हुर्रा कहा जाता है तारीख के अंदर। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हुई न इकामत हुई और मस्जिद नबवी के अंदर यजीद की फौजों के घोड़े बंधे रहे, मिंबर रसूल की हुरमत पामाल कर दी गई। अब वो यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को वलीद बिन उतबा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद के लिए

रिवायत कर लो तो हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन ने दो टोक कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उस जैसे जालिम शख्स के हाथ पे बैत करूं। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया कि ये मौका है, जाने ना दो, अगर ये चले गए काबू पाना दोबारा मुश्किल होगा, लिहाजा अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में आवाज पड़ी। रिवायात में आता है कि आपने उन्हीं कदमों के बल पीछे पलट के नियाम से तलवार बाहर निकाली और हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी के छार से हैदरी शेर निकल आया, कहा वलीद बिन उकबा तू हमें नहीं जानता, हम कौन है? आना हुसैन उबनो अली ये बने अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं और अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, फरिश्ते हमारे घर में आते रहे हैं। वह यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्से मौलिनुन बिल फिस्के शारिबुल खम्र, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराब पीता है, इसलिए हुसैन डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता है। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार बैत की वजह बयान कर दी। आज ये प्रोपेगंडा किया जाता है कि ये दो शहजादों की जंग थी और ये इक्तदार के लिए सब कुछ हुआ। अगर ये बात होती तो तरमाह बिन अदी कह रहा है, हातम ताई का पोता, जब आप मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, हुजूर आप मेरे पहाड़ों में आ जाएं और 5000 का लश्कर आपकी पुश्त पर रख दूंगा और आप जिधर भरेंगे वो जान नसारी करते हुए आपके पीछे होंगे और यजीद की हुकूमत के टुकड़े करके रख दें। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन ने तरमाह बिन अदी बिन हातम की इस पेशकश को ठुकरा दिया, कहा मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूं। यजीद के चेहरे से उस निकाब को नोचना था, उसके मकरूह चेहरे को लोगों के सामने नंगा करके बतलाना था कि ये वो शख्स है कि जिसके बारे में मेरे महबूब और मेरे नाना ने खबर दी है कि बनू उमैया का एक जालिम शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा और वो सुन्नत को बदलने वाला यही शख्स यजीद है।

0: अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन।
1: हम इमाम हुसैन का करबला का वाकया देखते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इमाम हुसैन ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान शहादत नोश फरमाया। इमाम हुसैन किसके लिए शहीद हुए? आका के लिए शहीद हुए, आका के लिए शहीद हुए ना। आका की शहादत का ज़हूर ताम कहाँ से हुआ? इमाम हुसैन की शहादत से हुआ। इमाम हुसैन की शहादत को अगर हम बनजरे गौर देखें, अनिकाना निगाह से समझने की कोशिश करें, तो खुदा की कसम हम देखते हैं कि तारीख इंसानी में कोई एक शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे तमाम आजमाइशों में मुब्तला किया गया हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में अपने बंदों को आजमाने की जितनी भी सूरतें बयान की हैं वो सारी सूरतें हमें इमाम हुसैन की शहादत में मिलती हैं। और कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस एक फ़र्द को इतनी आजमाइशों में मुब्तला किया गया हो। किसी को भूख के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल आजमाता है, किसी को प्यास के लिए आजमाता है, किसी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद के नुकसान के ज़रिए आजमाता है, किसी को शहादत देता है, लेकिन एक इमाम हुसैन की ज़ात है, वो एक इमाम हुसैन की ज़ात है। वो फ़र्द वाहिद हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने भूख के ज़रिए भी आजमाया, प्यास के ज़रिए भी आजमाया, माली नुकसान के ज़रिए भी आजमाया। अली अकबर सामने कट गए, अल्लाह आजमा रहा है। अली असगर की शहादत के जरिए आजमाया, इमाम कासिम की शहादत के जरिए आजमाया, अल्लाह आजमा रहा है। इमाम हुसैन खुद शहीद हो गए। खुदा की कसम कुरान करीम की इन आयात की तफसीर जब मैं पढ़ता हूँ, इन आयात पर गौर करता हूँ और रब बैनुल आयात को देखता हूँ, कभी कभी जब दिल में आता है कि तफसीर की किताब उठाऊँ, तफसीर की किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ तो हाथ रुक जाता है, एक आवाज़ आती है, तफसीर की किताबें उठाने की जरूरत ही नहीं, इन आयात को देख और इमाम हुसैन की ज़ात को देख, इमाम हुसैन की शहादत को देख। रब्बे काबा की कसम इमाम हुसैन की जात अज खुद कुरान करीम की इन आयात की चलती फिरती तफसीर नजर आती है। Martyrdom of Imam Hussein, sacrifices of Imam Hussein, the entire life of Imam Hussein, it seems as if Imam Hussein himself is a walking

0: Looking at the tafsir of these verses of the Quran. He himself is a commentary of these Quranic verses. His zaat, his martyrdom, his sacrifice itself is a tafsir of these Quranic verses.
1: Hussain ki azmaton ke tarane alaate raho, Hussain ko yaad karte raho, Hussain ke naam ki mahfilein sajate raho. मुबारक को आपको जिन्होंने हुसैन की महफिल सजाई है. अल्लाह ताला तुम्हारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए.

0: NBC Radio 24 hours a day.
1: आइए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गिशानो के रहने वालों को, विशेषकर स्टाफ क्वार्टर्स बोजौदें और गिशानो शुगर स्टेट के रहने वालों को सूचित करता है कि मंगलवार 30 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी बिजटोंबो के रहने वालों को, विशेषकर मोफोंग सिंह, मोसेलमो स्वान, डॉकर्स विलेज, स्कूल लेन और लाहुत कोचिया के कुछ भाग के रहने वालों को सूचित करता है कि रविवार 21 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। बालानंद

little pretty angel. Oh, my heart's broken. Find her for me.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौज करवा गुजराती गीतोना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे गीतोनी बहार गीत बहार गीत बहार

थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। Happy Music Day from MBC Radio.
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद

जी दोस्तों, संगीत एक ऐसा हम सफ़र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, तन्हाई में साथी बन जाता है और महफिल में जान डाल देता है। और दोस्तों, आज की सुहानी दोपहर में हम भी संगीत के उन्हीं हसीन रंगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद प्रोग्राम और आपके प्यार भरे संदेशों के साथ, मैसेजेस के साथ। जहाँ शनिवार का दिन है, सैटरडे है 20 जून 2026 और इस समय आप हमसे जुड़े हुए हैं ना। हर रोज़ की तरह रोज़ाना प्रोग्राम है आपका, आपकी पसंद प्रोग्राम। और स्पेशली सैटरडे को तो बहुत पहले से ही आप लोग साथ देते हैं, तो 2:15 बजे से ही आप लोग आपकी पसंद प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और माइक पर है देविना आप लोगों के साथ, और यहाँ पर फ़ोन बजना शुरू हो चुका है, तो अभी हम लेंगे आपके कॉल्स। तो आपको नंबर तो पता ही है 4028085 और मैसेजेस के लिए 5251705-5201705। तो तैयार हो जाइए दोस्ती, मोहब्बत, यादों और मधुर संगीत के रंगों में रंगने के लिए। आज का हर गीत आपकी फरमाइश पर और हर संदेश आपके दिल की आवाज़ बनकर गूंजेगा। तो बस कोई संदेश हो, कोई बर्थडे विशेज हो, किसी को याद कर रहे हैं, किसी से प्यार भरे हेलो करना चाहते हो, बस जल्दी जल्दी हमें मैसेज कीजिएगा और फ़ोन कीजिएगा। तब तक ये पहला गाना आप सबों के लिए।

जहाँ 2:50 हो चुके हैं और दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में कभी एक गीत मुस्कान दे जाता है ना, तो कभी किसी अपने की याद दिला जाता है। इसीलिए संगीत जो है, म्यूजिक जो है, दिलों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया है। वैसे सभी लोग म्यूजिक डे की सेलिब्रेशन में आ गए हैं। वैसे कल है म्यूजिक डे, मगर चारों ओर सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी मॉल में, कभी कभी अपनों के साथ, फैमिली के साथ। और वैसे म्यूज़िक तो हमेशा हमारा साथ देता है ना। सो ऐसे में एक बहुत ही एक वक्त हो चला है पहली फरमाइश की। नोटरडम की प्यारी सी रेहाना जी आदाब, और कहती हैं फी कैसी हैं फी, मैं ठीक हूँ मम्मी जी। तो बस वो खिचड़ी पका रही हैं, अपनी जो पड़ोसिन है संगीता वो बीमार है, तो गेट वेल सून संगीता जी। सो और मदद करना तो नेकी का काम हमें हमेशा करना चाहिए, ये रेहाना जी ने अच्छा कहा। और फिल्म भरोसा का गाना वे मांगना चाहती हैं माला फाडोर के लिए, साथ में उनकी प्यारी सी सुरेखा के लिए। सो यारो ये जो दुनिया है कैसी है, सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म है भरोसा।

0: की पसंद।
1: जहाँ झूमते नाचते हम जाते हैं मेबक की ओर।

विद्यानंद जी नमस्कार। तो पूरे परिवार के साथ रेडियो सुन रहे हैं, हमेशा की तरह साथ देते हैं विद्यानंद जी। सो अगला गाना जाएगा उन सुहंती के लिए, है राजीव, अमित, शीतल, आशु, कृतिका, विशाल, स्वीति, हरवेश और मेबग के उनके जिगरी दोस्त हैं विष्णु का चाधर जी और साथ में उनकी जो बहन है बिंदु कालीचरण। फिल्म है नास्तिक और लता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना साथ में हेमंत कुमार साहब जी।

2:38 मिनट हुए हैं रेडियो मॉरिशस पर, आप सुन रहे हैं देविना के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम। आपके फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम बारी बारी से लेंगे, बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर तो कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं। अभी के लिए हम एक हमारे जो पहले मैसेज की ओर बढ़ते हैं। विश्वानी दुमन जी हमेशा की तरह मैसेज भेजती हैं। विश्वानी दुमन जी और वाकवा नमस्ते जी, और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और यहाँ पर देख रहे हैं संबन मूवी का, ये जो गाना आप मांग रही हैं संबन मूवी से हमने ढूँढा है फिल्म, और ये जो गाना है कुमार सानू साहब साथ में अर्क याग्निक, और ये गाना बहन इंदिरा के लिए, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और साथ में गीता गजाधर के लिए।

दिल की बातें लब पे आते आते कभी रुक जाती हैं क्योंकि कोई हमसे जुदा है। सो बस बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। फिल्म आजू का गाना है लता जी की आवाज़ में, ये जाएगा प्यारी सी शोभा जी के लिए, पंपली मुसे से किसी खास के लिए।

जहाँ कहते हैं दिल से निकली हुई दुआ और दिल से सुना हुआ गीत दोनों ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। और आप जैसे दोस्त जो है ना, हम जानते हैं आप म्यूज़िक कितना पसंद करते हैं, आप रेडियो सुनना कितना पसंद करते हैं, और स्पेशली आप रेडियो पर अपना नाम सुनना, अपनों का नाम सुनना कितना पसंद करते हैं। क्योंकि जो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं ना, तो बस हमेशा इसी ढूंढ में लगे रहते हैं कि कब हमारा गाना बजे, कब हमारा नाम रेडियो पर अनाउंस हो। तुम रेडियो पर अनाउंस करते हैं अब किसका नाम? जी हाँ, यहाँ पर जो है किसने ये अगले गाने की मांग की है, धनी जी बहुत शेरी से, और ये जो गाना आपने सुना मांगा है कलाकार मूवी का दीप जलाए, तो सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में, और ये जाएगा स्पेशली फॉर यश और हेमिश।

जहाँ ये गाना खास तौर पर बुबा सिंह की माला जी, उनके पति हैं, बच्चे हैं और साथ में हैं ढगरू फैमिली, दयाल फैमिली, बुडाई और बंडू परिवार। और ये गाना हमें ले जाएगा 3 बजे के समाचार की ओर। इसके बाद आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में नए बदलावों का ऐलान किया है। पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन रखा जाएगा। सरकार के अनुसार 14,000 रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा और इससे ज्यादा आय वाले लोगों को भी पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसकी राशि आय के अनुसार धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान लाभार्थियों में से 90% से अधिक लोग योजना के दायरे में बने रहेंगे। बजट के बाद आयोजित प्रेस सम्मेलन में कल कई मंत्रियों ने विभिन्न कदमों का स्वागत किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन नवामाही ने कहा कि महिलाओं और परिवारों से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री पत्रिक अस्यावादन ने सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना का उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने शिक्षा सेक्टर में समावेशन और कॉलेजों में स्कूलों में उत्पीड़न के खिलाफ कदमों पर जोर दिया। बिजनेस मर्चेंट्स ने बजट की प्रमुख घोषणाओं पर खासकर आर्थिक कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में अच्छे कदम है। साथ ही उसने बजट कदमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। बजट 2026-2027 में महिलाओं से जुड़े कई अहम कदमों का ऐलान किया गया है। इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। विशेष रूप से मासिक धर्म अवकाश और मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को महिलाओं के कल्याण और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फुटबॉल में 2 मैच 2 जीत और अब राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का। मेजबान यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना शानदार अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस मैच में टीम यूएसए ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये समझौता दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों और सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बाद हुआ है। हालिया झड़पों में लेबनान में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। टेम्पल रोड रिविया जुरान पौ में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री कांता प्रसाद दूता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उनकी पत्नी माला दूता के मकान रिविया जुरान पौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिविया जुरान पौ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।

जहाँ 3:30 हुए हैं बैक टू आपकी पसंद प्रोग्राम। इससे पहले चलते हैं सीबी की कम्युनिकी की ओर। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते इन जगहों पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ये होगा कल संडे 21 जून 2026 को। ये होगा बिज टोंबू के इन इलाकों में मौसलमो फोन सिंह, मौसलमो स्वान, डॉकर्स विलेज, स्कूल लेन और रुद कोचिया के कुछ इलाकों में। हम चलते हैं एक और कम्युनिके की ओर। ये होगा कहाँ पर, हाँ जी, ग्रैंड

0: retraite, bon accueil or aspas que la poste SSS or gymnase iskun or sachukulen ke ek ilake mein wahan par kal ravivar ko 21 june ko subah ke 8:15 baje se lekar sapahar ke 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई में फिर से जारी की जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये था सीईबी की ओर से एक कम्युनिके।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मार्शेस, रेडियो मार्शेस।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

की पसंद। जिस प्यार भरे गाने के साथ हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, तो रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम। मैं हूँ देवीना, आप सबों का फिर से प्यार भरा नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और फरमाइश और डेडिकेशन लगातार हम तक पहुँच रहे हैं, बस हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को इस महफिल में शामिल करने की। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे सुरीले गीत और प्यारे संदेश बाकी है मेरे दोस्त। सो बढ़ते हैं एक, आप ये सुनिए, जितने लोग अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं आप सबों के लिए।

जी हाँ, जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप सभी को बेस्ट विशेस हैं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी रेडियो मॉरिशस टीम की ओर से, और जितने आपके परिवार हैं, जितने आपके वेल विशेस हैं, और बस हम आपको क्या कह सकेंगे, आपको लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ लव, प्यार ही प्यार। और ऐसे में ये गाना जाएगा बेल्जियम के स्पेशली जो है अंजू रघुनंदन जी, उनके पूरे रघुनंदन परिवार की ओर से उनका बर्थडे है। सो ये गाना खास तौर पर उनकी फूफू जी हैं श्यामा जी, श्यामा रघुनंदन जी मांग रही हैं। साथ में जोड़ना चाहेंगे उनके जो जयप्रकाश जी हैं, नम्रता जी हैं, केशव युधीश, और साथ में श्यामा जी की सहेलियाँ हैं नंदिनी ओकलू, वीना रामफूल और विश्वानी दुखी की ओर से सभी लोग अंजू जी को हैप्पी बर्थडे विशेस भेज रहे हैं। और ये गाना आप सबों के लिए प्यारे प्यारे दोस्त जो हमें फ़ोन नहीं कर रहे हैं मगर अपना बर्थडे मना रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू।

जहाँ ये बहुत ही प्यारा सा गाना होगा रफी साहब की प्यारी सी आवाज़ में, और शुभकामनाएं भेज रही है म्यूजिक डे का लीला जी अबाशरी। सब ये जो कहते हैं ना रेडियो के जो पर जो म्यूजिक चलता है ना, यही उनकी ज़िंदगी में क्या है खुशियाँ लाती है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो संगीत प्रेमी हैं

0: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: This is Radio Marches. Radio Marches.

जहाँ फिल्म निकाह का ये प्यारा सा गाना सलमा आगा जी की आवाज़ में, और ये जाएगा सैंपिया की आफेज जी के लिए, बाबा साहेब फैमिली और हुसैन बेग्स परिवार के लिए।

जहाँ बर्थडे विशेज भेज रही है यहाँ पर पोफेया की गीता जी, प्यार भर नमस्कार आपको भी। सो बस बर्थडे तो हो गया उनका, जो छोटा सा नाती है, बस आज डिनर के लिए वो इनवाइटेड हैं उनके यहाँ। सो पति रोहित के लिए 3 बेटे 3 बहुएँ, साथ में 3 प्यारे नाती आदित्य, आरव, तनिष, प्यारी सी जानवी के लिए।

जाजगा प्यारे से गाने में नाम जोड़ना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून सुदेव जी अवाकुआ। और आज छोटे वैभव अपना फोर्थ जन्मदिन मना रहे हैं। सो वैभव को बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे। सो विशेस फ्रॉम पापा विजयन, मामा अंजू, भैया वंश, दादी है सुनीता लागोजा के, अजी आजी माँ, मामू कुनल, मौसी मनीषा, मौसा वरुण, कजिन है तिया जिया ऑस्ट्रेलिया के, चाचा विमल, चाची वर्षा, कजिन है निया वीर मालेंगा के पुपू, अनुषा, पुपा किरण, केशनी, कृषय, प्रनीता और सभी राम रतन, राम गुलाम और कुवारू फैमिली, साथ में मालू फैमिली।

जिंदगी है दुआ, एक वेरी ब्यूटीफुल दुआ, और दुआ है यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वंस अगेन हम बर्थडे विशेज हैं सरिता कटबोन और उनके जो छोटे बेटे हैं कविश का जन्मदिन है। हेलो कविश, हैप्पी बर्थडे टू यू, और विश कर रहे हैं बहन करिश्मा, जीजा जी आकाश लंबी ही जिंदगी में तरक्की करे, छोटी सी गुड़िया अदिति की तरफ से भी। सो कविश, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और साथ में जो है यहाँ पर कुछ दोस्त हमें मैसेज भेज रहे हैं कुछ गानों के जो हमें नहीं मिल रहा है, सो कोई बात नहीं, आपका नाम जोड़ देंगे एक दो गानों का, क्योंकि हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके गाने चलाएं, मगर कभी कभी ये कुछ

हमारी जो कोशिश है नाकाम हो जाती है. सो बस और एक दो गाने हैं और, तो इसमें नाम जोड़ देंगे. अभी के लिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पर है मुकेश साहब की आवाज़ में, फिल्म है कन्हैया, और इस गाने की मांग की है वाकवा के नंदलाल जी, और ये गाना जाएगा अमिता, देविका और शनाया के लिए.

ये गाना जो है सुनीता जी के लिए हैं, खांग उप से हैं, उनकी बहन अमृता के लिए, सभी रफ़ी साहब के फैंस के लिए। फिल्म है आदमी, इसमें नाम जोड़ेंगे देवी जी का और पूरी एमबीसी टीम के लिए भी। जो गाना आप मांग रही हैं नहीं है, बस देवी जी ये गाना आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा।

जहाँ गीत संगीत की आरती, क्या खूबसूरत गाना है। और ये रिक्वेस्ट स्पेशली भेजा है फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, और ये है आशा जानू जी ऑफ कोटेज, और विशिंग ऑल लिसनर्स हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम मामा कुमारी, निफ्यूज हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू परिवार की ओर से MBC टीम के लिए थैंक यू, और सभी म्यूजिक लवर्स के लिए। और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे ज्योति जी के लिए, शतुमिनार से आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी माधव परिवार के लिए।

फ्रीक्वेंट फ्लाइट की अनीता जी, बस अब समय हो चुका है कि हम आपका नाम भी जोड़ दें इस गाने में। फ्रीक्वेंट फ्लाइट से हैं और ये गाना आपके लिए भी, और आप सभी लिसनर्स को कह रही हैं हैप्पी म्यूजिक डे। आपको भी थैंक यू।

जिसको जय से शांति जी, तीन बेटी हैं, तीन दामाद, और पति के लिए ये गाना और सभी एमबीसी फैमिली के लिए। थैंक यू शांति जी, आपका मांगा हुआ गाना तो नहीं है, बस इस गाने को एंजॉय कीजिए।

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

जहाँ सतहदी का दिन है और ये सुहानी दोपहर को, और आपका साथ आपने दिया हमको, थैंक यू सो मच। आपने जहाँ भी हमें हमारा साथ दिया, घर पर या फिर बाहर, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भागते भागते आए हमें मैसेज करने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। आज का दिन जो है थोड़ा रिलैक्स करने का है, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने का है और संगीत के साथ खुशियाँ बिताने का है। वैसे कल है 21 जून और मनाएंगे एक साथ इंटरनेशनल म्यूजिक डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। और वैसे कहते हैं ना, रग रग में, हर संसार के हर कण कण में संगीत समाया हुआ है। वो हो चिड़ियों की कलरव हो, या नदियों की कलकल, या फिर पत्ते जब हवा में उड़ते हैं, ये सब हमेशा हमारे अंग अंग में भी संगीत है। सो बस जितने संगीत प्रेमी हैं, हम आपसे मिलेंगे कल 12 बजे से 3 बजे तक और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा सुहाना सफ़र, उसके बाद रात को दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। आज आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। और ये जो अगला गाना है जाएगा आप तमाम दोस्तों के लिए।

ये स्पेशली फॉर हरीश जी और बुबा से उनके खास दोस्त के लिए और साथ में उन सभी दोस्तों के नाम जो दूर होते हुए भी दिल के बहुत करीब हैं। वैसे कहते हैं फासले चाहे जितना भी हो, यादें हमेशा साथ साथ चलती हैं। सो बस देखते देखते हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है समाप्त होने वाला है, तो सुरीली महफिल में आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो सो सो मच। सो जाते जाते बस ये कहेंगे, खुशियाँ बांटने से बनती हैं और गीत सुनने से दिल खिलता है। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, हमारे बाद 4 बजे आएंगी अंजू जी लेकर साहित्य दर्पण, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। सो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहिए। तो अंत में एक खूबसूरत गाना, ये होगा फिल्म कलंक से लिया गया और आवाज़ें होंगी श्रेया घोषाल की, साथ में होंगे वैशाली मारे और बैसाने। सो बस घर मोरे परदेसियाँ, इसका लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं आपके जाने पहचाने कार्यक्रम साहित्य दर्पण में। श्रोताओं, कल हम दो विशेष दिन मनाने वाले हैं, एक है संगीत दिवस और एक है योग दिवस। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के अंग हैं, क्योंकि जब हृदय धड़कता है तो संगीत ही सुनते हैं और योग के बिना संगीत भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए साधना की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है और यही सब को ध्यान में रखते हुए योग दिवस, संगीत दिवस पर चिंतन भी करने की आवश्यकता है। विश्व संगीत दिवस पूरी दुनिया में, मतलब हमारे समाज से लेके हमारे देश में मनाया जाएगा और पूरे विश्व में मनाया जाएगा। छात्र लोग तो कल ही अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में संगीत दिवस मना चुके हैं बहुत से छात्र, और जगह जगह ये संगीत दिवस मनाया जा रहा है। कहीं कोई सेंटर है, कहीं कोई संस्था है, सभी संगीत दिवस मना रहे हैं। और 21 जून को ये मनाया जाता है। इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संगीत। संगीत से इंसान मन की शांति के साथ साथ खुशी का भी अनुभव करता है, इसलिए संगीत का उत्सव मनाने के लिए पूरी दुनिया में विश्व संगीत दिवस मनाया जाएगा कल। इसे फेट डे ला म्यूजिक भी कहते हैं, जिसका अर्थ है संगीत उत्सव। और ये हमारे लिए बहुत विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि आज जो छात्र हैं अपने पाठ्यक्रम से हटकर संगीत से भी जुड़ते हैं। विद्यालयों में योग भी किया जाता है, संगीत भी किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है। MBC पर भी आप अनेक कार्यक्रमों में सुन रहे हैं, जैसे गीत नृत्य और परंपरा एक कार्यक्रम चलता है, संगीत सरिता चलता है और संगीत में कितने कार्यक्रम चलते रहते हैं, क्योंकि MBC आपके लिए 2400 घंटे सातों दिन फेट डे ला म्यूजिक मनाता ही रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार के लिए संगीत दिवस जो था वो 1982 में मनाया गया था। विश्व संगीत दिवस 1982 में जब मनाया गया, एक खुला कार्यक्रम है। इस दिन लोग संगीत बजाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, इसमें कोई भी भाग ले सकता है, संगीत की धुनों का आनंद ले सकता है। इस आयोजन में युवा से लेकर बूढ़े, शौकिया हो या पेशेवर हो, कोई भी भाग ले सकता है। इतना ही नहीं, इसमें सभी प्रकार के संगीतकार ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के संगीत को भी बजाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के संगीत, जैसे शास्त्रीय हो, पॉप हो, जैज हो, रैप हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, सभी को प्रदर्शित किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 130 देश हो चुके हैं जिनमें संगीत समारोह में लोग हिस्सा लेते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है लोगों को मुफ्त में संगीत उपलब्ध कराना। इस दिन दुनिया भर में लोगों को इस कला को सीखने और इसका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस पर दुनिया भर में 1000 से भी अधिक शहरों के लोग सड़कों पर मुफ्त संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साल 2013 में एक जर्नल प्रकाशित किया गया। उस एक अध्ययन के अनुसार संगीत सामंजस्य या सामाजिक जुड़ाव की भावना पैदा करने में मदद करता है। ये संस्कृतियों को एक साथ लाता है

0: पूर्वाग्रह को कम कर आपसी सहानुभूति को बढ़ाता है। विश्व संगीत दिवस के इतिहास में जाने तो इसकी कल्पना पहली बार के लिए 1981 में फ्रांसीसी राजनेता जैक लैंग और संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक मोगिस फ्लेटरेट ने की थी, जो फ्रांसीसी संस्कृति के मंत्री के दो सदस्य थे। पहला संगीत दिवस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 1982 में पेरिस में मनाया गया, फेट डे ला म्यूजिक। और जैक लैंग के अनुरोध पर मोगिस फ्लेरेट फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय के संगीत और नृत्य के निदेशक बने और संगीत अभ्यास और इसके विकास के लिए अध्ययन लागू किया गया। इन्होंने इसको म्यूजिक एवरीवेयर एंड कॉन्सर्ट नोवेयर की भूमिका बताई। बहुत अच्छा लगा संगीत दिवस पर चर्चा करने के लिए। आज आप श्रोता लोग भी भाग ले सकते हैं। संगीत के बारे में क्या जानते हैं? लुदविक हमारे साथ हैं, जो आप तक कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। तो श्रोताओं, आपके फ़ोन कॉल के लिए हम इंतज़ार में रहेंगे। 402-8085 नंबर वही है, पर कार्यक्रम अनोखा है क्योंकि आज हम साहित्य में संगीत भी जुड़ता है, साहित्य में योग भी जुड़ता है, इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक फ़ोन कॉल के साथ। लुदविक हमें बता रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल आई है, चलिए बात करते हैं। हेलो, फ़ोन कट गया है, उम्मीद है फिर से आप डायल करेंगे और चर्चा जारी रहेगी। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: आप सभी को हैप्पी म्यूजिक डे।
0: धन्यवाद।
1: तो दो लाइन गुनगुनाऊंगा।
0: जरूर, आज तो दिन ही ऐसा, क्योंकि कल हम विश्व संगीत दिवस मनाने जा रहे हैं। सुनाए, क्या सुनाएंगे?
1: सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाव मिले लंबी

बस प्यार ही प्यार पले, इस ऐसी गगन के तले, आंचल के तुझे मैं देख चलूं, इस ऐसी गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, जहां

पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली बसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले सपनों के।

0: कोई खिला हो, कभी वैर न हो, कोई गैर न हो, सब मिल के यू चलते चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, इस ऐसे गगन के चले, आ चल के तुझे मैं ले के चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। धन्यवाद भाई,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संगीत दिवस पर आपने एक पूरा गीत हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक दूसरा फोन कॉल लेते हैं। हेलो।
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं
2: जी? मैं अच्छी हूँ दीदी, मैं राधा बोल रही हूँ।
1: जी जी, राधा जी।
2: हाँ,
1: मोचीदा से।
2: आप जी, संगीत दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामना आपको, पूरे एमबीसी के स्टाफ को और सभी लोगों को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ,
1: आप क्या बताना चाहेंगी?
2: मैं ये बताना चाह रही हूँ कि संगीत, संगीत के बारे में किसे कहूँ, एक अनमोल शब्द है संगीत
1: जी,
2: क्या हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है जो, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये हमारे जीवन में कैसा कैसा रंग भरता है।
1: बिल्कुल,
2: देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है, शिशु, तो सबसे पहले माँ लोरी सुनाकर उसे सुलाती है।
1: बिल्कुल,
2: और फिर हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा हुई है संगीत के बारे में। जब हम देखते हैं समुद्र तट जाते हैं तो लहरों में एक ध्वनि सुनाई देती है, नदी के तट पर जाएंगे तो नदी की कलकल में भी एक स्वर है, पक्षियों के चहचहाट में, हवा में, हर जगह, मतलब कि संगीत पूरी दुनिया में छाई हुई है। यदि संगीत नहीं होता हमारे जीवन में तो हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमारा जीवन कितना नीरस होता।
1: बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में मैंने कार्यक्रम में कहा कि
2: हाँ,
1: हमारी धड़कनें सबसे बढ़िया
2: हाँ,
1: संगीत है। जब शिशु जन्म लेता है तो माँ तो उस धड़कन से परिचित होती है, क्योंकि वह गर्भ में भी उस
2: महसूस कर सकती
1: की
2: है,
1: धड़कन ही सुन के जिंदा रहता है बच्चा। और
2: हाँ,
1: माँ
2: हाँ,
1: का जो ताल्लुक है वो धड़कन से ही है, क्योंकि वो एक दूसरे को सुनते हैं। माँ का दिल धड़कता है तो बच्चे का भी धड़क रहा है, तो बिल्कुल सुनाई देता है स्पष्ट। और जब हम ध्यान देकर हवा को देखें तो वो कितना सुरीला है। सुबह शांति से जब उठते हैं और बाहर आंगन में जाते हैं तो कितनी चिड़ियां चहचहाती हैं, सब स्वर सुनाई देते हैं, वे अपने आप में कितना सुंदर संगीतमय होता है समय।
2: हाँ, ये सब हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए संगीत दिवस सभी को रोज ही, मतलब संगीत दिवस तो हम रोज ही मना सकते हैं,
1: बिल्कुल,
2: गाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: हमेशा संगीत, जीवन को संगीतमय बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जीवन में
1: सही,
2: जीवन को नीरस नहीं बनाना चाहिए, बल्कि संगीतमय, दुख में हो, सुख में हो, कैसी भी अवस्था हो, संगीत को अपना मित्र बनाएं, अपने साथ रखें। और मैं सबको बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल हम खूब धूमधाम से मनाएंगे
1: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए।
2: आपको भी शुभकामना और शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। संगीत हृदय की भाषा है और आत्मा की ये प्रार्थना है, ये भीतर के दिव्य से बात करता है और ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होता है। जैसा कि अभी हमने बात की, धड़कनों में भी संगीत है। चलिए एक और फोन कॉल लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। हेलो,
3: शुभ नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी, स्वागत है आपका।
3: लुडोविक को भी सादर सप्रेम नमस्ते
1: जी। लुडोविक ने भी मुस्कुराकर कहा आपको नमस्ते।
3: धन्यवाद बहन जी।
1: जी
3: बहन जी, आज के विषय पे। हेलो
1: जी। जी मैं सुन रही हूँ।
3: आज के विषय पे मैं, यानी कि मैं दोनों विद्याओं पर कुछ साझा करना चाहूँ।
1: अवश्य, स्वागत है।
3: धन्यवाद। योग सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है।
1: बिल्कुल।
3: और योग संपूर्ण विश्व के लिए भारत का सर्वोच्च देन है
1: जी,
3: जहाँ से हमारे पूर्वज आए थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: क्योंकि भारत तो जगत गुरु है
1: जी,
3: रहा भी और रहेगा भी, रहा है और रहेगा भी। तो बहन जी, पर कितने लोगों की शिकायत है कि नहीं करते हैं योग जगह के अभाव के कारण।

0: मैं कहूंगा यह एक मानसिक बाधा है।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, बीबी से अनबन भी हो जाए तो यह एक समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं, जानते हो बहन जी, मैं फिल्म देखना उतना समय नहीं निकाल पाता
1: जी,
0: लेकिन जब कोई टुकड़ा देखता हूँ या कोई दृश्य देखता हूँ तो अवश्य ही कुछ नहीं कुछ प्राप्त कर ही लेता हूँ।
1: हर चीज में हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं।
0: सीखते ही हैं। देखिए, मैं फिल्मों की बात बोलते तो 420 में
1: जी
0: राज कपूर को पत्नी से झगड़ा हो गया
1: जी,
0: और गली में रात गुजारते हैं
1: जी।
0: सवेरे जागते हैं तो क्या याद आता है? योग, व्यायाम। चलो तो हम तो योग पर बात कर रहे हैं, तो वो जो योग याद आ जाती है कि उनको योग करना है। तो योग अभ्यास वाला दृश्य के दौरान राज कपूर का उद्देश्य यह जताना है कि योगाभ्यास कहीं भी किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: वे सार्वजनिक स्थान या भीगी सड़क पर रोक कर लेते हैं
1: जी, आजकल बाग में जाते हैं, कहीं भी आप आयोजन कर सकते हैं। और आयोजन
0: तो
1: नहीं,
0: यही चाहना चाहते हैं कि बहन जी, ये अपनी ये उनकी सहजता दिखाता है
1: जी। बिल्कुल।
0: और अपनी सादगी और अनुशासन को बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, कहीं भी किसी भी जगह का इस्तेमाल करते हुए वे खुले चरित्र और संतुलन को दर्शाता है।
1: बिल्कुल।
0: श्री 420 के अन्य पल यह दिखाते हैं कि इंसान को खुशी और स्वास्थ्य रहने के लिए बड़े बड़े मकान, घर या महल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुली सोच और सकारात्मक विचार सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, आपने
0: और
1: बिल्कुल
0: संगीत के संबंध में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दो शब्द कहूँ
1: जी,
0: क्योंकि मुझे संगीत बहुत पसंद है और मैं पुराने गाने पसंद करता हूँ
1: जी,
0: या आधुनिक भी, लेकिन ज्यादातर पुराने और
1: जी,
0: मैं
1: बिल्कुल
0: भजन कीर्तन करता हूँ
1: जी। तो भजन करें, कीर्तन करें, श्लोक भी पढ़ें, तो वह सब संगीतमय है।
0: संगीतमय, जानते हो बहन जी, मैं कहूंगा भी बोलने वाला था, ये संगीत जो है
1: जी,
0: ये ईश्वर प्राप्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है।
1: बिल्कुल।
0: तो संगीत मिठास से भरा है बहन,
1: बहुत
0: मिठास है उसमें। संगीत मधुरता से परिपूर्ण है, जो भी शब्द सुने वो तो संगीत ही है। ओम का की ध्वनि हमारे कानों में
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: संगीत अमृत से भरपूर है। संगीत और योग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ही दिन पर पड़ता है, एक ही दिन मनाया जाता है, यह सुसंगत है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा। संगीत योग मैं कहूंगा का यह एक हिस्सा समझता हूँ, और मैं संगीत योग भी ध्यान भी कहता हूँ, मतलब कि कीर्तन ध्यान।
1: जब आप श्वास भी लेते हैं तो एक संगीत में होता है, धड़कन, दिल धड़कता है, श्वास लेते हैं तो वो भी अगर ध्यान से करें, एकाग्रता से करें, तो संगीतमय है,
0: दिल छू लेता है बहन जी।
1: बिल्कुल।
0: और कहूंगा अंत में, भजन कीर्तन कलयुगी में ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज साधन एवं साधना है।
1: बिल्कुल।
0: धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत बहुत आभार, आपको भी शुभ संध्या। एक फोन और लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी।
2: मैं वीना बोल रही हूँ।
1: वीना जी, आपका स्वागत है।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
2: संगीत दिवस के अवसर पर सभी को संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सभी सुनने और मिसी की टीम को, सभी को
1: जी,
2: जितने हमारे म्यूजिशियन भाई बहन है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो संगीत पर ये मैं बोलना चाहूँगी कि संगीत कई हमारे जीवन में एक अधूरा हो जाता है ना, कैसे हम जीवन में अकेले रह जाते हैं, तो संगीत ही हमें संभालता है।
1: जी बहुत अच्छा कहा आपने, संगीत संभाल लेते।

0: करते हैं,
1: अधूरा हो जाता है,
0: बिल्कुल अकेलापन दूर करता है,
1: जल भी मछली हो जाती हूँ
0: अकेलापन दूर कर देता है हमारा रेडियो, हमारा टेलीविजन, हम लोगों को अकेले कहाँ छोड़ता है, वे हमारे साथ होता है जी।
1: तो यही मैं कहूँगी। और एक छोटा सा एक फंक्शन था जहाँ लता मंगेशकर जी गए थे, बहुत दिनों के बाद की बात मैं बोल रही हूँ
0: जी।
1: तो वहाँ सभी कलाकार गायक थे, तो वहाँ एक फंक्शन चल रहा था, तो सभी लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर जी भी थे, तो जो भी मांगना है, जो भी मैं खाना है पीना है, तो वो लोग बोलते हैं संगीत में बोलो।
0: जी
1: याद है,
0: सुना हुआ है जी।
1: बहुत दिन की बात बोल रही हूँ
0: जी।
1: तो मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: अच्छा,
1: वो कहते हैं लता मंगेशकर को, आप जो भी मांगना है, खाना है पीना है, वो संगीत में ही बोलो।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं बोलना चाहती कि कितना महत्व है हमारे जीवन में, संगीत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और एक जोड़ना चाहती गाना
0: जी,
1: गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल, हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल। धन्यवाद बहन जी,
0: बहुत बहुत आभार
1: आपको
0: आपको,
1: शुभ संध्या कहूंगी,
0: शुभ संध्या आपको भी,
1: आपको भी आप संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी। चलिए हम चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम आते हैं योग दिवस पर। योग की बात करें तो पहले जब आज हमारे पाठ्यक्रम में भी संगीत, जैसे विद्यालयों में संगीत सिखाया जाता है, उसी प्रकार योग भी सिखाया जाता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पहले ये विचार आता था, पर आज पाठ्यक्रम से हटकर खेलने कूदने पर और संगीत सीखने पर, नृत्य सीखने पर हमारी प्रावधान है विद्यालयों में, और हमारी सरकार इस पर कितना पैसा लगाती है ताकि हमारे छात्र, हमारे बच्चे शिक्षित हो पाएं संगीत में भी, योग में भी, और ऐसे विचारों के साथ। एक फ़ोन कॉल लेते हैं, फिर बात को जारी रखते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते बहना।
0: नमस्ते बहना जी, कैसी हैं?
2: सभी को अच्छी हूँ मैं, सभी को, मैं इंदिरा मेबैक से, मैं सभी छात्र छात्रियों को, सभी जिनको बुद्धि ज्ञान है
0: जी,
2: उसको मेरा प्रणाम नमस्कार करती हूँ
0: जी।
2: उसको भगवान सरस्वती माता उत्तम ज्ञान दे और सभी मनुष्यों को बहुत सी ज्ञान प्रवेश करे
0: जी।
2: मैं एक भजन गाऊंगी।
0: अवश्य, स्वागत है।
2: या देवी सर्वभूति सुबुद्धि रूपेण संकीतां नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हमारे आने वाले पीढ़ी को, सभी को ढेर सारा ज्ञान देना सरस्वती माता। ज्ञान ही तो हमें
0: सही दिशा दिखाता है।
2: हाँ
0: बिल्कुल,
2: और गाना भी गाऊंगी आपके लिए और सभी एमबीसी टीम वाले के म्यूजिक।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, एक गाना गाऊंगी
0: जी। स्वागत है।
2: नी चले चल मेरी जी।

0: बहुत सुंदर,
1: शुभ संध्या बहन,
0: आपको भी बहुत बहुत आभार। चलिए हम चर्चा को जारी रखते हैं। केवल शिक्षा ही व्यक्ति को सफलता या प्रतिष्ठा सम्मान दिला सकती है, ऐसी हमारी सोच थी पहले, पर आज सभी नृत्य संगीत सबको ध्यान में रखते हैं तो आज हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं होती है बिना संगीत के या बिना योग के या बिना नृत्य के। चलिए हम एक फोन कॉल और लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार अंजू जी।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ अंजू जी।
0: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी संगीत दिवस,
0: जी
1: संगीत दिवस है, संगीत दिवस है, मन में उमंगे हैं, चेहरे पर खुशियाँ, बात

0: वरण में संगीत गूंज रहा है
1: जी।
0: संगीत दिवस है, संगीत दिवस है। संगीत की कोई दीवार नहीं, संगीत की कोई जाति नहीं, संगीत में कोई भेद नहीं, संगीत का कोई शत्रु नहीं। संगीत दिवस, संगीत दिवस है। हर उम्र के लिए संगीत है, हर प्राणी के लिए संगीत है, हर समय के लिए संगीत है, हर धर्म के लिए संगीत है। संगीत दिवस, संगीत दिवस है। और एक दो लाइन मैं गाकर सुनाऊंगी आपको।
1: जी
0: जी। एक

हैं एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, वो नदी का किनारा जिसमें बचपन गुजारा, वो लड़कपन दीवाना रोज पंघट पर जाना, हाय रे बदनसीबी जिसका नाम था गरीबी, छोड़ कर गांव को

0: बहुत सुंदर गीत है, पर अपने
1: जी
0: आप को भीड़ में खोने ना दें, अपना अस्तित्व बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीत दिवस और योग दिवस के लिए आपको। एक फोन कॉल और है, हम लेते हैं। हेलो,
1: हाँ बहन जी,
0: नमस्कार,
1: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम?
1: मैं हूँ श्यामा रघुनंदन गांवगोप से।
0: जी श्यामा जी, कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ बहन जी, आप लोगों की दया दुआ से,
0: ईश्वर की दया है, हम
1: ईश्वर
0: कौन
1: की
0: होते
1: कृपा
0: हैं
1: से।
0: दया वाले? ईश्वर की दया
1: हाँ
0: है जी, कृपा ईश्वर
1: तो
0: की है।
1: नहीं, सभी की कृपा है बहन जी मुझ पर। हाँ, अड़ोसिन पड़ोसिन, कैसे कहते हैं, दोस्त सखियों, सभी की कृपा है मुझ पर। हाँ,
0: जी
1: तो मैं ये कहूँगी बहन जी, संगीत दिवस सबके लिए मंगलमय हो, शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपकी
1: हाँ
0: शुभकामनाओं के लिए। और कोई
1: बहन जी,
0: विचार देना चाहेंगी
1: हाँ
0: संगीत
1: हाँ बहन
0: दिवस
1: जी,
0: पर?
1: मैं यूं ही मैं दे रही हूँ,
0: जी
1: तो मैं शुरुआत ऐसे करती हूँ। है

0: तो मैं कहूंगी बहन जी, सुरों की देवी, ज्ञान की देवी, सरस्वती माँ को लाख लाख प्रणाम, जो हमारे कंठ में विराजमान है
1: जी।
0: हाँ, सारा संसार संगीतमय है बहन जी।
1: बस उसी से निवेदन है कि हमें शिक्षा दें, अपने ज्ञान दें, बुद्धि दें, ताकि हम अपने मार्ग पर सही दिशा अपना सकें, सही दिशाओं के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें। ऐसा आशीर्वाद
0: चलते जाएंगे बहन जी,
1: बिल्कुल ऐसा आशीर्वाद रहे।
0: यूं ही पानी के बुलबुले से लेकर कांच के टुकड़े तक बहन जी,
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ, पायल की झनकार से लेकर चूड़ियों की खनक तक,
1: बहुत सुंदर,
0: हाँ, सात स्वरों से लेकर सरगम तक बहन जी,
1: जी।
0: नदी की कलकल से लेकर गंगा की लहर लहर तक
1: जी,
0: सारी प्रकृति संगीतमय है बहन जी।
1: जी
0: हाँ, भंवरों की गुंजार से लेकर पंचों के पंचम स्वरों तक संगीत ही संगीत है बहन जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रेडियो आपके पास है, वो वॉइस एको हो रही है।
0: जो मेरे पास नहीं है, वो किचन में है।
1: वो वॉइस एको हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। श्रोताओं, जब हम बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि पढ़ाई ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। एक फोन कॉल है, हम लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हेलो,
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
2: हम कमला है, मोहतबा से।
1: जी कमला जी, स्वागत है आपका।
2: हाँ, अधीर है तरीके संजूरी से प्रोग्राम करते हुआ। अभी हम अंधी के काली माई के वृक्षाम रमा से अयन सा ले हुए अयन सा, तो अब हम तो होने रास्ता देखे थे या तो सुने थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, कल हमारी काली माई ने पूजा है
1: जी।
2: हाँ, संगीत दिवस पर बात करते हुआ, योगा दिवस पर
1: जी,
2: तो सब कोई के बताए हैप्पी योगा डे, हैप्पी म्यूजिक डे
1: जी, धन्यवाद।
2: गीत देख बताब, आप सब गीत अच्छा अच्छा गीत बा है, गीत बाबा ना, गीत मेरे होंठों को दे गया कोई
1: जी,
2: प्यार का मुस्कुराता जहां दे गया कोई, गीत में मैं सुनबा था मन कितना बुझला पिघलेला, गीत सुन सुन के
1: बिल्कुल,
2: हर एगो गीत में, हर एगो गीत में
1: एक बहुत सुंदर संदेश होता है।
2: हाँ, अभी देखा तो है ना, हर एगो गीत में एगो संदेश,
1: बिल्कुल,
2: हर एगो गीत में एगो दुख के, सुख के, खुशी के, हर एगो मौके के, हर एगो गीत बा, हर एगो ओकर शब्द के मीनिंग बा।
1: बिल्कुल,
2: अभी देखा तो है ना, हमी के पुराना जमाना के रेडियो वापस आवता, आगे के लिए पोके हाचो फिर वापस चलल आवता। और हम श्रद्धांजलि लता जी को, हमी के पुराने जमाने के महान गायिका रहन, सुमन कल्याणपुर भी उहु एगो अच्छा गायिका रहन, हम उनकर गीत तो हमेशा रेडियो ओंसे ओंसे अथी लोग है, अभिनेत्री लोग गाने में लिप सिंक कर रहे हैं, अच्छा लगेगा वो लोग के सुने के। क्या बोला तो से है, ये बोला था हैप्पी योगा डे, हैप्पी दिवस डे दीदी, सबके नमस्ते प्रणाम।
1: नमस्कार, प्रणाम आपको भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं योग दिवस के लिए, संगीत दिवस के लिए,
2: आपको भी, आपको भी शुभकामनाएं,
1: आभार। एक और फोन कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो,
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार बहन जी,
1: आपका शुभ नाम?
3: हमारा नाम है तारा।
1: तारा जी, स्वागत है आपका।
3: हम बहुत सुनते हैं, बहुत खुश हैं, वो गीत बात करते हैं तो
1: जी
3: बहुत मन में धस जाते हैं।
1: जी
3: हाँ,
1: संगीत है, संगीत ही ऐसा है, संगीतमय
3: हाँ,
1: हुए हुए सब लोग, ये बहुत अच्छी हाँ, बात है।
3: हाँ, बहुत बहुत सब में तो संगीत रहते हैं ना,
1: बिल्कुल।
3: हाँ, कुछ हुआ तो संगीत पहला है,
1: बिल्कुल,
3: एक टुकड़ा गीत हम गाते हैं
1: अवश्य, स्वागत है।

0: बहुत सुंदर, कभी भी घबराना नहीं है, हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आज हमारा समाज, हम आप और आप ये भली भांति समझ चुके हैं कि शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना न केवल प्रसन्नता और सफलता है, बल्कि एक दीर्घायु और संतुलित जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। योग वस्तुतः इसी संतुलन को प्राप्त करने की कला सिखाता है और व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता के विकास में सहायता करता है। एक फोन कॉल है, लुदविक हमें बता रहे हैं। चलिए, हम विचार और भी बहुत सारे साझा करेंगे, पहले हम फोन कॉल लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते जी, जागेसर जी बोल रहे हैं।
1: नमस्कार और सभी को संगीत और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना।
0: जी जागेसर जी, स्वागत है आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।
1: तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं भी सुना दूंगा।
0: अवश्य।
1: हाँ, संगीत के गीत के माध्यम से लोग अपने अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं।
0: जी,
1: कभी दुख में कभी सुख में,
0: सभी संवेदनाएं प्रकट करने की एक प्रक्रिया है संगीत
1: में।
0: मन
1: की जो भावना है, बातें मानी जाए की रखते हैं समाज में।
0: जी,
1: तो अब जो मैं टुकड़ा सुनाने जा रहा हूँ उस प्रकार है
0: जी।

0: क्या क्या हमने सोचा था, रह गया बन के सपना, जाने अनजाने आस निराश के दो राहों पर दिल तो हमारा टूटा। इस किस्मत ने धीरे धीरे अपना सब कुछ लूटा, भीग चुकी हैं ये पलकें, भूल गए हम हंसना। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न
1: कोई नहीं।
0: अपना। जाने अनजाने।
1: बहुत
0: धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत सुंदर
0: आपने मुझे
1: संदेश
0: मौका दिया।
1: जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद। चलिए, योग दिवस 2026 जो हम मनाने जा रहे हैं कल, स्वस्थ आयु के लिए योग, ये इस वर्ष की थीम है योग दिवस के लिए। और ऐसे हम मानते हैं कि योग से हमारा समाज में हम या आप जो भी संतुलित जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। योग वस्तुतः इसी संतुलन को प्राप्त करने की कला सिखाता है और व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता के विकास में सहायता करता है। श्रोताओं, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक, जिसमें जटिल श्वास प्रणाली और शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता है होती है। सच में ये वे गहन विज्ञान के सबसे बुनियादी पहलू हैं जो मानव मन की असीमता और आत्मा की क्षमता को प्रकट करते हैं। वे श्वास तकनीकों का उपयोग करते हुए अभ्यास करते हैं, विशेष योग आसन या मुद्राओं में कुशल बनने में मदद करके मन, शरीर और आत्मा के स्वस्थ विकास का समर्थन करता है। प्राणायाम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी अन्य से पहले अभ्यास किया जाने वाला सबसे मौलिक प्रकार का योग है। ये हमें सिखाता है कैसे हमारी सांस पर नियंत्रण कर हमारे शरीर के लिए चमत्कार कर सकता है। एक और फोन कॉल लेते हैं, फिर बातचीत जारी रहेगी। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार बहन जी,
1: आपका शुभ नाम?
2: जी मैं देवी हूँ।
1: जी देवी जी, आपके गले में कुछ अटका हुआ है।
2: एक लाइन, हाँ गला ठीक नहीं। एक लाइन गाऊंगी
1: अवश्य।
2: गीत है ये जिंदगी, गीत है ये जिंदगी, गुनगुनाते और गाते चले चलो, चले चलो। बहन जी मैं तो बचपन से संगीत से प्यार करती हूँ
1: जी।
2: बचपन से मुझे याद है, बचपन में मैं अभी तक मैं रेडियो सुनती हूँ, तो मैं रेडियो के साथ साथ गुनगुनाती थी। तो इतने में मेरे बाबूजी आए, ओके रेडियो बंद कर दो, तुम ही गा लो।
1: जी
2: वो नाराज होते थे, रेडियो जोर से गाते। अब तक मैं गाती हूँ, वैसे ही गाती रहती हूँ।
1: बहुत अच्छा करती हैं।
2: योगा योगा और कैसे कहते हैं संगीत को, दोनों को बराबर महत्व देती हूँ, दोनों को अपनाती हूँ मैं।
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, शुभकामनाएं। चलिए एक और फोन कॉल लेते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी। हेलो।
3: हाँ बेटी।
1: नमस्ते नानी, कैसा नवा?
3: अच्छा है बेटी, तोहर तोहर कृपा से अच्छा है।
1: हमार कृपा नहीं है, ईश्वर के कृपा है।
3: हाँ
1: भगवान सब करेला ना।
3: नहीं बतियाई बात, ऐसा कृपा कहाँ मिली, ऐसा सत्संग कहाँ मिली।
1: जी बोला आज का
3: सत्संग के भाव है।
1: आज सत्संग में क्या जोड़ा था तू?
3: सकल पदारत यही जगह माही
1: जी,
3: कर्म हीन नर पावत नहीं।
1: बिल्कुल
3: सब कुछ बा, हम निपावे नहीं जाने राजा
1: जी।
3: हाँ बहुत चीज बा, बहुत कुछ बा, एगो लाइन बोले तो है
1: बोला बोला बोला स्वागत बा
3: जब सचे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी जब सचे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी सूरज न मिले चंदा न मिले तारों से मिलेंगे कभी न कभी जब सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी गंगा न मिले जमुना न मिले सरस्वती से मिलेंगे कभी न कभी जब सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी मंदिर न मिले मस्जिद न मिले गुरुबानी से मिलेंगे कभी न कभी गुरुबानी से मिलेंगे कभी न कभी जब सच्चे मन से लगन लगे भगवान मिलेंगे कभी न कभी
1: बहुत सुंदर
3: बहुत सुंदर
1: जीवन में बहुत अच्छा संदेश दे दिला और देखा कितना सुंदर सुर लगाईला कातमे ला म्यूजिक नहीं बा तोन पर तोहर सुर इतना अच्छा बा कितना जोली से संदेश देला सबके ईश्वर सबके लिए है भगवान मिलेंगे कभी ना कभी सच्ची लगन होनी चाहिए बस धन्यवाद अब हम एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं क्योंकि लुडोविक की पसंद का एक गीत हमारे साथ हम एक साथ सुनते हैं
4: हंसो मत बोलो

0: गीत बहुत सुंदर है पर श्रोता बहुत हमारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम फोन कॉल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही मैंने कहा ना, गीत सुंदर है पर श्रोता महत्वपूर्ण है हमारे साथ। चलिए, आज क्या सुनाएंगी हमारी आशा जी?
1: तो सबसे पहले मैं आपको साहित्य दर्पण के समस्त संगीत प्रेमियों को, सभी को संगीत दिवस एवं योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अर्पण करती हूँ।
0: आपको भी।
1: और अपने लिखे हुए एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
0: स्वागत है।
1: संगीत है जीवन का आधार, संगीत से चलता है संसार। संगीत की ना कोई शब्द ना कोई भाषा, संगीत जगाती है नई आशा। संगीत में सात सुरों का संगम, गीत माधुर्य से बने सरगम। संगीत ने पिरोई स्वरों की माला, ताल से ताल मिले मिलाए निराला। माँ शारदे की वीणा की तार, बांसुरी बजाए कृष्ण मुरार। संगीत है सृष्टि के तन तन में, पंछी के मीठे गुंजन में। ज्ञान बनाती है जिंदगी के रास्ते, संगीत जरूरी है आत्मा के वास्ते। जिंदगी के जंग को जाती है जीत, जिंदगी के जंग को जाती है जीत। जीवन का सच्चा मीठ है संगीत, जीवन का सच्चा मीठ है संगीत। मास्टर ग्यास बहन जी, और मैं भी यही एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि कोई नहीं कह सकता है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, क्योंकि संगीत वो साथी है जो हर क्षण साथ देता है। उदासी हो, खुशियाँ हो, या कोई भी अवसर हो, संगीत वो उसमें वो जादू है जो हमें जीना भी सिखा देता है।
0: बहुत सुंदर। और गीत संगीत में जो संदेश मिलते हैं वे कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हमारा जीवन की काया पलट कर देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। चलिए, आज हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राचीन भारत योग पद्धति का जिक्र मिलता है। भारत वह देश है जहां योग ने सबसे पहले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में लोकप्रियता हासिल की थी। यह योज से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है एकजुट होना, और महर्षि पतंजलि को योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सभी श्रोता जानते हैं, पर थोड़ी सी जानकारी हम साझा करते हैं। योग के महत्व और फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा सहित 170 से भी अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस उत्सव में योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योग प्रशिक्षण शिविर, योग प्रतियोगिताओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों का आयोजन स्कूल और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा। इस बार आपने समाचारों में जाना होगा कि रेजवी में स्टेट हाउस में पहली बार के लिए योग का प्रचार करने हेतु वहाँ पर भी योग की क्लास चली,

0: सबने अपना अपना योग का प्रदर्शन किया, आसनों का प्रदर्शन के साथ साथ प्राणायाम का भी वहाँ पर एक सत्र चला था। एक फोन कॉल और लेते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी। हेलो, कट गया फोन, चलिए बातचीत को जारी रखते हैं। तो पूरे मॉरिशियस में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत से योगा सेंटर्स हैं, सभी ने अपने अपनी क्षमता और अपने अपने रूप में योग दिवस एक महीने से मनाया जा रहा है। जून, जैसे ही पहली जून शुरू हुआ, यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग संस्थाओं में योग का प्रदर्शन और योग प्रक्रिया पर विचार चिंतन सभी ने साझा किए। एक और फ़ोन कॉल है, हम लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: मेरे नाम संगीता है, मैं मोडाल रिब्बे से बोल रही हूँ।
0: संगीता जी, संगीत दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत, मैं संगीत बहुत पसंद करती हूँ।
0: आपका नाम ही संगीता है।
1: संगीता है
0: जी,
1: मेरा पिताजी प्यार से मेरा नाम संगीता रखा है।
0: सभी के माता पिता बहुत प्यार से अपने बच्चों का नाम रखते हैं। हाँ, जी हाँ, स्वागत है आपका।
1: हाँ, बहुत पसंद करती हूँ ये गाना, नाच, डांसिंग, ये सब कुछ रहती हूँ
0: जी,
1: अच्छा लगता है। अभी देखते हैं बहन जी, बच्चे लोग कितने स्कूल में सब तैयार कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम लोग का हम सभी जैसे बिस्तर उठती तो हमारे रेडियो गाना सब बहुत नहीं तो घर सुन सपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है
0: जी। इसीलिए मैंने कहा ना कि कहीं भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संगीत और गीत आपके साथ जुड़ते हैं, आप कभी भी अकेले नहीं रहते हैं।
1: अकेली ही रहती है, लेकिन ये हमारे साथ हैं,
0: साथी हैं।
1: म्यूजिक गाने सब गाते रहती, दिन रामायण पढ़ती
0: जी,
1: गवाही में जाती है थोड़ा
0: जी जी। हाँ, तो वो भी एक धरोहर है।
1: एक छोटा सा गाना
0: जी, अवश्य स्वागत है।
1: नहीं चाहिए रंग महल ना धनदौलत की शाम, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोषी का दान।

0: मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान।
1: बहुत सुंदर, बिल्कुल ईश्वर से
0: धन्यवाद।
1: आज संतोष की सबको आवश्यकता है, शांति की सबको आवश्यकता है, और योग दिवस से हम ये चिंतन करते हैं कि सभी के जीवन में संतोष रहे, शांति रहे। चलिए बातचीत, ये आखिरी फ़ोन कॉल था, इसके बाद कार्यक्रम अंत की ओर जा रहा है। चलिए, शरीर को सक्रिय रखता है योग, और साथ ही हमारे हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत और रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने की हमारी क्षमता में सुधार होता है। इन सब में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग की भूमिका को आज के संदर्भ में नकारा नहीं जा सकता है। योग के लाभ के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस हम मना रहे हैं। यहाँ योग दिवस के विभिन्न शब्दों में हर वर्ष एक नई थीम है, पर अंत में विचार यही है कि हम सबको योगाभ्यास आवश्यक है। ये भारतीय परंपरा ज्ञान और की भारतीय परंपरा की ज्ञान के निर्माता जो पतंजलि हैं, उन्होंने वर्षों पूर्व ये जान लिया था कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी की जागरूकता हेतु हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। कार्यक्रम अंत की ओर जा रहा है, रोशन जी आ चुके हैं कार्यक्रम के लिए, लुदविक हमारे सहयोग दे रहे हैं, आप सब ने भाग लिया इस कार्यक्रम में, इतने सारे श्रोताओं ने अपने विचार साझा किए, अपने अपने गीत सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। लुदविक को भी आभार देंगे क्योंकि कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने और आपकी फ़ोन कॉल के लिए आपके साथ निभाने के लिए लुदविक का भी सहारा लिया हमने, और आप सब ने योग पर विचार दिए, संगीत दिवस पर विचार दिए। हम उम्मीद करते हैं कि कल 21 जून को सब मिलकर संगीत दिवस और योग दिवस मनाएं, उस पर चिंतन अवश्य करें कि क्यों संगीत हमारे जीवन में आवश्यक है और क्यों योग हमारे लिए आवश्यक है। आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, चाहे वह रेडियो है, टीवी है, और साथ ही साथ मोबाइल पर जो न्यूज़ आपको मिल रही है, जो आपके लैपटॉप पर न्यूज़ 24 घंटे आप जुड़े हुए हैं मोबाइल से, सब कुछ देखने को मिल रहा है, पर हमें अपने जीवन में योग को उतारना है। योगाभ्यास हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये जानकारी बहुत आवश्यक है कि योग हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि हम योग से स्वस्थ रह सकते हैं, शांतिमय रह सकते हैं, और दूसरों के लिए भी अच्छे बन सकते हैं, अपने आप के जीवन को भी सुधार सकते हैं। चलिए, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं योग दिवस और संगीत दिवस की। आज के लिए इतना ही, शुभ संध्या।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: अच्छा ज्ञान से होवे सबका कल्याण। शाम के 5 बजे हैं।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

0: नमस्कार और आदाब प्यारे देवी और सज्जनों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है आपका दोस्तों। इस मन भावन शनिवार में थोड़े से खेल, थोड़े से जोश, थोड़ी सी दिमागी कसरत, आपका मन सचमुच खिल जाएगा। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप श्रोताओं की ओर से आई है कि एक शनिवार की शाम बिना खेल खिलाड़ी प्रोग्राम के व्यर्थ गुजर जाता है। ये जो शाम है सचमुच बहुत ही रंगीन हो जाती होगी अगर आप लोग भाग लेते हैं तो। अब हम बढ़ते हैं विषय की ओर। संगीत है पावन, संगीत ही है जीवन। जी हाँ, जितनी तालियां संगीत के लिए बजेंगी उतने ही कम होगी। साथियों, कल रविवार 21 जून है और पूरे विश्व भर में योग दिवस के साथ साथ संगीत दिवस भी मनाया जा रहा है। संगीत जो सृष्टि के आरंभ से ही वातावरण में छाया हुआ है, संगीत तो हमारे लिए प्रार्थना, वंदना, उपासना है। इसीलिए संगीत है पावन। संगीत के बिना तो सब कुछ अधूरा है, जीवन निरर्थक है, इसीलिए संगीत है जीवन। चलिए ऐसे गाने हम चलाएंगे जिनमें संगीत से जुड़े हुए कुछ शब्द है। बेशक अपने प्रश्नों के साथ हम गानों को चलाएंगे। आप बेफिक्र रहें और पहला गाना आप जरा सुनिएगा।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: जी हाँ, पहला गाना बड़े ही प्रेम से आपके लिए चलाया जा रहा है। संगीत शब्द पर आधारित है ये गाना। कृपया आप लोग सोच के जवाब दें कि हमारी हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में तीन विशेषताएं हैं, जिनमें से दो हैं गायन और नृत्य। तीसरी विशेषता है क्या? जी हाँ, गायन नृत्य के अलावा एक और विशेषता है हमारे हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली का की, और वो कौन सी विशेषता है? छोटा सा संकेत हम आपको दे देते हैं। जो शब्द हम आपसे ढूंढ रहे हैं वो शुरू होता है व से। अब तो आसान हो जाएगा। 402-808-5 पर प्लीज़ आप लोग जवाब दें।

संगीत न जाने रीत संगीत से अगर है प्रीत तो समझो मेरे मीत आपकी हो गई है जीत। सभी लोग संगीत के शौकीन हैं और सभी लोग गीत भी बेहद पसंद करते हैं। जी हाँ, संगीत से बहुत ही उत्तम भावनाएं उत्पन्न होती है मन में। हमने आपसे सवाल किया था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में तीन प्रकार की विशेषताएं हैं। एक है गायन यानी सिंगिंग, दूसरी विशेषता है नृत्य यानी डांसिंग, और तीसरी विशेषता क्या है, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।

0: इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य। और सही जवाब दिया नवीन भाई फ्रॉम रोजबेल हाइलैंड्स से, देवी जी, इंदिरा जी फ्रॉम ओदालबेयर, धनेश्वर जी फ्रॉम दवेल, सुदेवी जी फ्रॉम मोका। चलिए दूसरा गाना एक एल्बम से लिया गया है, 1994 में रिलीज हुई एल्बम जिसका नाम है किस्मत। साधना सरगम जी की आवाज में जीवन तो एक सरगम है, बिल्कुल गायिका की तो मधुर आवाज है ही, ऊपर से उनका नाम बहुत ही बढ़िया, उनका नाम में ये शब्द आता है सरगम, संगीत से जुड़ा हुआ एक प्रभावशाली शब्द सरगम। सरगम संगीत के सात सुरों का है संगम, बिल्कुल आप तो जानते हैं। और सात सुर तो है सारे ग म प ध नि सा, और इन सात सुरों में दो स्वर जो है सा और प, ये अचल है, ये शुद्ध है, ये केवल अपने स्थान पर रहते हैं, और बाकी जो स्वर है यानी रे ग म ध नी, और ये पांच स्वर जो है ये चल स्वर है, ये अपनी जगह से या तो नीचे जाती हैं या तो ऊपर जाते हैं। तो आप नंबर मिला ये 4028085 पर आप नंबर मिला कर हमारे लिए केवल सारे ग म प ध नि सा कीजिए। मैं तो अभी बोल रहा हूं लेकिन आपको सा रे ग म प ध नि सा, मध्य सप्तक से लेकर तार सप्तक तक ये आपको रटना है, और वो भी हर स्वर अच्छी तरह से आपको गाना है। 4028085 पर म्यूजिक डे के अवसर पर, संगीत दिवस के अवसर पर एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न, सारे ग म प ध नि सा, ये सात स्वर नहीं आठ स्वर हो गए, इनको आपको गाकर हमें सुनाना है 4028085। तब तक ये गाना साधना सरगम की आवाज में।
1: 819 kHz, 19 kHz, this is Radio Mauritius।

0: जी हाँ, गाए जा तू सदा। जीवन तो एक सरगम है और सरगम सात सुरों का है संगम। सारे गम पध निसा, ये तो मैं आपको केवल बातें करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर गाकर हमें सुनाना है। चलिए हम देखते हैं कितने लाइंस पर हैं। आप फिर से लाइन लगा सकते हैं, हम एक के बाद एक श्रोता को लेंगे, देखेंगे कि वो सही तरीके से सारे गम पध निसा कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए हम देखते हैं पहले श्रोता का नाम। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी, मैं कटे से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: आशा जानू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं जी, और आपको कहेंगे संगीत दिवस अभिनंदन हो।
1: आपको भी और पूरे एमबीसी टीम को और समस्त संगीत प्रेमियों को संगीत दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी म्यूजिक डे।
0: हैप्पी म्यूजिक डे टू यू टू। और हमने तो शुरुआत में ही, इस महीने की शुरुआत में ही कह दिया था कि जून महीने तो संगीत मास है।
1: जी, और वैसे मेरे लिए तो, हम यहाँ की सभी के लिए तो संगीत दिवस रोज ही होता है।
0: रोज ही होता है,
1: स्पेशल डे है जहाँ संगीत के लिए अपना सब कुछ भुला कर बस गाना नाचना बजाना चाहिए।
0: क्या बात है, गाना नाचना और बजाना, यही तो है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग एंड डांसिंग। वाह, तो चलिए हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि सारे गामा पधनिसा कैसे गा, क्या हमें आप सुनाएंगी? गाइए।

0: क्या बात है, आपने तो, मैंने तो कहा केवल आरोह करने को, आप तो आरोह और अवरोह दोनों कर लिया आपने। बहुत ही बढ़िया आशा जी, ऐसे ही आप गाती रहें और सीखती रहें ऐसे ही।
1: थैंक यू, शुभ संध्या आपको,
0: शुभ संध्या आपको भी, देखें हैप्पी म्यूजिक डे। दूसरी लाइन पर देखना चाहेंगे कि कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्ते दर्शन जी।
0: नमस्ते, ये तो अनीता जी हैं फ्रॉम मोडलबेया।
2: मोडलबेया जी हाँ।
0: बताइए अनीता जी, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ।
0: होश तो बहुत हो गई आप। हाँ जी, और हम ना और हम आपसे कहेंगे खुश तो बहुत हो गई आप, कल संगीत दिवस है। हाँ जी, अच्छा बताइए, आप हमें गा के सुनाइए सारे गमा पधनी सा, सरगम नोट्स हैं, कैसे इसे हम गाते हैं, गाइए।
2: हाँ,

क्या बात है, सारे ग म प सारे ग रे ग म रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, है ना, ये अलंकार है। तो आपके लिए तालियों की गूंज। बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो अनीता जी और आशा जी ने बहुत अच्छी तरह से आरोह सारे ग म प ध नि सा और अवरोह सा नि ध प म ग रे सा, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया है और दोनों को बहुत ही बधाई हो।

चलिए तीसरा गाना चलाने का समय आ ही गया है। टिचोर फिल्म से लिया गया बेहद प्यारा सा गाना आपके लिए, शब्द सुर पर आधारित। कभी हम कहते हैं कि सुर में गाओ ना, कितना बेसुरा गा रहा है।

0: आवाज है। सभी तो सुरों का खेल है, जिन्हें स्वर या सुर की पहचान है वही उन्हें ही पता है कोई गायक अच्छा गा रहा है या नहीं। चलिए एक अलग सा प्रश्न आप लोगों के लिए विशेष संगीत दिवस के अवसर पर एक टोंग ट्विस्टर हो जाए। हाँ, देखते हैं जल्दी जल्दी आप ऑन ए आपको जवाब देने का मौका देंगे हम। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए सुर स्वर सरगम, पांच बार आप जल्दी जल्दी कहिए सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, और आपको ठीक तरह से प्रोनाउंस करना है, उच्चारण ठीक होनी चाहिए। जल्दी जल्दी नंबर मिलाइए 4028085 और इस चैलेंज को आप स्वीकार करें सुर स्वर सरगम। तब तक चिच्चोर का ये गाना क्यों हम न चलाएं, कहिए तो।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो देखते हैं सुर से सुर मिलाने आया है कौन ऑन एयर। हेलो हेलो
1: हेलो जी,
0: नमस्ते, ये तो अभिषेक भाई हैं फ्रॉम सैपिया।
1: जी
0: कैसे हैं अभिषेक भाई?
1: हम ठीक हैं।
0: अच्छा जी, बिल्कुल, आप तो बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं, लेकिन
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखते हैं अभी आप इस टोंग ट्विस्टर को आजमा पाएंगे या नहीं। सुर स्वर
1: हाँ।
0: सरगम, जल्दी जल्दी 5 बार।
1: सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम।
0: आपने तो 6 बार कह दिया और आपको कहेंगे बहुत ही बधाई हो, धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद, और हम जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं को और आपको भी, हैप्पी म्यूजिक डे।
0: हैप्पी म्यूजिक डे टू यू टू। चलिए देखते हैं दूसरी लाइन पर है कौन। हेलो हेलो,
2: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते शोभा जी फ्रॉम बाकवा, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं शोभा जी, और आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद, संगीत दिवस के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद,
2: और एमबीसी के सभी टीम को भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को संगीत दिवस अभिनंदन हो।
2: धन्यवाद।
0: चलिए शोभा जी, आप तैयार हैं?
2: हाँ तैयार है।
0: के सुर स्वर सरगम कहिए।
2: सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम, सुर स्वर सरगम।
0: अच्छा, क्या कहें, 100/100 दें आपको? बहुत ही बधाई हो आपको, और आपकी भी जीत हो गई अभिषेक भाई की तरह।
2: धन्यवाद
0: आपको, शुभ संध्या आपको भी। बाय
2: बाय
0: बाय। बहुत ही आसान सा टोंग ट्विस्टर था, केवल 3 शब्द सुर स्वर और सरगम, और तीनों जो शब्द है म्यूजिक से जुड़े हुए थे। चलिए अगले गाने में ताल का वर्णन किया गया है। गीत अगर ताल में गाया जाए तो बहुत ही अच्छा, सचमुच कानों को बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। और बॉलीवुड में तो ज़्यादातर जो गाने होते हैं वो कहरवा ताल, बिल्कुल कहरवा ताल से जुड़े हुए हैं, जिसमें आठ मात्रा है जी, धागे न

0: तिनक अधिना, बिल्कुल आठ मात्रा। इसीलिए सभी के सभी जो ज्यादातर गाने हैं वो कहरवा ताल पर आधारित है। आप हमें बताइए कि चंद ऐसे गाने भी हैं बॉलीवुड में, जैसे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जैसे मेरे नैना सावन भादो, ये सब जो गाना है ये दादरा ताल पर आधारित है। जी हाँ, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन दादरा ताल? 402-8085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

जी हाँ, ताल से ताल मिला ताल पर आप गाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में। लेकिन ऐसे ही गाया नहीं जाता है, बहुत ही साधना और मेहनत करनी पड़ती है। हर एक शब्द कैसे गायक गा रहा है, कैसे उच्चारण कर रहा है, आपको ठीक तरह से सुनना है और ताल भी पहचानना है स्वर के साथ। और हमने आपसे सवाल किया था कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, और सही जवाब है 6। बिल्कुल 6 मात्राएं होती है, यानी 6 मात्राज धा धिन्ना धा तिन्ना। जैसे कुछ गाने हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, संगम फिल्म का गाना, या महबूबा वाला राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया गाना मेरे नैना सावन भादो, ये भी। और लता जी का अमर गाना लग जा गले, ये भी दादरा ताल पर ही आधारित है। और अलका याग्निक की आवाज में अगर तुम साथ हो तमाशा फिल्म का ये गाना भी दादरा ताल पर ही आधारित है। सही जवाब दिया कुंगुमा से पुष्पा जी, कमला जी फ्रॉम मोताबा और बसंती जी फ्रॉम बुबासेन।

0: 5:31 मिनट हो गए हैं। चलिए दूसरा भाग आपके लिए। पहला भाग तो सिनेमा दिल से और दूसरा भाग हम आपको देंगे मौका वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए। प्रश्न तैयार है, आप भी हो जाइए एकदम ही तैयार।
1: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, स्पोर्ट्स लवर्स और म्यूजिक प्रेमियों, कल है म्यूजिक डे, योग डे भी, और वर्ल्ड कप का महीना चल रहा है। 11 जून से शुरुआत हुई और जाकर अंत होगा ये वर्ल्ड कप 19 जुलाई को। और बिल्कुल जब वर्ल्ड कप की बात करते हैं हम, तो कहते हैं वर्ल्ड कप 2026 पराक्रम और परिश्रम का मिक्स। वर्ल्ड कप का नेम और फेम, फुटबॉल का अनोखा गेम। जी हाँ, फुटबॉल ही जो हमारे लिए स्पोर्ट्स का राजा है। प्रिलिमिनरी राउंड में मैचेस अभी जारी है, ये तो आप देख ही रहे हैं किसका पल्ला भारी है। सबसे पहले राउंड 32 के लिए जो टीम क्वालिफाई हुई है वो है मेक्सिको। 6 अंक मेक्सिको को प्राप्त हो गए हैं 2 जीत के बाद, और दूसरी टीम, मेक्सिको तो मेजबान देश है, और दूसरा मेजबान देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी 6 अंक पा लिया है उन्होंने, और वो भी क्वालिफाई हो गए हैं नॉकआउट राउंड के लिए। इस वर्ल्ड कप में वर्षों की एक रिकॉर्ड टूट गई है। हम विकास भाई, अरविंद भाई, सभी ने ये कहा है। अगर आप लोगों ने फुटबॉल बुलेटिन आप लोगों ने सुना है तो आपको पता ही होगा। ब्राजील वो एकमात्र टीम थी जो सबसे ज्यादा गोल्स उन्होंने स्कोर किया था, और वर्ल्ड कप के इतिहास में 1930 से लेकर अब तक जिसने सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर किया था वो थी ब्राजील की टीम। पर ये जो रिकॉर्ड है 238 गोल्स, 238 गोल्स, इस वर्ल्ड कप में जाकर तोड़ा एक टीम ने वर्ल्ड कप के दौरान। अभी वर्ल्ड कप 2026 में एक टीम ने कितने गोल स्कोर किए हैं, और ब्राजील का जो बनाया हुआ रिकॉर्ड था 1930 से लेकर अब तक, तोड़ डाला उस रिकॉर्ड को। कौन सी है वो टीम, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा। उन्हें 402-8085-4085 पर जल्दी जल्दी जवाब दें, और अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आपसे हम तुरंत एक और प्रश्न पूछेंगे ऑन एयर। तो आप नंबर मिलाइए 402-8085, और जो गाना अभी चल रहा है, गीत का गाना है, ये गाना खासकर विजय भाई के लिए जो कोर्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक सदस्य है, सूरज भाई के लिए भी, और रिश्ता जी के लिए, और सभी कोर्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन जो बहुत ही सक्रिय है इन दिनों, उन्होंने मांग की है कि गीत का गाना हमारे लिए चलाएं। और चिल्ड्रंस कोर्ट के सभी जो यहाँ ऑफिसर्स हैं, जैसे अरुणा, पूजा है, और मेधा, अनसोफी, दीपशिका, दामिनी, सलीमा, सभी ने ये इस गीत की मांग की है। और सुदेवी जी ने अपनी पोती जिसका नाम है चस्का, उनके लिए ये गीत की मांग की है। चस्का का आज जन्मदिवस है।

0: सचमुच जो दिल से निकलता है वो है गीत मेरे मीत। चलिए हम मिलते हैं पहले श्रोता के साथ, जानते हैं कि किस टीम ने ब्राजील का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ डाला इस वर्ल्ड कप में। हेलो
1: हेलो हेलो जी
0: हेलो नमस्ते
1: जी जी
0: नमस्ते दिला जी फ्रॉम मोलाशू
1: जी
0: हमने आपकी आवाज़ पहचान ली है दिला जी
1: जी
0: अच्छा दिला जी बताइए क्या जवाब है आपकी ओर से।
1: विनिसियस जूनियर
0: हाँ ये तो ब्राजील है ना। बिल्कुल
1: जी, जी,
0: तो कौन
1: जी,
0: सी टीम ने ब्राजील का रिकॉर्ड तोड़ा है इस साल, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है, ब्राजील का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बताइए हमें कौन सी। हमें
1: अर्जेंटीना
0: अर्जेंटीना नहीं जी, अर्जेंटीना नहीं है वो है। और एक जवाब आप दे सकते हैं। हेलो और
1: जी
0: एक
1: जी इंग्लैंड
0: इंग्लैंड ओके इंग्लैंड भी नहीं है, कोई बात नहीं हम दूसरों को मौका देंगे। ओके दिला जी धन्यवाद बाय
1: धन्यवाद
0: बाय। चलिए दूसरे श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्ते जी
0: नमस्ते
2: जी नमस्ते
0: नीला जी फ्रॉम वाकवा।
2: हाँ जी
0: कैसी हैं आप ठीक। हेलो
2: हाँ जी
0: हाँ जी आप ठीक हैं।
2: अपने ही टीम को
0: हाँ?
2: मिला है।
0: अच्छा बताइए कौन
2: है जी, मैं मिनकास रिकॉर्ड सो टीम।
0: अच्छा कहिए कौन है, कौन सी टीम है वो,
2: सॉरी
0: कौन सी टीम है बताइए, कौन सी टीम।
2: ब्राजील की टीम।
0: नहीं जी ब्राजील की टीम ने अब तक 238 गोल्स स्कोर किया था ना, तो एक और टीम इस वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस टीम ने, कौन सी टीम है वो बताइए हमें।
2: ओके
0: कौन सी टीम है बताइए, नहीं पता आपको। नहीं अर्जेंटीना नहीं जी, अर्जेंटीना ने इतना ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किया है अब तक, और ज़्यादा जाना चाहिए। कोई बात नहीं आपने कोशिश की है तो अब दूसरों का मौका देंगे, दूसरों को हम मौका देंगे। ओके ओके बाय। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो जर्मनी,
0: कौन सी टीम है।
3: जर्मनी
0: इंदिरा जी ने सही सही जवाब दिया, जर्मनी बिल्कुल सही जवाब इंदिरा जी ने दिया। अब तक ब्राजील ने 238 गोल स्कोर किए थे और 7-1 के स्कोर से क्यूरासो को धरा कर जर्मनी ने 239 गोल स्कोर किए हैं, तो इसका मतलब है कि जर्मनी ने ब्राजील का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो सबसे ज़्यादा गोल्स वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में अब तक है जर्मनी के नाम है। धन्यवाद इंदिरा जी। ओके तो आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आप हमारे साथ हैं इंदिरा जी। इंदिरा जी ओ इंदिरा जी चली गई, कोई बात नहीं। तो आप हमें बताइए जर्मनी का जो झंडा है फ्लैग ऑफ जर्मनी, उसमें तीन रंग है, कौन कौन से रंग है जर्मनी के फ्लैग में। बहुत ही आसान सा प्रश्न, जर्मनी वो एकमात्र टीम है जिसने अब तक सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया है वर्ल्ड कप के इतिहास में, तो हमें बताइए कि जर्मनी का जो फ्लैग है उसमें तीन रंग है, कौन कौन से रंग हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा 4-0-2-8-0-8-5 पर।

0: अर्का याग्निक की आवाज़ में गीत फिल्म का गाना बप्पी लहरी साहब का म्यूजिक, बहुत ही सुंदर सा गाना दिव्य भारती पर आधारित। तो चलिए हम आप से मांग करेंगे कि ये जवाब हमें चाहिए। जर्मनी के फ्लैग में तीन रंग है, कौन से वो तीन रंग है? चलिए हम मुलाकात करते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मैं दीपा बोल रही हूँ कांतोरेल से।
0: दीपा जी, कांतोरेल से आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: बताइए दीपा जी, क्या जवाब है आपके ओर से?
1: ब्लैक रेड एंड येलो।
0: यस इंडीड, ब्लैक रेड एंड येलो। लेकिन इसे आप हिंदी में बताइए।
1: हिंदी में काला,
0: हाँ,
1: लाल,
0: हाँ, और
1: पीला।
0: किसने आपकी मदद की है?
1: बेटी ने कहा,
0: बेटी
1: वो हिंदी पढ़ती है।
0: क्या नाम है बेटी का?
1: सतीन।
0: क्या नाम है, क्या नाम है उनका?
1: वेदिता है।
0: हाँ जी, वेदिता को बहुत बधाई हो, आपको नहीं। दीपा जी, आपका जवाब एकदम सही है। आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखती हैं?
1: हाँ
0: हाँ जी, एमबीसी प्ले आपने डाउनलोड किया है?
1: हाँ
0: हाँ, रोज आप मैचेस देख सकते हैं अपने मोबाइल पर ही? क्यों,
1: वो बहुत देर है।
0: कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त फुटबॉल फैना है तो आपको देखना पड़ेगा, खासकर वीकेंड के दौरान।
1: हाँ।
0: दीपा जी, बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की और आपकी कोशिश रंग लाई है। धन्यवाद आपको, बाय।
1: थैंक यू, बाय
0: बाय।
2: 819 kHz. This is Radio Marches. Radio Marches.

जी हाँ, प्रिलिमिनरी राउंड में बहुत से मैचेस खेले जा रहे हैं। बताइए हमें कितने मैचेस कुल मिलाकर खेले जाएंगे अंत तक, यानी अभी तो फुल, अगर आप शुरुआत से अंत तक फाइनल में, तो 104 मैचेस हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी राउंड है, नॉकआउट राउंड शुरू होने से पहले कितने मैचेस खेले जाएंगे प्रिलिमिनरी राउंड में कुल मिलाकर टोटल, ये हमें चाहिए। 4028085 पर आप लोग जवाब दें कि ये जो प्रिलिमिनरी राउंड है, जो लीग फेज है, जहां पर हर ग्रुप में सभी जो टीम्स हैं आपस में मुकाबला कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर कितने मैचेस खेले जाएंगे, तब जाकर 32 टीम्स बचेगी। आपको ये हमें बताना पड़ेगा। 4028085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें। Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that. जी हाँ, कल ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा, जोर का झटका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ, और कतर को भी जोर का झटका लगा कनाडा की ओर से 6-0, और मेक्सिको ने भी झटका दिया और साउथ कोरिया को, यानी तीनों मेजबान देशों की जीत।

0: दलेर मेहंदी की बुलंद आवाज में एक्शन रिप्ले, ये बहुत ही बढ़िया सा गाना है। अक्षय कुमार इसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं ऐश्वर्या राय के साथ। हमने सवाल किया था कि प्रिलिमिनरी फेज में कुल मिलाकर कितने मैचेस खेले जाएंगे तब नॉकआउट राउंड का प्रवेश होगा। चलिए हम देखते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम दीपेश हूँ।
0: दीपेश है आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं दीपेश जी?
1: कांटोरेल से।
0: ओ, कांटोरेल के दीपेश जी, तो आप किस कक्षा में हैं? यू आर स्टूडेंट इन विच क्लास?
1: ग्रेड फाइव।
0: सो यू आर जस्ट स्टडिंग एट द प्राइमरी लेवल। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं दीपेश जी। सो व्हाट्स योर आंसर देन, क्या है आपका जवाब?
1: 72 matches,
0: and your answer is just quite right. बहुत ही धन्यवाद आपको दीपेश जी, ऐसे ही आप भाग लेते रहें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय,
1: बाय बाय।
0: जी हाँ, 72 मैचेस। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में 6 मैचेस खेले जा रहे हैं। अगर 4 टीम्स हैं तो कुल मिलाकर 6 मैचेस एक ग्रुप में, और वर्ल्ड कप 2026 में 12 ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स, तो 12 टाइम्स 6 दैट मेक्स 72। दीपेश ने बहुत ही बढ़िया सा जवाब दिया। लगता है कि बालक मैथमेटिक्स में बहुत ही तेज है। चलिए, अगर हमने 72 कहा तो 72 के कुल मिलाकर 12 फैक्टर्स हैं। जब हम आपसे कहेंगे 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3, 1, 2 एंड 4, क्योंकि अगर ये जो 1, 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय दीज फैक्टर्स, एक होल नंबर आपको प्राप्त होगा। तो आपको हमें बताना पड़ेगा केवल 4 फैक्टर्स, 72 के 4 फैक्टर्स। ज्यादा से ज्यादा 12 फैक्टर्स हैं 72 के, केवल आपको हमें 4 फैक्टर्स बताने पड़ेंगे 72 के। 4028 0885 402 8085 पर जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: ढुनकीला रे, हैप्पी म्यूजिक डे।
1: जी हाँ, संगीत दिवस अभिनंदन हो आपको। हमने आपसे सवाल किया था मैथमेटिक्स पर आधारित, 72 के 12 फैक्टर्स हैं, केवल आपको 4 फैक्टर्स हमें बताने पड़ेंगे तो आप हो जाएंगे खुश। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले श्रोता के साथ। हेलो
2: हेलो, नमस्कार रोशन जी।
1: नमस्कार, ये तो आवाज जानी पहचानी सी है, रोजबेल की है।
2: हमेशा आपके प्रोग्राम में भाग लेती हूँ। मैं उमा रोजबेल से।
1: उमा जी फ्रॉम रोजबेल, आपका हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: उमा जी हमेशा आप सही जवाब देती रहती हैं, है ना?
2: कोशिश करती हूँ कभी।
1: ये तो आपका बड़कपन है, आपके पास तो सभी अच्छे जवाब होते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ। उमा जी बताइए क्या है वो जवाब, सुना दीजिए।
2: आपने सिर्फ 4 ने कहा, तो मैं कहूंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1: अरे बाप, 1 2 3 4 6 8। हाँ जी, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24, हाँ जी 36 और 72 12 है। आपने क्या खूब जवाब दिया, बहुत ही बधाई हो आपको। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी। शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या, बाय। चलिए एक अंतिम सवाल। वर्ल्ड कप पर आपने पहला मैच तो देखा जिसमें मेक्सिको ने टक्कर ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2-0 की जीत मेक्सिको के लिए, और इसमें 3-3 रेड कार्ड्स। बाप रे बाप, एक ही झटके में 3 रेड कार्ड्स दिखाए गए, 2 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए और एक मैक्सिकन प्लेयर के लिए। आपको हमें बताना पड़ेगा, एक मैच हुई थी 2006 में जिसे हम याद करते हैं द बैटल ऑफ न्यूरेमबर्ग, जिसमें 16 येलो कार्ड्स दिए गए थे, 16 येलो कार्ड्स, और वही मैच हैं जो अब तक इतिहास में सबसे ज़्यादा रेड कार्ड्स दिए गए थे उस मैच में। आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये जो मैच था पोर्टुगल वर्सेस नेदरलैंड्स, इसमें कितने रेड कार्ड्स दिए गए थे। 4-0-2, 8-0-5 पर प्लीज़ हमें जवाब दें कि इस बैटल ऑफ न्यूरेमबर्ग में, जो जर्मनी में ये वर्ल्ड कप था 2006 में, इन दोनों टीमों के बीच में कितने रेड कार्ड्स दिए गए थे। 4-0-2, 8-0-5। चलिए जल्दी जल्दी एक श्रोता को हम सुन लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, क्या नाम? हेलो, लगता है कि लाइन में खराबी है और समय की समाप्ति भी हो गई। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अब तक रेड कार्ड्स एक ही मैच के दौरान दिए गए हैं वो है 4 रेड कार्ड्स, बिल्कुल 2 पोर्टुगल प्लेयर्स के लिए और 2 नेदरलैंड्स प्लेयर्स के लिए दिए गए थे, और ये अब तक सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिनरी मैचेस में से सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस, जैसे कहते हैं डिसिप्लिन के तौर पर, ये मैच था द बैटल ऑफ न्यूरेमबर्ग बिटवीन पोर्टुगल एंड नेदरलैंड्स। इसमें 16 येलो कार्ड्स निकाले गए थे और 4 रेड कार्ड्स, और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना।
4: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस।
1: जी हाँ, ये एक हसीन सफर है रेडियो मॉरिशस का, आप तो पता है आपको, और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप अवश्य समाचार सुनिएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार ठीक 6 बजे, और भूलिएगा मत कि वर्ल्ड कप के दौरान आप एमबीसी प्ले में भी अपने मैचेस बहुत ही ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। एमबीसी प्ले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो किस बात की देरी है आपकी, जल्दी जल्दी ये एमबीसी प्ले डाउनलोड कीजिए और हर मैच का आनंद लीजिए। जर्मनी वाला मैच आप बिल्कुल मिस न करें, जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट, ये बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है। दोनों के पास 3-3 अंक है,

0: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: 819 kilohertz पर रेडियो मॉरिशस।
2: शनिवार 20 जून की तारीख 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट 2026-2027 में सरकार ने आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा। पहली जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होगी और नई प्रणाली के तहत आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान, साथ ही सैकड़ों नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी योजना में शामिल किया जाएगा। बिजनेस मर्चेंट्स ने बजट में

0: घोषित कई कदमों का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार, एआई प्रशिक्षण और विदेशी विशेषज्ञता से जुड़े कदम निजी सेक्टर की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। पृथ्वीराफे में 61 वर्षीय सुभावती अनाचलम जागेसर की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। विदेश स्तर पर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच घोषित युद्ध विराम एक दिन भी नहीं टिका। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने और कर व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार कैपेसिटी बिल्डिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं। शागोस के मुद्दे से लेकर देश के आर्थिक विकास तक भविष्य तक भी सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सुमेर अकबर अली।
1: We could have chosen the path of least resistance, but we did not.
2: Nous avons choisi la voie de la réforme la plus difficile pour reconstruire notre économie et société et assurer l'avenir de la prochaine génération. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre en ouverture de son discours du budget 2026-2027.

और कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर एक नए चरण में प्रवेश कर दिया है। जी हां, पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाने वाले हैं। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामगी के अनुसार इस नई प्रणाली का उद्देश्य लंबे समय तक पेंशन व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। क्या ये इस नई व्यवस्था की प्राथमिकताएं ये क्या होंगी, हम कल के बुलेटिनों में आपको बताएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपये का प्रावधान किया है। 1 जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य उत्पादों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें ट्यूना मछली, कैन ट्यूना, कोन बीफ, मैक्रोनी, दालें, लंचन मीट और बच्चे के लिए आहार शामिल है। ये सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1930 सामानों के अतिरिक्त होगी, जबकि ग्राहकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1510 सामानों की कीमतों पर नियंत्रण और 700 उत्पादों पर VAT छूट भी जारी रखी जाएगी। राज्यसभा में घोषित कई कदमों का बिजनेस मोर्चस ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि व्यापार को आसान बनाने, AI से जुड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने और विदेशी कौशल और विशेषज्ञता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। इन मुद्दों पर बिजनेस मोर्चस ने कल पोटली में एक प्रेस सम्मेलन दिया। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि बजट 2026-2027 में सांसदों और कुछ बड़े पदों से जुड़ी नई घोषणाएं हुई हैं। कई कदम प्रस्तावित किए गए हैं। अब सांसदों को 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है।

0: बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद संसद से बाहर निकलते समय कई मंत्रियों, जूनियर मिनिस्टर्स और सांसदों ने बजट की कई प्रमुख घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पेंशन व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सेक्टर की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के गठन की घोषणा की तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के कदम, इन प्रमुख विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि एक 61 वर्षीय महिला की अपने ही घर में हत्या से पिछले गाफ़े में सनसनी फैल गई। शुक्रवार शाम सुभावती अरुणाचलम जागीसर मृत अवस्था में पाई गई। शुरुआती जांच के अनुसार एक नकाबपोश व्यक्ति घर में घुसा और उस पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गया। पुलिस हत्या के पीछे लूट की आशंका सहित विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। अफ्रीका के भविष्य के लिए तैयार की गई एजेंडा 2063 योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी है। इसी उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एपेन के हेनेसी पॉकेटल में एक कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें सरकारी और निजी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यकुशलता में एजेंडा 2023 और 63 के दूसरे 10 वर्षीय कार्य योजना के तहत मॉरिशस के लिए उपलब्ध अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा की। हम आपको बता रहे थे कुछ ही देर पहले कि बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कई कदमों का ऐलान किया था, जैसे खाद्य सामानों के दाम, महिला सशक्तिकरण और पेंशन। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: वी कुड हैव चोजन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बट वी डिड नॉट।
2: वित्त मंत्री ने 7 स्तंभों पर केंद्रित सरकारी स्ट्रैटेजी पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के प्रयोग के अंतर्गत सरकार 3 चरणों के तहत कार्य करेगी, जिनकी बदौलत मॉरिशस गूगल अमेरिका इंडिया कनेक्ट की पहल से लाभ उठा सकेगा और हमारे देश को दक्षिण अफ्रीका, भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर पाएगा। मॉरिशस AI के लिए एक सुरक्षित आधार की तरह प्रस्तुत हो पाएगा। इसके अलावा सरकार जनता के लिए निवेश करेगी। कुल 50,000 मॉरिशनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक होंगे, साथ में ग्रेड 9 के छात्र भी और निजी सेक्टर तथा सरकारी विभाग के ऑपरेटर भी। सरकार एक नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए 25 मिलियन रुपये का बजट उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एक साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी कायम करने के लिए 13 मिलियन रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। मॉरिशस में स्टार्टअप के लिए भी अहम कदम निर्धारित। कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि स्टार्टअप एक्ट तैयार किया जाएगा। कोदो में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक हब होगा और EDB की ओर से एक एक्सेलरेटर स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। एक नया अहम कदम, 10 छात्रों के लिए 5 लाख रुपए तक का एक इनोवेशन स्कॉलरशिप दिया जाना। स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था में SME की अहम भूमिका को मजबूती दी जाएगी। एक SME बिल तैयार किया जाएगा। साथ ही हमारे आर्थिक स्थल का विस्तार किया जाएगा और इसे आधुनिक बनाया जाएगा। कदमों में कुदो में एक उच्च टेक्नोलॉजी वाले एक नए इकोनॉमिक जोन कायम करने की बात भी है। बंदरगाह, हवाई अड्डे और हवाई अड्डे को फोबा के साथ जोड़ने के लिए M4 वाटरवे की एक परियोजना भी है। कचरों के राष्ट्रीय संचालन के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 150 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि, मवेशी पालन और बैंकिंग तथा फाइनेंस सेवा संबंधी सेक्टरों को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। पर्यटन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। 1 मिलियन रुपए के बजट की बदौलत पर्यटन गांव विकसित किए जा सकेंगे और सगाईतोंचीवाल होटल स्कूल को पुनः डिजाइन किया जाएगा।
0: तो बजट 2026-2027 के माध्यम से सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इस बजट में एक ओर सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने, कर्ज के बोझ को कम करने

0: और टैक्स व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि अभी आपने इस रिपोर्ट में रजनी बिकर से सुना। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया। 1 जुलाई 2026 से 485 नए खाद्य सामानों को सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए 1510 सामानों के दामों पर नियंत्रण और 700 सामानों पर VAT पर छूट भी जारी रहेगी। सुनिए,
1: प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्य उत्पादों की सूची को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत 485 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 300 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 7 आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल हैं: कंड ट्यूना, कोंड मटन, कोंड बीफ, मैकरोनी, काली दाल, मसूर दाल, लंशन मीट, बेबी फूड। 58 रुपए का कैंड ट्यूना 1 जुलाई से 38 रुपए में बिकेगा। उपभोक्ताओं की राय इस उपाय को लेकर बंटी हुई है।
2: Longtemps on nous dit bien rempli, malheureusement maintenant non. Ou gapé pour une supermarché parce que avec le coût de la vie. On a dû nous penser être content, on vit manger des affaires, faire des enfants plaisir, mais malheureusement pas capable, trop cher.
3: Le gouvernement il prend une bonne initiative concernant une alimentation pour bébés. Mais moi aussi content, ils mettent plus subvention sur les couches et man les infantiles.
4: Bien positif en tant que consommateur, surtout si du bon avec subside le corn beef, thon, tout cela, il faut être bon du bon misère.
1: ये नई सूची पहले से सब्सिडी प्राप्त 1910 उत्पादों से जुड़ेगी, जिन पर सरकार 1.7 बिलियन रुपए खर्च कर रही है। घरेलू खर्चों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए 1510 उत्पादों की कीमतें पहले से ही मैक्सिमम मार्कअप के तहत नियंत्रित हैं, जबकि 700 अन्य उत्पादों को VAT से छूट दी जाती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मूलभूत सामानों का आयात करके वो रिटेलर्स तक भेजेगा। हम कम दाम वाले उत्पाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इससे मंडी में कंपटीशन बढ़ेगा। कल ऐलान किया गया कि खाद्य सामानों का पैरेलल इंपोर्ट भी किया जाएगा।
5: Donc nous travaillons là très rapidement et moi penser ça trois items là pour être pour combattre la vie chère.
1: सरकार ने इस योजना के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखना है। रिटेलर्स को नियंत्रित करने वाला एक नया कानूनी ढांचा भी कायम किया जाएगा।
0: कल पेश किए गए बजट 2026-2027 में पेंशन सुधार पर नए चरण में प्रवेश कर गया है। 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। ये पेंशन 60 वर्ष की आयु से दी जाएगी, जबकि नई व्यवस्था में पेंशन के भुगतान के लिए आय संबंधी मापदंड भी लागू किए जाएंगे।
1: सांसदों के साथ अब सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाएगा। वे नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में अंशदान करेंगे। वर्तमान में 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद सांसद आयु की परवाह किए बिना पेंशन प्राप्त करने के हकदार थे। अब पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होगी, जो अवकाश की वैध आयु है। एक अन्य कदम, 1 जुलाई से कार्यरत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आय और पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की पेंशन पूरी तरह से कर योग्य यानी टैक्सेबल हो जाएगी। 65 साल की उम्र में सांसदों का पेंशन मॉरिशस लेबर कांग्रेस का सुझाव था। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। नियुक्त सदस्यों को आम कर्मचारियों से ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कई पेंशन मिलते थे, जिनमें वे अंशदान भी नहीं करते थे। अब से उन्हें ऐसा कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चाहे वर्तमान हो या पूर्व, उनका पेंशन पूर्ण रूप से कर योग्य यानी टैक्सेबल होगा।
6: Le 1er juillet, l'époux fully taxable. Tout le monde bizarre même.

0: traitement. Ce n'est pas possible qu'il y ait un président de la République ou pas payer taxes. Qui nous bâtit travailler, nous paye taxes.
1: Il envoie un signal, donc moi, je suis content qu'il écoute.
2: मैं खुश हूं कि उन्होंने सांसदों के पेंशन को लेकर 65 साल की उम्र के मेरे सुझाव का मान रखा.
1: C'est une mesure, n'est pas juste symbolique, mais alignée avec ce qui est préconisé.
2: अब से एक सांसद को एक कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ड्यूटी फ्री वाहन लेने का अधिकार है, जबकि पहले ये सुविधा हर 3 साल में दी जाती थी. हम उदाहरण दे रहे हैं, एक ही ड्यूटी फ्री मिलेगा, ये बड़ा कदम है. श्रमिक संघ के प्रतिनिधि आनिफ बिहन ने भविष्य में अन्य जरूरी कदमों की इच्छा जताई.
0: Ancien vice-président et ancien président de la République.
2: पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सरकारी गाड़ी दी जाती है 24 घंटे के लिए, एक पुलिस अफसर और ईंधन भी दी जाती है. उदाहरण दें और जनता को दिखाएं कि वे भी त्याग कर रहे हैं.
0: Alors, mon pensée c'est là qu'il vient retirer certains privilèges, donner l'exemple, montrer à la population qui peut faire sacrifice énormément pour joindre les débuts, besoin commencer depuis là-haut.
2: नेशनल असेंबली रिटायरिंग अलाउंसेस एक्ट में सुधार लाया जाएगा ताकि राष्ट्रसभा के सदस्यों के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित अवकाश योजना लागू की जा सके. ये कदम नवंबर 2024 से प्रभावी होगी.
3: तो जैसे कि आपने सुना यशना मिश्रा के साथ की बजट 2026-2027 में सांसदों और देश के कुछ बड़े पदों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं. अब सांसदों को 2 कार्यकाल पूरी करने के बाद तुरंत पेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें 65 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा जैसे दूसरे कर्मचारियों को करना पड़ता है. संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने का एक माध्यम भी. म्यूजिक डे के अवसर पर एमबीसी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग हटकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कलाकार हो या संगीत प्रेमी, सभी एक बड़े कराओके कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए. प्रतिभा साझेदारी और संगीत के जश्न को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम आज रात 8:30 MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा.
2: संगीत के तराने स्टूडियो में गूंज रहे हैं, स्पॉटलाइट्स जगमगा उठी हैं, टेक्नीशियन अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और मंच पर कर्मचारी अपने गीतों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं. इस साल भी एमबीसी में उत्साह के साथ संगीत दिवस मनाया जा रहा है. एक खास कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी प्रतिभाएं दर्शाने का मौका मिल रहा है.
4: Et si on laissait la technique, logistique, montage, reportage, réalisation d'émissions, préparation ainsi que présentation d'émissions radio et télé de côté pour prendre le micro.
2: जो कर्मचारी आमतौर पर अपने दफ्तर के पीछे स्टूडियो या कंट्रोल रूम में काम करते हैं, वे एक शाम के लिए कलाकार बने हैं.
5: Souvent, je suis plus résisté à un événement qu'autre chose. Je suis plus un chanteur de salle de bain et de couloir. Avant tout, c'est vraiment partager sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, l'amour des mots et de la musique.
6: Je ne suis pas chanteuse professionnelle, alors là, pas du tout. C'est juste pour le fun, en fait, pour participer avec les employés et aussi, pourquoi pas, donner du bonheur et transmettre la bonne humeur aux téléspectateurs.
2: सप्ताह भर लगातार रिहर्सल्स का दौर रहा. फ्रेंच, अंग्रेजी, क्रियोल, हिंदुस्तानी गीतों के साथ हर प्रतिभागी अपनी संगीत शैली लेकर मंच पर उतरा.
7: मैं चांटेज, मैं आर्टिस्ट, मैं मोसी मो पार्टिसिपे पास्के से सा एन मोमेंट को टू रियूनिर ए प्रोपागे लामोर अ ट्रावेर ला म्यूजिक.
8: नू विव दान अन इल कोते नार टूलान, डोंक मो दिया बे पोरक्वा पा नू एसे कम सी टाकल अन टी पे ले ट्रोआ. से की मो कोने बियन सूर.
2: कला जुनून संगीत की शाम शनिवार रात 8:30 MBC 2 पर देखना न भूलें.
3: विश्व कप 2026 में मेजबान यूएसए का विजयी अभियान जारी है. घरेलू दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच अमरीकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ यूएसए ने न केवल ग्रुप डी में अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि अंतिम 32 में पहुंचने की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हुई है. प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ अब ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है. विश्व कप 2026 में

का दिन बेहद अहम होने जा रहा है, जहां कई टीमें अंतिम 32 में जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स और स्वीडन के बीच होने वाला मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं ग्रुप ई में जर्मनी का सामना आइवरी कोस्ट से होगा, जो जीत के साथ अगले दौर की ओर और एक कदम बढ़ाना चाहेगी। दिन के तीसरे मुकाबले में इक्वाडो और कुराकाओ अपने सामने आमने सामने होंगे, जहां दोनों टीमों के लिए हार की गुंजाइश बेहद कम है। ऐसे में विश्व कप के नॉकआउट चरण की दौड़ और भी रोमांच

स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं उनमें इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शुक्रवार को घोषित युद्ध विराम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। लेबनान ने इन हमलों को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया, जबकि इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच 23 से 25 जून तक वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के बीच वार्ता का 5वां दौर प्रस्तावित है, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। चले जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करिन के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात और कल सुबह के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और धुंध भी छाई रहेगी। दिन के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और दक्षिण पूर्व की दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी। 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 18 से 20, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है और सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:44 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव को हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। टेम्पल रोड रिविया जुरान पॉमे 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के कांता प्रसाद दुता की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उनकी पत्नी मिसिज माला दुता के मकान रिविया जुरान पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उतरी रिविया जुरान पॉ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM Petit Viager, Saint-Pierre, Boisherimé, 77 साल की 77 years old की सीता देवी सीरोज की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके भाई चंद्र स्वराज सीरोज के मकान पेटी वियाजे सैंपिया बॉशरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रहोफ पोस्टेन AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

MBC Radio 24 hours a day. शाम के 6:26 और 20 सेकंड लीजिए. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्तियां सुनिए. सबसे पहले लाविनिया के रहने वाले बाशिंदों को, ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 21 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. ये इलाके हैं मोसिलमा फ्रांशिपन, मोसिलमा ब्लूप्रिंट, मोसिलमा अजाली, स्कूल लेन, सिमिट्री रोड और वीआरएस लावेनिया. इन समस्त इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच बिजली सप्लाई में

कटौती लाई जाएगी और बिना किसी पूर्व सूचना के मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिजली फिर से चालू कर दी जाएगी। कथबोन के इन इलाकों के बाशिंदों को भी सूचित किया जाता है। ये इलाके हैं एवेन्यू बाउंडेरी, कॉन्ट दे लिल, रोबे एडवा हार्ट, डॉक्टर रॉस, डॉक्टर फेरियर एंड हिचकॉक, की कल रविवार 21 जून की सुबह 9 से दिन के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। यहां पर भी इन इलाकों में भी बिना किसी पूर्व सूचना के मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिजली सप्लाई चालू कर दी जाएगी। और बोबासे के निम्न इलाकों के ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है कि कल रविवार 21 जून 2026 की सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच और फिर दिन के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ये इलाके हैं डॉक्टर लेसिया, कुडाबकस एवेन्यू, फिलिप राउल एवेन्यू, मुडाव एवेन्यू, ड्रीम प्राइस बोबासें, रेजिडेंस विलमे, एनएचडीसी विलमे, डॉक्टर रीड, महादेव बिल टू, जुपेरे, शातोनेफ और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच और फिर दिन के 2 से 2:30 बजे के बीच सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन समस्त असुविधाओं के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: रविवार 21 जून को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नादेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में यज्ञ का आयोजन किया गया है। सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में रविवार 21 जून को गहलोत राजपूत महासभा के तत्वावधान में दिन के 10 बजे अपडागुचिया गहलोत राजपूत समाज शाखा नंबर 53 और सैपिया गहलोत राजपूत समाज शाखा नंबर 40 राजपूत मंदिर दागुचिया में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा है। रविवार 21 जून को सुबह 8 बजे मिडलैंड्स के श्री जगदीश्वरनाथ शिवाला द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया है। सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 21 जून को मेबग आर्य समाज लालमाची आर्य समाज में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: सभी श्रोताओं को अनीता का सप्रेम नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो अभी रेडियो मॉरिशस द्वारा प्रसारित हो रहा है। भक्तों, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा है। हर घटना, हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। कभी जीत सिखाती है तो कभी हार सिखाती है, किंतु जो हर स्थिति से सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकता। इसलिए शिकायत करना बंद कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

भक्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत प्रतीत होने लगता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और स्वयं पर संदेह होने लगता है। किंतु यही वह समय होता है जो आपको सही मायने में वास्तविक व्यक्ति बनाता है। यदि आप इस दौर को सह लेते हैं तो समझ लीजिए, आने वाला समय मात्र आपका

प्रियजन, धैर्य कोई बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्यवान है वह समय को बदलते देखता है, और जो अधीर है वह समय के बदलते ही टूट जाता है। धैर्य वही है जो हार को भी सीख में बदल देता है।

भक्तजन, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वह क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि निर्णय लेते समय मन को शांत रखिएगा।

श्रोताओं, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, किंतु हर प्रतीक्षा के पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में निराश हो जाते हैं, पर समय और प्रभु वह रचना कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से कई आगे होती है। स्मरण रखिएगा कि जो देर से मिलता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसी विचार के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: Continuous music.
1: रेडियो मॉरिशियस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
1: रेडियो मॉरिशियस
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का
5: सब संगतिया लोग के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल, जी हाँ, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। सब संगतिया लोग के हमने स्वागत करा थे जा और बेशक हमने के और तो लोग के साथ रही अभी से लेके रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का का प्रोग्राम। आज है सामदी के रात 20 जून 2026। बोला था संगतिया लोग कैसे हो जा आज के दिन कैसे बीतल। हाँ, अच्छी तरह से ना, अभी रात भी अच्छी तरह से बीती, कहे कि भोजपुरी के तड़का लगाओ सा अभी से लेके रात के 11 बजे ले नाचब सा गाओ सा झूमब सा कत सौ दे विद सैंक पर फोन कॉल। और हम की प्रोग्राम चला था दुगो चैनल पर, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। तो संगतिया लोग, भोजपुरी तड़का प्रोग्राम की शुरुआत करब जा एगो बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। बिजमावती संपत गए लगभग गीतवा बोता मांग के सिंदूरवा बढ़िए जोड़ीबा सोचे के जोड़ीबा चल एक साथ सुने मांग के सिंदूरवा।

मांग के सिंदूरवा बड़ी सुबेरा, खासकर जब एगो शादीशुदा महिला के मांग में सिंदूर रहे तो प्रतीक है कि ओकर पति जिंदा बा, हाँ कि नहीं। और बेशक यहाँ पर यही सब नहीं लोग के साथ देखा तेर प्रोग्राम भोजपुरी तरका में। और आजकल देखा थे कि पानी उतना नहीं भर सकता और हमने की जलाशय में पानी कमती हो ही जाता, खासकर महोवाकवा जो हमने की प्रमुख जलाशय है वहाँ पर में पानी कमती हो ही जाता। तो इंद्र भगवान से चाहना पूजा करे के कि थोड़ा सुन पानी बरसी, कहे कि पानी की बहुत ज़रूरी है और सब काम पानी से हो रहा हो कि नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करब सा कि पानी बरसी और हमने की जलाशय भर जाए। और नवम देमिल वैंसैंक से लेके आज जून देमिल वैंसी से चला रही सर, पर उतना पानी नहीं बरसल बा जितना चला बरसे के। और देखा था सर ढेर मना नदी में पानी नहीं बा, तो अगर इसे ही चलते जाए पानी नहीं बरसी तो स्थिति चिंताजनक हो जाए, कहे कि सबको के पानी चाहे रोज के प्रयोग करे के हों कि नहीं। तब प्रार्थना करब से सबको मिल के इंद्र भगवान से कि हे प्रभु पानी बरसाव ताकि हम के जलाशय में पानी भर जाए और सबको के पानी मिली पिए के। और पानी से बिजली भी बनेला, कुआँ बनेला जाने ला ना, तो एक खातिर चेहरा पानी भरिए जरूरी भाई। पहली बार हो बा मॉरिशस में कि कोई तूफान नहीं आल मॉरिशस में और पानी उतना नहीं बरसल, हर बरिस पानी बरसते रह रहा, पर ये बरिस काज नहीं काहे ऐसे होल बा, बहुत अचरज के चीज़ है सब भगवान के काम है के सकेला कुछ बोली। तो चला अब अगला गीत सुनब जा, जिले जिले जिले उमेश दोहू के आवाज़ में है गीत चलावत ऐसा हिरीश नारायण के नाम अपरहरण मोहताबा। बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत और खतेर होरीलाल दिनू कर पत्नी कर बेटा विवेक बहू और सब दिनू परिवार के नाम। वंदना गुमानी है गीत तोहर खतेर तोहर माँ और तोहर सब परिवार के नाम। और जितना रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग सुनता है गीत तो लोग के नाम भी जिले जिले।

बोलल गलबा की सेवा में मेवाबा। चेहला सब कोई की सेवा करे के सेवा कर बत भगवान खुश होला। और अंग्रेजी में कहावत बा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि कोई के तू मदद करला तो अगे तू नहीं आतान करिया कि व्यक्ति तुम्हार मदद करी। नेकी कर दरिया में डाल, कहे कि सकेला जो व्यक्ति के तू मदद कर ले वह सकेला अगे तू थोड़ा कुछ नहीं सकी दे, पर तू ओकर सेवा करला ओकर मदद करला यही काफ़ी बा। भगवान जोन है ये खुश होला कि जब हमने कोई के मदद करे सा कोई की सहायता करी ला सा, तो जहाँ ले सकब सेवा करिए एक दूसरे के। और देखिए खासकर जोन व्यक्ति गरीब बा निर्धन बा बीमार बा जेकर कोई नहीं बा ओकर सेवा करब तो भगवान थोड़ा ढेर आशीर्वाद दे। और ऐसे में सुना छा अगला गीत मोरे फुलिया गिरेला है गीत तो चलावत ही सर खासम खास देविका रामगतिया के नाम ये बड़ा बावर्ची वन जोड़ी से खाई के तैयार करेला एक हाथ के पकावल खाना क्या बात। देविका रामगतिया गीत तोहर खातिर तोहर घरोला तोहर बेटा पतो बेटी दामाद और सब रामगतिया परिवार के नाम है गीत। चली है गीत चंपा रामगतिया के रसो कर घरोला कर बेटा पतो बेटी दामाद और सब रामगतिया परिवार के नाम। राधा सी बालक ये भी अच्छी तरह से खाना तैयार करेलन और रसोईया हवन इतना अच्छा से खाना बनावेलन कि का बोलबा। तो राधा सी बालक के गीत तोहर बेटा प्रशांत तोहर पतो बेटी शिल्पा तोहर दामाद और सब सी बालक परिवार के नाम। तो चल सुनब जा प्यारा सन गाना मोरे फुलिया गिरेला। आपके कर फुलिया कहाँ गिरा था और जहाँ से भी हमने सुना था हुआ था ये गीत तलो के नाम आज के रात तलो के नाम रात के 11 बजे रे गमोटा होती रही अभी फुलिया गिरा था। कैसे फुलिया गिरा था चल एक साथ सुने।

सामने की रात गमत की रात, रात भर अभी गमत करते रह, सगमता शुरू होकर बाद फिर कोई बोला था। हरीश नारायण बड़ा जोर नाचता नहीं कि संगे संगे बोला था आपका बेस्ट फ्रेंड का थिर अगला गीत चला द हरीश नारायण गीत तोहर बेस्ट फ्रेंड साइलेंट खातिर। समधी समधी के लगल बड़ी हिचकी सौंदे मौसम उड़ीद के पानी खोजेला। संगतिया लोग आजकल देखते हैं दुनिया में ढेर मना हिंसा होता, चोर चपाटी लूट मार खून खराबा, आदमी लोग छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाता, उनसे खून कर दे तो उनसे काहे से होता। तो हमने के शास्त्र में बोलक बा जब कलयुग के अंत आए के रही तो ये सब हो कि तुगो निम्नो बात बोलते आदमियों के खराब हो के खराब लगी। आजकल के कोई के नहीं सकता कौन चीज़ बोली भैया कोई की बोलबाता उसरी टुकड़ा तोरे मार दे तोरा सकी मुआ दे है कहती थी दुनिया चलाल बात। बच के रहिया कोई पर विश्वास नहीं करिया, खाली अपन पर अपन हाथ गोर पर विश्वास करिया, कहे कि आजकल ढेर मना ठगेरा पर। और आजकल देखा था इसे कि सोशल मीडिया में खाली मॉरिशस में नहीं दुनिया भर में ढेर हिंसा हो होता, वो के जान से मार दे होता, वो कर पैसा लूट ले होता, वो कर संगे भाग जाता, तो यही सब आजकल हमने की दिखा जाता। तो भगवान से प्रार्थना करब से कि हिंसा कम हो और दुनिया में प्यार मोहब्बत रही। ऐसा में सब जब गीता का जाधर के गावल एगो जोली गीत समधी के लगल बड़ी हिचकी, अब समधी के सौंदे मौसम में हिचकी काहे लगता। चल एक साथ सुने गीत भाई हरीश जी के नाम रहलन बोबा से और सब संगत यालो के नाम कुटीर से वन आशा जानू है गीत शुभम कर माँ कर दीदी आरती जीजाजी और सब जानू परिवार के नाम। और है गीत तो हमने चलावत ईसा गिरीश हरलोल के नाम जो बहुत प्यार से हमने के साथ जुड़ल बा और जितना कोई की नींद नहीं लगता हालांकि ठंडा ठंडा कर लगवा है कोई की नींद नहीं लगता ता गीत तलो के नाम। चल एक साथ गीत सुने

हमनी के देश में ढेर विदेशी लोग आवेदन से काम करे, जैसे कि नेपाली लोग, बांग्लादेशी लोग, मारागास्कर से भी मांगास्तक भी आवेला, तो सब कोई के स्वागत करते जा हमनी के रेडियो पर। एमबीसी रेडियो है, हमनी के प्रसारण चलता 94.95 MHz यानी कि रेडियो मनोरंजन पर, और रेडियो मॉरिशस यानी कि 819 KHz पर। और खोजत हो कि ऑनलाइन सुने के रेडियो के तहत दबैया अपन पोताब में गूगल में जाइया, दबैया www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मनोरंजन या फिर रेडियो मॉरिशस, और हमने के चकाचक सक बजा सुने। देर कोई अपन मोबाइल फ़ोन के जरिए सुनता, कोई देखो देते हैं एंट्री के जरिए, कोई अपन लैपटॉप पर, तो देर कोई रेडियो के जरिए, तो जहाँ से भी हमने के सुनते हुआ सब कोई के स्वागत बा। अब जरा याद करब सर हमने के बचपन के दिन, आगे के लड़का लोग, अभी से 50 साल पहले के लड़का लोग लाकोत सोते होते लन सर, हाँ कि नहीं, कानित खेला तलन सर, बी खेला तलन सर, और लामागेल छोकरी लोग लामागेल खेले याद बा, और हमने गुड्डी उड़ावा तली सर, घर के छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ाव सर जोड़ी जोड़ी, और लारू रूले कर तली सर, और वो खेल कुकाशित कुकाशित खेल यानी कि कुकाशित, और एक रहा मामा पापा, तो ये सब खेल जो रहा आगे के रहल है। अब ये सब खेल आजकल नहीं लग रहा, आजकल के लड़का लोग तो खेल भी नहीं करेला, आज के लड़का लोग खाली अपन पोता पर टक टक टिक टिक टिक टिक करते रहने सर, क्या कर बा भैया, नया ज़माना बा, टेक्नोलॉजी के ज़माना बा, पर आगे की जो खेल रहा जैसे कानित खेले के, लामा खेल खेले के, गुड्डी उड़ाए के,

गुड्डी यानी कि पतंग है और रावत रिसर्च का ये सब अब नहीं बा। ये सब जब दिनवा के सोची रहा सर तब अपनी दुनिया को अलग ही दुनिया में खो जाए रहा सर। हमने जान सके तो लोग में से जब ढेर कोई सुनाता था तो लोग अपन बचपन के याद कर ले कैसे तू कानित खेला था कुकाशेद करता जो माये हयो भी रहा गालपे नु माये यही सब खेल रहा भाई सब खेल लुप्त हो गल बा। आजकल लड़का लोग बोल बा कानित खेले के या गुड्डी उड़ा के तो बोली कितनी साकी ऊपर जा डू। तो चल अब सुनब जाएगा अगला गाना आज के गमटक को है गीत हमनी खासम खास चलाओ सर चाची ललिता खातिर आप हवन थ्रियोले से और चाची ललिता कुशल गीत और खातिर चाचा आत्माराम आफिस हवन सैम्पियर से फातमा हवन न्यू ग्रोव से रोजिदा हाईलैंड से हाई रोजिदा। अरे गीत मोतालबे के चित्रा के उत्सव कर घरोला ज्ञान और सब विश्राम परिवार के नाम मोताबा के कमला दिनों की ओर से आरोही के नाम। चले एक साथ सुने आज के गमटकों को।

0: Nach mami gol gol nach mami nach mamu gol.
1: Kamal, Kamal aur masti Pratap Singh ke sange MBC Radio. Kamal, Kamal aur masti Pratap Singh ke sange MBC Radio.
2: हमने जब आयला सदा गमटवा होते रहेला और गमटवा होइबे करी हमने तो ढोलक बजाई लिया आयला सर ढोलक बजाई थी रात सर रात के 11 बजे ली अभी ढेर कोई हमने किसान

देवता ब्लू बे सी साइड पे ढेर संगत आलोक हवन सर सुरेश आकाश और देवन एक दो गुड़की मार ले हवन सर अकेले अकेले हम कि नहीं अतान कर ला सर बाप रे बाप नहीं हो हमने सब गुड़की मारे हम काम करते भैया अरे 11 बज जाए तो लेतो मीता आप ब्लू बे को लेतो करे का बोला था सर तो गीत अगला गीत लो खातिर बोल बोले और अब बात कर सर जरा मेकअप के बारे में तो जाने ना सर कि जो मेकअप है तो लड़की लोग के जो है ये लोग के श्रृंगार जो है वो लोग के गहना है अब वो छोकरी जोड़ी से एगो साड़ी डाले या चूड़ीदार डाले मांगटिका और जानो और फूली एगो टीका गले में हार हाथों में चूड़ी और झोली तैंचे ओय होय होय क्या बात है एगो छोकरी के गहना है ओकर श्रृंगार तो छोकरी लोग जाला ब्यूटी पार्लर जालन सर मैनिक्योर पेडिक्योर करे ताकि जोली दिखें सर जालन सा कि नहीं जालन जा अच्छा अच्छा बात है सब कोई अपन किस सुंदर बनावेला मिश्र लोग भी जाला काहे नहीं और मिश्र लोग जाला जोली जोली खावात किने जोली जोली जूता जोली मो जोली पॉफे मांगा मांगा के पॉफे हों कि नहीं ताकि पॉफे दलबत छोकरियन तो पीछे आए हाँ हो जब कोई पॉफे डाले ला कहूँ जेब कहूँ शादी में फ्योसाई में तो बोले सर जोली पॉफे मौका था के दल लग बाहू तो इसे ही जोली करते रहिए छोकरा छोकरी अपन आपकी सुंदर बनाइए ताकि सब कोई तरह बोली वो पागे जोलिया जो जी क्या बात है क्या बात है तो है अगला गीत बोल बोले सुना नोयन के गावल है और गीत जो है अपनी चलावत खासम खास इस सब लोगन के नाम लिस्ट कार्य से अवन उमा जगन्नायकलू उकर बेटी दिष्टि उकर दामाद और सब बहादुर परिवार के नाम और है गीत चलाते ही सर मिस्टर एडू मिस्टर गंगू साजू वीरापेन अपाया ओसाई दीना प्रतिमा युश्री अनुवर ग्रीदारी हिरू और सी शंकर के नाम और है गीत हमने चलाओ जा सब स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग के नाम जो नबी रात के हमने की सुना था बोल बोली सुना नयन की आवाज़ में

अब हमने के पुरानिया लोग ढेर चीज में माना तलन से अब का जिन्हें कि तू सुपरस्टिशन बोल या कुछ बोल पर ये लोग माना तलन से इस सब बात पे कैसे कि हमने के आगे दादी नानी लोग बोलते कि रात के वक्त अगर कोनो बिसान की तकारी पकड़े हुआ और कोई की जाते हुए देवे तो बर्तन में एगो पीमोसिक डाल दे के चेहरा या खइवा के तो सन छोटा छा कर दे के अभी काहे होता है ताकि भूत प्रेत खइवा के नहीं छुई ये हम नहीं बोलते हैं हमने के पुरानिया लोग बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि सांझ के 6 बजे के बाद घर नहीं बाहरी के कहीं घर बहर बोचते रहन से कि घर की लक्ष्मी सब बाहर चल जाए और ये भी बोलते हैं कि रात के बखत लुगा भाड़ा नहीं दलिया सूखे के बर्तन से लुगा भाड़ा दलब तक को मूवीज है छू दे बीमार पड़ जेब और बोलते रहन से कि रात के अगर कहूँ सीमा में जात हुआ कहूँ पर कोनो मरनी में या कहूँ पर भी तपन साथ एगो ताइजोंग लेके जाए के अब ताइजोंग कहे लेके जाते रहन से तमी भूत प्रेत को मूवीज है नहीं छुई और जब कोई मरनी से आवेला तो देखी ला समझ की बारात में लोग बोला बा कि अपन पर पानी छिड़के के घर में हेली से आ गई नहीं सब एगो मान्यता रहल एगो बिलीफ रहल आजकल उतना कोई सब में नहीं मानेला पर अगर जे मानेला तो मानेला ढेर कोई की खातिर एगो खादिशों है कि जब रात के कहूँ से आवत हो तो चहला पिट्ठी बगल से घर में हिले के और रात के बोले से कोई की नाम नहीं हला खरी के मतलब घर में हवा तोहर लड़का के नंबर राज तो नहीं हला के राज यहाँ आव नहीं नहीं हला करी के क्या कि जब हला कर बहुसी तो बर्तन से रात के लड़का बबाला और कोई की ऐसे हला करेला तो ये सब आगे की बात है हमने की पुरानिया लोग जो ना ये सब बात में विश्वास करते रहन अब आजकल का जो नहीं कोई विश्वास करेला कि नहीं पर हम देख रहे हैं कि अभी रे धीर को जब कहूँ जहाँ रात के तो अपन संगी एगो ताइजोंग रख ले रहे लन सर सोचने वाली बात है और बेशक भी रात के समय बा और हमने चलो के साथ देव थे जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और आशा करते हैं कि तू भी हमने साथ देवा रात के 11 बजे ले ठंडा ठंडा हवा बहता ठंडा कर लगभग भैया अपन त्रिको जैकेट पोलो पासकोट सब डाल लिया है तब हमने की सुनिए तब के अपन पलंग पर लेट के हमने सुनता कुवैत के नीचे हवन सर तो ढेर कोई अपन सालों में बैठल बा तेरे को अपन गाड़ी

बैठल बार हम किसना तो अंस जहाँ से भी हम किसना तो सुनते रहिया गमटवा होई भी करी छोड़ के मोरी स्वाब बाप रे सन जोरी गीत चली अब है गीतवा जो हमने चलावत ईसा खासम खास ई सब लोगन के नाम और आप हवन जा गुरुदेव माना भाई माना कैसी बा गमट हुआ था कि नहीं भाई मना बड़ा जोर हंसत और बोला था प्रताप जी तू भी ना हाय हाय हाय सावन और जिमी दुखिया गीत तोहर खातिर तेलो के माँ तोर के सब परिवार खातिर सुरेश जसवा गीत तोहर खातिर तोहर माँ राजकुमारी और सब जसवा परिवार के नाम चिबुक लोंग राजा स्टीव नानो और प्रवीण भैरव साथ में श्याम मंगल भी हवन वो भी हमने के साथ देवत्वन बहुत बहुत धन्यवाद गीत तुलो के नाम भी और जितना कोई अभी रात भर हमने के सुनी हमने के संगे कमरवा डोलाए तो गीत तुलो के नाम छोड़ के मोरिस्वा चल सुनम जाए गीतवा आतिश भगीरथी की आवाज़ में

0: आज है सामदी ले 20 जून और कल रही दिमास वैद्यन तो कल हमने मनावब से दू गो इवेंट एक गो है म्यूजिक डे और दूसरा योगा डे तो बनफेदुला म्यूजिक हैप्पी म्यूजिक डे सबको के संगीत दिवस अभिनंदन हो और योगा डे अभिनंदन हो। तो संगीत दिवस तो रोज के मनाना सा एमबीसी में 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन साल में म्यूजिक चलते रह रहा है नॉन स्टॉप। तो हैप्पी म्यूजिक डे जितना कोई खुशी रह रहा हमने के सुने के हमने के गीत हमने के प्रोग्राम। तो म्यूजिक डे जो है वो बहुत ही बड़ा इवेंट है और ढेर देश में जब म्यूजिक डे रहा तब बड़का बड़का म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित होला और ढेर मना सिंगर लोग आवेला गीत गावे नाची रह सक गावी रह सक झूमी रह सक। तो चलो अगला गीत में हमने गाओब सा झूमब सा काहे कि म्यूजिक डे कालबा और योगा डे भी। तो हैप्पी म्यूजिक डे हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू सबको के संगीत दिवस और योगा दिवस अभिनंदन हो।
1: हर पल का साथी हर दिल की आवाज खुशियों का रंग और यादों का साज हंसी हो या गम ये रहता है साथ संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो

0: continuous music. RM3
1: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
2: कमर, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो. एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो.
3: भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा.
4: स्टूडियो की घड़ी में हम देखते हैं अभी रात के 10 बज गए बा और एक घंटा बा तो लोग के साथ देखते हैं. बेशक नाचब सा गावब सा झूमब सा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जारी बा रात के 11 बजे ले. और अब अपनी बात करब सब पीमा के बारे में. कहे कि अगला गीत है छोटका पीमा. सुखदेव राम खिलावन गीतवा गईले हवन. अब पीमा बाची पीमा गोपी माँ पीमा कारी पीमा कॉफी. पीमा कॉफी दो प्रकार के, एगो जन विनेग में दाइला सा एगो जन तेल में दाइला सा. और ढेर कोई पीमा कॉफी के पीमा के निकिया के धो के नमक में डाल के खूब मिलाजे करके को बूते में डाल दिया पीमा कॉफी हो गल. या ढेर कोई पीमा के नितवाई करके फिनिक में डालेला. ढेर कोई पीमा के नितवाई करके तेल में डालेला. अब पीमा के अचार पीमा के गोल गोल काट के ओकर में सरसों डाल के वाह क्या बात है. अब पीमा के बात होला तो ढेर पीमा नहीं खाइए वरना पेट खराब हो जाए. पर हमने के देश में ढेर कोई कुसिया पीमा खाई की. हम कुसिया तीता तीता पीमा जुआल नहीं है जो पीमा तान नहीं जुआल पीमा है. क्योंकि जोड़ी से में शादी में जा रहा था तो दिखे रहे ना जब सात को तकारी और पूरी से भी रहा था पीमा के औचार. आदमी बोला आबो ये दो आबो जा सौ पी मोला इसी. और आज तो सामदी के रात है. ढेर कोई अभी शादी में नहीं अभी भोजन करते हो नहीं भोजन कर ले लिया हो अभी तो रात के 10 बज गल बा. पर अगर भोजन करते हो कोनो शादी में गल हुआ तब बोल सर शुभ आहार बोना पेची सुरुचि. तभी ढेर कोई गर्मा गर्म पूरी ग्रोपवा कच्चू सब खाता रोकर में पीमा के औचार. ओए होए क्या बात है. तगला की छोटका पीमा बहुत ही खूबसूरत गीत है. गीतवा हमने चलावत ऐसा माधव की ओर से ओकर चाचा जान साइलेन. और माधव अपन चाचा से बहुत प्यार कर इतना प्यार कर रहा कि रोज के सुने कर वीडियो कॉल में कि मानिए चाचा उबिये कौन भूमिन को तुम्हारा चाचा चाचा जान. तो माधव अपन चाचा जान साइलेन से बहुत प्यार कर ओकर चाची जान है रानी ओकरो संगे भी बहुत लगाव भाई लेका के लेका जो है बहुत प्यार है प्यार करेला अपन चाचा साइलेन और चाची रानी से. तो माधव है गीत चाचा की ओर से तौर खातिर तो चाची रानी की ओर से माधव भैरव खातिर हमने की छोटा बाबू है ए चाची बेबी. और ये गीत कवि की ओर से ओकर पत्नी टीना ओकर माँ माला बहिन रीना और सब भैरव परिवार के नाम. और ये गीत चलावती से हमने सब संगत्यालों के नाम जो ये बखत

हमने कि सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर गमाटो अभी फिनी नहीं हो पाए हैं अभी अभी अभी अभी जो है गमाटवा 11 बजे ले और थोड़ी देर में हमने थोड़ा मौसम के हाल बता सक कि कौन सी गजे वगैरह मिलती हो आज रात के कल दिमाग के और लास्ट समय में लेता हूँ कैसी रही थोड़ी समय में बताओ आप सर अब इच्छा सुन छोटका पी माँ सुने ऐसा कैसे छोटका पी माँ के औचार दलाता छोटका पी माँ

अब तान पीमा तो नहीं अच्छा है जन जुआर पीमा रह रहा पारियो गलबा तो कर बजा दूसर है जैसे पीमा के औचार बा भात बा और दाल बा तो काम से आलो याली कुल से आलो कॉलेज से आलो फाचगी लगाता तो जैसे देखची खुला तो देख ला भात बा और एगो देखची में दाल बा और पीमा के औचार तो जोड़ी से खा ली बा और अब हमने बात कर जैसे बोली थोड़ी घड़ी में मौसम की जानकारी दी।

सतह जी हाँ, मॉरिशस मीडिया के मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से बोला जाता है कि आज सामदी के रात की ठंडा करी, कल दिमाग की भी ठंडा करी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आई। तो चला जान जाए के कि ठंडा और ठंडा करी खासकर रात के और फजीर के वक़्त तो चहला अपन प्रकोशों लेके अपन पोलो पास्को त्रिको अपन गोर में सुसित हाथ में लिखों को पहन लिया और कपार रात के बांध दिया। कहे कि ठंडा जो ना ये बड़ी ठंडा करी आज सामदी आज लेवे है और कल दिमास लेवे तेन के कल भी खूब ठंडा करी। तो जगह घर में चीबी भी बा वृद्ध जन लोग बा लोग के छाए जैसे प्रकोशन लेके कहे ले ची बाबा लोग सांसिब रहे सफिक दुनिया में आला वन सा ठंडा लगे लड़का लोग के तो लड़का लोग के जोड़ी से अवलोपिक करिया लोग के वो लोग के अच्छी तरह से देखा जा। और बरात भी लोग बिछा प्रकोशन लेके अरे को हम तो भैया रात के वक्त एगो तैमूस में या एगो गूद में पानी गर्म करके रख दिया एगो वे और रख दिया और रात के जब थोड़ा प्यास सगीता सकबा हो गर्म पानी पिए। क्या कि कब रात के उठेला आंगन अंगनाई सब जाला तो आके तू ठंडा पानी पी ले वाला इसे खोंखी होला तो ये सब खोंखी सर्दी जुकाम से बचे खातिर तैमूस में गर्म पानी डाल दिया या गूद में तो पनिया बन खाते रहेला गर्म तैमूस में तो पनिया पिया ठीक बा। हाँ तो अगला गीत जो है जिंदगी गीतवा गेले उन गीता गजाधर और है गीतवा हमने चलावा तो इस रीता सीतालू के से ओकर ओकर जब वो रिसिन काम करते तो ओकर संगत आलू हमेशा ओकर साथ देवा था लंस जैसे कि माया फिर देवी फिर गंगा रंभा और श्रीमती द्वारका जी। तो रीता सीतालू के से ओकर संगत आलू के नाम है गीत और फिर वीना कुमुस्वामी महबूब से हवन सलमान दुखित मेबर्ग से और विश्वानी बाबूलाल हवन लागोजा से। तो इस सब संगत आलो खातिर अगला गीत हम चलाओ अब सर गीत के बोल है जिंदगी और जिंदगी के बारे में क्या बोल अब सर जिंदगी के बारे में से कब से एगो पुस्तक भी लिख दी चला सुनब जा गीता गजाधर की

0: Continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
2: तो सुन लो अभी क्या बोला था लड़की. तो हमें जीले जीले अपन जिंदगी, प्यार से जीले जिंदगी. चोला के ठेका नहीं बा भैया, आज हहीं से काल का नहीं रख सकी नहीं. ये गाती बोले से जीले जीले तू जीले अपन जिंदगी. और बेशक हमने अपन जिंदगी जीते से बहुत प्यार से, तू भी जी अपन तरीका से. और अब थोड़ा सुन हो जाए एगो बॉलीवुड न्यूज़, गर्मा गर्म न्यूज़. और आजकल हमने किस सिनेमा घर में एगो फिल्म चला था जिसका टाइटल है कॉकटेल 2. ये एगो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और हमने किस सिनेमा घर में दिखावल जाता. ये फिल्म में मुख्य कलाकार हवन शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदाना. निर्देशक हवन होमी अंदाजानिया और संगीत तैयार कर हवन प्रीतम चक्रवर्ती. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ही. एक आधुनिक प्रेम त्रिकोण के इर्द गिर्द घूमेला. कहानी में पुराने रिश्ता, दोस्ती, गलतफहमी और भावनात्मक उलझन दिखावल गलबा. जब एगो पुराना संबंध दो लोगन की जिंदगी में फिर से आवेला, परिस्थिति कैसे बदलेला और कहानी कैसे भावनात्मक रूप धरेला, यही कहानी है इस फिल्म की. और फिल्म की खास बात यह है कि शहरी और आधुनिक रिलेशनशिप थीम बड़े पैमाने पर फिल्मांकन, जिनमें इटली के कुछ लोकेशन भी बा. यानि कि फिल्म की शूटिंग कर गल बा इटली के एक सुंदर जगह में. इफी में रोमांस बा, संगीत बा, स्टाइलिश प्रस्तुति और साथ में कॉमेडी भी. इट्स ए ट्राइंगुलर लव स्टोरी. और दर्शक लोग के फिल्म काफ़ी पसंद आवत आई तो समय ही बताई कि फिल्म कितना सक्सेस करी बॉक्स ऑफिस पर. पर अगर थोड़ा मौका मिली तो जाइए फिल्म देखे. फिल्म के टाइटल है कॉकटेल 2. शाहिद कपूरी फिल्म में नजर आल बा कृति सनन. है है परी जोड़ी एक्ट्रेस बा कृति सनन, हमार तो फेवरेट है. और तो और में से ढेर कोई कृति सनन की पसंद करते या ढेर कोई ये शाहिद कपूर के, तो बेशक ये फिल्म ज़रूर देखिए. फिल्म के नाम है कॉकटेल 2. पहला कॉकटेल देखले रहा ना, ओकर में रहल कौन, अमृता सिंह के ओकर पहला पति को नाम रहा सैफ अली खान. हाँ वो रहा. तो फिल्म में सैफ अली खान नहीं भाई, फिल्म में बस शाहिद कपूर और कृति सनन. तो अगला गीत अब सुनब जाए गाँव के लाफों तेनवा. और है गीत वह चलावत इस एमान्युएल लॉन्गचिल एसएसएस मेबर्ग के सब स्टाफ के नाम, एमजीएसएसएस नोबेल फ्रांस के सब स्टाफ के नाम, एमजीआई मोका के सब अध्यापक स्टूडेंट्स डायरेक्टर के नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बीए फ्रेंच, एमए फ्रेंच, पीएचडी फ्रेंच के सब स्टूडेंट्स और लेक्चरर प्रोफेसर के नाम. और हिंदी विभाग जो स्मास डिपार्टमेंट में बा और लोग खातिर भी बहुत प्यार से. अरे बकर जितना कोई लोपताल में काम कर रहा था

कुआ जितना दुखते हैं लोग, एफएम ये लोग, नर्स लोग बाहर काम कर रहे थे वन सा हमने की शादी होता है वन सा पुलिस स्टेशन में धीरे कोई काम कर रहा था, मिथियो स्टेशन में भी और दमकल विभाग फायर सर्विसेज में भी जितना कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा था, जितना सूफिया लोग अभी रात के हमने की सुना तक सूफिया लोग पास आते लेके घर ही जाते वन सर या घर से लेके काम पर जाते वन सर, जितना कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड्स लोग, गीत लोग के नाम गाँव के लाफों तेनुआ

अभी सुना गांव के लाफोंटेन की कहानी। अब अभी के लड़का लोग नहीं जानी लाफोंटेन कौन सी बोला ला, वो लोग सोचा था फाब दे लाफोंटेन। फाब दे लाफोंटेन कहानी है, छोटा छोटा कहानी। बकर में ला सिगारे ला फूमी, ले कोबो ले रेनॉ, ले लू ले सेट काब्री। और ये सब कहानी में ढेर मना ज्ञान रह, आगे के लड़का लोग सब सीखा था। ला सिगारे ला फूमी कर ले हुआ ना।

सही लाख पहुंचने की जो बात हुआ था, आगे के ज़माना में बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले की बात बोला था, ये गांव में रोबिने सब नहीं रहा, लेकिन प्लास साल जो कि लाख पहुंचन बोला था लिशा तो बड़का रोबिने रहा सबको अपन कपार में कोनो न कोनो बर्तन ने के जाता लन सर गमेल से या मटका से पानी भर के लाख पहुंचन से वो लोग आते लन सर, हाँ कि नहीं। और बेशक अभी रात के समय बा और हमने तो लोग के साथ

की रात 20 जून 2026। लिए वेंचरे रीसा है, देखते देखते हर महीना वो समाप्त हो जाए, अभी जीवित के महीना में चल जाप सा। समय बड़ा जल भागता भैया, समय के साथ चले के। और अपनी बात करब सर तकदीर के बारे में। तकदीर सब कोई अपन अपन तकदीर लेके आ रहे दुनिया में, और ढेर कोई धनी घर में जन्म लेवेला, कोनो आदमी गरीब घर में, कोनो आदमी गरीब घर में जन्म लेवेला, कोनो धनी घर में। अब जो धनवान के घर में बात है सब कुछ ऐशो आराम, अब जो गरीब बातों के परी कोशिश करके मेहनत करके, पर सब तकदीर की बात है, तकदीर के खेल है। जैसे कि अगर तोहर तकदीर में थोड़ा कोनो चीज़ बा मिले के, तो वो आज न कल थोड़ा ज़रूर मिल जाए, पर अगर तकदीर में नहीं बा तो कहते हम कितना कोशिश करें वो चीज़ वह थोड़ा नहीं मिली। ये हम नहीं बोलते, ये हमने के बड़ा आदमी लोग बोल रख बा। तो तकदीर में चेहरा माने के, पर तकदीर में मनिया हाँ, पर मेहनत भी करिया। अब नहीं बोलिया सब कुछ तकदीर में बा, चेहरा तोरो काम करे के, थोड़ा मेहनत करे के, तो काम मेहनत कर बा तो तुहर तकदीर भी रंग लावेगा, हाँ कि नहीं। तो चल अभी गुड सुनब जा, काम करे नहीं खोजता कि बारे बाप काम, अभी की महंगाई की दुनिया में काम करे नहीं खोजता, अभी के सब के अभी सब कोई के छा काम करे के, इतना महंगाई के ज़माना बा भैया दुनिया भर में। सत्यजीत रघुगीत अगेलेवन काम करे नहीं खोजता, अब के नहीं खोजता काम करे। एक साथ सुनब जा है गीतवा हमने चलावते संजय हरिचंद की, और से पत्नी संध्या, बेटी हुविष्का और सब परिवार के नाम, कुणाल हिरीलाल है गीत और खाती तो सब परिवार के नाम, और जितना भी हमने की भोजपुरी आर्टिस्ट लोग बा, रंभा राम तोहल, किशोर खीमिया, रोशन सदा सिंह और पूर्णिमा फकीरा, अगर हम कोई के नाम भुला गेली तो माफ़ करिए जाता। सब भोजपुरी जो गायक गायिका बा हमने के देश में, और काल तो लोग म्यूजिक देख कर बस बहुत प्यार के साथ गीत तो लोग के नाम, और जितना कोई भोजपुरी गीत गावेलन सा, भोजपुरी गीत लिखेलन सा, भोजपुरी संगीत तैयार करेलन सा, गीत तो लोग के नाम काम करे नहीं खोजरा, अभी क्या है काम नहीं खोता करे कि भैया। चल एक साथ सुनम जा, और थोड़ा याद दिलाओ दे जा कि बखत तू सुना तो MBC रेडियो दुगो चैनल पर चल रहता प्रोग्राम, एगो है रेडियो मनोरंजन जो नागी ताल FM रहल, अब वो रेडियो मनोरंजन हो गल बा, और एगो है रेडियो मॉरिशस, वो आज भी रेडियो मॉरिशस बा। तो दुगो चैनल पर चल रहता प्रोग्राम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ले, और अभी खड़ी की ओर इशारा करत थे सर, देखा थे इसे स्टूडियो के, त अभी 1 घंटा आधा ले हो गलबा, और आधा घंटा बाकी बा 11 बजे के, तो 11 बजे ले हमने चलो के साथ दे अब जा, हमने के साथ देते रहिए। और सुना गीत काम करे नहीं खोजेला, और है गीत खासम खास दीपा तिवारी दुखित के नाम, आप हवन कनाडा में, ओकर पति केविन, ओकर बेटा खातिर, और है गीत तीना बुदना की ओर से, ओकर घर वाला, ओकर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार के नाम, और है गीत हमें चलावा तेईस जितना आदमी लोग अभी रात के वक्त जो न कोशिश करता लाइन ना मिलता तो फिक्र ना कर, सब गीत तो लोग खातिर चलावा तेईस काम नहीं खोजरा करे कि अब के है पारिश भाई कोरिया राजा के हर जनी खोदा काम करके चला सुनब जा। ये प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रात के 9 बजे से शुरू हो गल बा, और अभी रात के 10 बज के आधा हो के बा, ये प्रोग्राम चली रात के 11 बजे ले।

0: काम करी नहीं खोजेरा लीजिन के छोकरी खोजेरा शादी करे काम नहीं कर बता के थोड़ा अपन छोकरी दे शादी करे के बोला भैया कोई दे कोई नहीं दे तो शादी करे के वो उम्र रहेला हो कि नहीं जब थोड़ा जिजवित हो जाए तो यानी कि अब तू आजुल्त हो गल आजुल के मतलब जाने ला ना कि आजुल्त हो गल जिजवित जब 18 साल के एगो छोकरा या छोकरी हो जला तो उ जो यानी कि वो अब सकी ढेर मना काम करे जैसे कि 18 साल तो होला तो आजुल्त हो गल सकब अपन कहते छीते जाके निकाले सकब शादी करे अपन गाड़ी के लाइसेंस पे मिले कौजे निकाले यू भी और इलेक्शन में भी सकब वोटे करे और सकब अपन खातिर एगो घर बनाए अपन गाड़ी खरीदे तो ऐसे पौधा हो जाए जैसे जिजवितो तो मॉरिशस में है मॉरिशस की बात बोला था जैसे तो 18 साल के हो जाए तो तू आजुल्त हो जाइबा तो सकब अपन डिसीजन अपने आप से ले जब जिजवितो नहीं हो रही तब नहीं माँ बाप के जो है उन लोग के इर्द गिर्द रही सब लोग के सुपरविजन में पर जब जिजवितो हो जाला तो ऐसे माचू हो गल तो अब सकब अपन गोर पर खड़ा हो पर अपन तुहर माँ बाप के नज़रिया में तो लोग हमेशा लड़का रह जा हमेशा याद रखिया तो अब सुनब जा अगला गाना गीत है बाबू खूबे जोरीबा अविनाश रामनायन गीत गैले वन और है गीतवा हमने चलावब जा इस सब लोगन के नाम शास्त्री बनुमाली हवन मोहताबा से गीत कर बेटी दामाद और सब बनुमाली परिवार के नाम और भाई काशी हवन मोहताबा से वो बड़ी जोली गीत गावेला भजन फिल्म के गीत भी उगर पत्नी माया कर बेटा बहू और सब काशी परिवार के नाम आप मोहताबा से हवन बहुत प्यार से उनकी सुनतवन गिव्या जिपो से हवन अश्विन बच्चन गीत तोहर खातिर तोहर भाई तोहर पत्नी तोहर सब परिवार के नाम उदय दनी राम है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर बेटा पतु बेटी दामाद खातिर किशन गुड़िया है गीत तोहर खातिर प्रीतम राज जिमिला है गीत तोहरो नाम और उदय दनी राम तो बड़ा जोर नाचता हमने के संगे संगे बड़ी खुशी रहेला भोजपुरी गीत उदय दनी राम है गीत तोहरो नाम खूबे बाबू खूबे जोली बाप कितना जोली बाप चला सुनाम जा
1: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा

अवेला घर में था ललना गवाला और सतवा बनेला और हलवा बनेला, दादी लोग नाचेला गावेला झूमेला। आजकल ये सब नहीं दिखल जाला, कहे कि अब सब मॉडर्न हो गल बा भैया, एआई की ज़माना बा, यूट्यूब में डाल दी बा ललना था ललना चलता और ललना हुआ था। आगे जब लड़का हुए ची बाबा घर में आए, जब जोरी बाबा जब आवा था ची बाबा घर में, तब वाजे लोग पड़ोसी लोग दादी नानी लोग सबको जाके लड़का के देखियन सर, लड़का के माँ के पैसा दियन सर तोहफा, लड़का के बाप के भी। और एगो जुन है एगो बहुत ही बड़ा इवेंटमो रहा जब आके घर में लड़का आवाता है परिवार में, तो अभी बड़ा इवेंटमो बा, पर ललना ललना उतना भी यानी कि दादी नानी लोग जो रहा तो सब अभी धीरे धीरे भगवान की प्यारा हो गए सर। आगे के जितना बड़ा आदमी जिन रहा तो ढेर कोई नहीं बा आज दुनिया में, का कर भैया अब हम ये बड़ा आदमी सर हाँ कि नहीं। और अब हमने की संगतिया हिरीश, हमने के संगे नाचता हिरीश नारायण बोलता प्रताप जी गीता डाल देता, जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बतलाब हो के। अब भाई हिरीश नारायण हमने के संगे नाची, तू भी नचा हमने के संगे संगे हैं आली संगे संगे गीता गाव सा और नाचब सा। भाई हिरीश तैयार हवा भाई हिरीश, हिरीश नारायण ऑन द मिक्स और जी प्रताप सिंह के साथ। हिरीश नाचा भैया गावा अम्मी के संगे संगे, जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, अब बोके कैसे समझा बोके कोई सताई दे हमको, से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला। भाई हिरीश भी जोली छोकरी से प्यार करेला, फोन लगाओ भाई हिरीश, एसएमएस कर दो कि हिरीश हिरीश नारायण द मिक्स प्रताप सिंह के संगे।

जल्दी छोकरी से प्यार करीला, हम रोज जीला। हाँ बोके कैसे समझा बोके, है गाना हिरीश खातिर, हिरीश बड़ा जोर नाचता, बड़ा जोर नाचा भैया हमने के संगे संगे, और जे हिरीश और जे प्रताप ऑन द मिक्स। एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर, और संगे जाए लोग हमने के संगे नाचता। उदय दधी राम वो भी कमरवा डुलावता, डॉक्टर अंजू वो भी नाचता हमने के संगे संगे। फजिर फजिर जब मुकराज दिखेला, कैसे बतावा आगे का होला, तू ही सुना जा।

0: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: संगता लोग, आज के हमने के नौजवान, कल के हमने के भविष्य हवंजा। ये गाते बढ़िया सा की लादरोग सैंते चिक सिमिक में सब नहीं पड़िया। तू अपन रिजकाशों में ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई करिया। जैया योगा करे, जैया जिम धोगी एग्जरसाइज करिया, कसरत करिया, अपन बॉडी बनाइया, पर लादरोग उद्रोग में नहीं पड़िया भैया। लादरोग सिमिक सैंते चिक बिल्कुल अच्छा नहीं बा, इकर से हमने की ढेर नौजवान की जान चल जाता। दही सब बुरा काम नहीं करिया, तोरा मन बकनो चीज करे कि जैया जिम बॉडी बिल्डिंग करिया, टैबलेट बनैया, जैया धोगे जॉगिंग करे, साइकिलिंग करिए, नाताशन करिए, एग्जरसाइज करिए, योगा करिए, ठीक बा। कहे कि हमने के जो तू लोग नौजवान हो सर, तो लोग ये है देश के भविष्य हो जाए। अगर तो लोग ऐसे कर बस बुरा काम कर बह, तो कैसे हमने के देश के तो लोग संभल बा, हमने के देश के बागडोर तो लोग के हाथ में बा। तो सब जिनिस तो के सब नौजवानों से मांग कर अब सब कि है लादरोग सैंथेटिक सिमिक में नहीं पड़िया भैया, ये जानलेवा है, ये सब में नहीं पड़िया। तू अपन पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और एग्जरसाइज कसरत करिए, जिम जाइए और अच्छा नागरिक बनिए। बी बेटर सिटीजन ऑफ टुमोरो, दिस कंट्री इज योर्स, आई देश तो लोग के है। हमने के चल गल भैया, हमने के जमाना हमने बड़ा हो गई, शादी करी से हमने के लड़का बड़ा हुआ था, हमने के लड़का शादी करी, हमने के चल गल, हमने के जमाना जमाना अब तो लोग के हाथ में भाई, दुनिया तो लोग के हाथ भाई, बागडोर तो लोग के हाथ में बा। तो लोग काल के भविष्य हुआ जा, तो अपन देश के बागडोर संभल या लादरोग सैंथेटिक सिमिक में नहीं रहिया जा। मार ताली मार, ताली मार, हमर संगी कुनार हिरीलाल गीत गावत है। गीत सब नौजवान दोस्तों के नाम जो सोशल वर्क करे रहन सर, हवाई सोशल करे रहन सर, तो अच्छा बात है कि सोशल वर्क करे रहा, एक दूसरे की सहायता करते रहिए। और अभी हमके संगे जुड़ल बा रोशन, अभिनाश और केशव, साथ में केशव अभिलाक जीपो से अवन, बहुत प्यार से इनके सुनत हवन। हेलो केशव अभिलाक, और ये गीत हमने चलावते ईसा डॉक्टर विपन के नाम। हाय डॉक्टर विपन और डॉक्टर रोशनी हवन, इस समय आप हवन इन द नॉर्थ, ऑलराइट। और एक प्रोग्राम चला था तो संगत यारों संगे, अच्छी बात बा। और जितना कोई अभी रात के हमने की सुना था, और बेशक रात के 9 बजे से अभी दे हमने के साथ दे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ढेर कोई रात की देरी लिए काफ़ी या चाय पिए रन सर, अच्छा बात बा, गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ हो जाएगा ना। मार ताली मार, ताली मार हमर संगे, मार ताली मार, ताली मार हमर संग।

मार तालीमार हमर संगे। और बेशक दुनिया भर के सब डॉक्टर लोग बोले रहन से कि अच्छा स्वास्थ्य में रहे खातिर चेहरा रोज के हंसे के, पर आजकल लोग उतना नहीं हंस रहे, लोग खाली नाराज है। इनसे लोग के मुंह में खाली गुस्सा रहेगा, काहे इतना गुस्सा हो जो तक नहीं एक बस्ता करेला खाई ले हुआ। तो थोड़ा सुन हंस दिया, मुस्कुरा दिया, अभी मुंह में जुड़ी दांत बा काजनी ससन ससन सैकल मुंह में दांत रही कि नहीं। ये खातिर हंसते मुस्कुराते रहिए और उनके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और दुनिया भर के डॉक्टर बोले रहा है चाइना हंसे के ताकि तोहर दिल की हालत ठीक रही और तोहर लंबी आयु हो। हम नहीं बोलते, ये डॉक्टर लोग बोले रहा, ये गो साइंटिफिक प्रूफ है। और चला बेगो हंसी मजाक से भरपूर गीत सुनब जा। बोले हम सांवर, हमर बुढ़िया सांवर, तो लेकवा कैसे उजड़ निकल गल हो। हमने जा लेकवा कैसे उजड़ निकल गल सुनब सही कहानी नीरज गुप मधु हमने सुनाई है। और रह गीत चलावत इस मिसेस शिवसागर मिस्टर लक्ष्मण और मेविशा रानी खातिर। मेविशा गीतवा खासम खास और खातिर, हाँ कि नहीं बेटवा उजरवा चल एक साथ सुने।

हाय गीत के संग भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बज जाए, 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल और रात के 12 बजे से काल फजर के 6 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हुई कल दिमास के सांझ के दिमास वैते के हमने के तलों की मुलाकात हुई कल सांझ के 3 से 4 बजे ले और फ्री रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मनोरंजन की

टिकटॉक पर हमने के दिख बजा और रेडियो पर सुन बजाया। प्रोग्राम ऐसा भी होता है, स्पेशल एडिशन ऑफ म्यूजिक डे। तत्काल म्यूजिक डे पर विशेष प्रोग्राम चली ऐसा भी होता है। प्रोग्राम में कल शाम के 3 से 4 बजे ले, फिर कोई प्रोग्राम के बाद थोड़ा से कल रात की फिर से मिल जा रात के 9 से 11 बजे ले। रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। अभी के लिए हमने के इजाज़त दा रात के 9 बजे से अभी हम के साथ रजतों के फोन कॉल SMS के साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम सुन ला तो लोग के गीत हमने चला दी सा और हमने में बातचीत और बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते तो लोग के विश करते सा हैप्पी म्यूजिक डे फॉर टुमारो एंड हैप्पी योगा डे। तक कल तक हम की इजाज़त और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गुड बाय नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और रात्रि के 12 बजे तक एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में आपका अभिवादन। आइए देर न करते हुए खूबसूरत गानों का सिलसिला शुरू कर

की तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

जब भी बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तब एक नाम बड़े सम्मान अदब के साथ लिया जाता है और वो है अरुणा ईरानी। हिंदी सिनेमा के इस अद्भुत कलाकार ने अपनी मेहनत, लगन और अनोखी प्रतिभा के बल पर फिल्म जगत में एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी लाखों दिलों में बसी हुई है। अरुणा ईरानी ने अपने करीब 5 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर तरह के किरदारों को यादगार बना दिया। तो सुनहरे पल कार्यक्रम में इनका हम शानदार स्वागत करते हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी का बचपन आर्थिक संघर्षों से भरा रहा। परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उनके बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्होंने बाल कलाकार मानी की चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि कठिन

अरुणा ईरानी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक शानदार डांसर भी रही है। 1960 और 70 के दशकों में उनके डांस नंबर्स दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म कारवान में उनका अंदाज, उनकी इनर्जी और उनकी स्टेज प्रेजेंस ने सबको दीवाना बना दिया था। उनके नृत्य में नजाकत भी थी और जबरदस्त जोश भी। उन्होंने क्लासिकल और फिल्मी डांस दोनों को अपनी अनोखी अदाओं से यादगार बना दिया।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
1: नो।

वैसे अपनी करियर के दौरान अरुणा ईरानी ने अनेक यादगार फिल्मों में काम किया, कारावान के अलावा बॉम्बे टू गोवा, बॉबी, फकीरा, रॉकी, लव स्टोरी, बेटा, सुहाग, राजा बाबू, गुलामी मुस्तफा जैसे कई फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। कभी वो कॉमेडियन के साथ हंसाती नजर आई तो कभी वैम्प के रूप में दर्शकों को प्रभावित किया और कभी माँ के रूप में भावनाओं से भर दिया। हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: अरुणा ईरानी की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्सटैलिटी थी। बहुत कम कलाकार होते हैं जो हीरोइन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, वैम्प, कॉमेडियन और माँ के किरदारों में एक समान सफलता पाते हैं। अरुणा जी ने हर युग के कलाकारों के साथ काम किया और हर जेनरेशन के दर्शकों का प्यार जीता। उनकी एक्टिंग में नेचुरल एक्सप्रेशन, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन पर मजबूत उपस्थिति देखने को मिलती थी।

0: उनकी कला और योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दो बार मिले, एक बार पेट प्यार और पाप के लिए और दूसरी बार फिल्म बेटा के लिए। इसके अलावा उनके नाम सबसे अधिक फिल्मफेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशंस का रिकॉर्ड भी रहा। साल 2012 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है।
1: जो

फिल्मों के बाद अरुणा ईरानी ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई लोकप्रिय सीरियल्स में अभिनय किया और निर्देशन तथा निर्माण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। देश में निकला होगा चांद, वैदेही और अन्य टीवी सीरियल्स के माध्यम से उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी कला का जलवा दिखाया। आज अरुणा ईरानी भारतीय सिनेमा की एक जीवित दंड कथा के रूप में देखी जाती है। उनका सफर संघर्ष, मेहनत, प्रतिभा और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी रही है। उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को नए रूप में ढलकर दर्शकों के दिलों पर राज करे। अरुणा ईरानी का नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में बड़ी गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।